107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, वैशाख मास की 19वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 9 मई सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान।

तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो।

नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, एक नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि सुबह के 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर भक्ति और आध्यात्मिकता से महकता आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि लेकर। इस आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश करते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों के वंदनिया के साथ।

श्रोताओं, अक्सर हम पत्थर की मूरत में उस निराकार को ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे भीतर की करुणा में मुस्कुरा रहे होते हैं। आज पुष्पांजलि के जरिए, इन भजनों के जरिए, इस संगीत के जरिए उसका संगीत अपने कानों में घोलेंगे तो बाहर नहीं अपने भीतर को जगाइएगा, शायद वहीं कहीं उसका वास मिल जाए।

श्रोताओं, माला के मोती तो हाथ से छूट सकते हैं, पर जो सुमिरन हमारी सांसों में बस जाए उसे विधाता भी नहीं छीन सकता। आइए अपनी हर श्वास में उस परमेश्वर को याद करें और उसको अपनी श्वासें उनके नाम करें।

जो हमारे पास है वो उसकी कृपा से है और जो नहीं है वो उसकी इच्छा है। शिकायतें छोड़कर जब हम केवल धन्यवाद कहना सीख जाते हैं तभी जीवन में उत्सव शुरू होता है। आइए अब प्रणाम करें और वंदन करें उस देवता का जिसने हमारे सब दुखों को हरा, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं जिन्होंने हमें भक्ति करना सिखाया। आइए उन्हें याद करें और उन्हें प्रणाम करें।

श्रोताओं, इसी मधुर भजन के साथ पुष्पांजलि की यात्रा यहीं तक। अगले घंटे यानी 7 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद आपको आपके फिर से आपके पास लेकर आऊंगी मैं सदाबहार गीत, आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम।

हेलो एवं सलाम नमस्ते कानपुर, विशिंग यू ऑल अ सुपर फैंटास्टिक सैटरडे मॉर्निंग। घड़ी में बजे हैं 7, तारीख है 9 मई 2026। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके फेवरेट म्यूजिक चैनल 102.2 FM रेनबो कानपुर पर सिटी अपडेट्स प्रोग्राम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग कानपुर।

जुबिन गर्क की रिफ्रेशिंग आवाज में ये ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे फिल्म आई सी यू से। म्यूजिक कंपोज किया था विशाल एंड शेखर ने और लिरिक्स थे शेखर रवजियानी के। तो दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं प्रोग्राम हाइलाइट्स पर और आपको बता दें कि आज सारा दिन हम किन किन प्रोग्राम्स के साथ आपको करते रहेंगे एंटरटेन। तो अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल और आपके एंटरटेनमेंट जर्नी जारी रहेगी प्रोग्राम रस बहार के साथ, जिसका टाइम होगा सुबह के 9 का और इसके तुरंत बाद 9:45 पर विविधा में लुत्फ लीजिएगा प्रोग्राम महफिल गजल का। बातों मुलाकातों का सफर और महफिल सजेगी सुबह 11 प्रोग्राम हमनवा में। दोपहर 3 इंजॉय कीजिएगा प्रोग्राम म्यूजिकार और शाम 4 म्यूजिक बजेगा आपकी पसंद का प्रोग्राम आपकी पसंद में। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस 102.2 FM रेनबो कानपुर और जहां आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है। लीजिए इंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

0: सो फ्रेंड्स, ये ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे फिल्म जीरो से। म्यूजिक कंपोज किया था अजय अतुल ने, लिरिक्स थे इरशाद कामिल के, और ये मखमली आवाज थी अब है जोधपुर कर की। तो दोस्तों, 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर हम सब स्वागत कर चुके हैं एक और नई सुबह का, एक और ब्रांड न्यू डे का। तो दोस्तों, हर एक नई सुबह एक कोरे पन्ने की तरह होती है, जिस पर अपनी मेहनत और मुस्कुराहट से, अपनी कोशिशों की स्याही से हम एक नई कहानी लिख सकते हैं। तो अच्छे काम की शुरुआत के लिए टाइम का इंतजार मत करिए, क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के सूरज की पहली किरण के साथ अपने सपनों को सच करने का एक और मौका मिला है, इसलिए सफलता की ओर अपनी कोशिशें जारी रखें। और यही था आज का थॉट ऑफ द डे।
1: ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे,

दोस्तों, फिल्म दसवीं का ये गाना आप सुन रहे थे सचिन जिगर के म्यूजिक से सजा सुखविंदर सिंह की आवाज और तनिष्का सांघवी की आवाजों में आशीष पंडित के लिरिक्स थे। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया ब्लिंक सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कि किसने क्या इंटरेस्टिंग पोस्ट किया। तो सबसे पहले बड़ी प्यारी सी पोस्ट है इंडियन T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बेटी के जन्म की खुशखबरी शेयर करते हुए पोस्ट किया है कि हंसी खुशी प्यार भरी झप्पी और सपनों को साकार करने के साथ अपनी प्यारी बेटी का स्वागत करते हैं, जिसके लिए उन्हें क्रिकेट जगत से ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं और शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। इसके बाद माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम सभी देशवासियों को गौरवान्वित करता है। मां भारती के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर किसी को प्रेरित करने वाला है। दोस्तों, अगली पोस्ट में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की है, जिन्होंने एक्स हैंडल पर मोटिवेशनल पोस्ट करते हुए लिखा है कि माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं हैं, मगर मुस्कुरा कर चलने में कोई नुकसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ का फंडा भी यही है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन आपकी मुस्कुराहट है। फिलहाल 102.2 FM रेनबो कानपुर पर वक्त है एक और गाना सुनाने का।

चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजों में ये गाना आप एंजॉय कर रहे थे फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। विशाल एंड शेखर का म्यूजिक था, लिरिक्स थे अमिताभ भट्टाचार्य के। तो दोस्तों, वैसे तो हर तारीख अपने आप में खास होती है, और चलिए जानते हैं 9th मई की तारीख में इंडियन हिस्ट्री में क्या रहा खास प्रोग्राम के हिस्ट्री नामा सेगमेंट में। दोस्तों, 9 मई भारतीय इतिहास में कई बड़ी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। उनमें से सबसे पहले आपको बता दें, 7 वंडर्स में एक ताजमहल का कंस्ट्रक्शन का पूरा होना। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद 9 मई सन 1653 को ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात, 9 मई सन 1874 को बंबई यानी आज का मुंबई में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्रामा कार शुरू हुई थी, जिसे हॉर्स बस भी कहा गया। है ना इंटरेस्टिंग। राजनीति नजरिए से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में 9 मई सन 1946 को गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। और दोस्तों, फिलहाल प्रोग्राम में वक्त है आपको एक और एंटरटेनिंग गाना सुनाने का।

ए आर रहमान के म्यूजिक से सजा ये गाना आप सुन रहे थे, फिल्म एक दीवाना था से लियोन डिसूजा और सुजैन डिमेलो की आवाज थी, लिरिक्स थे जावेद अख्तर के। दोस्तों प्रोग्राम 102 प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो अवे, वी विल जस्ट रिवर्ट यू बैक विद इन फ्यू सेकेंड्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सभी सुनने वालों का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में। और दोस्तों प्रोग्राम में अब बारी है सिटी हाइलाइट्स की, जो खास है हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए। तो मित्रों, आज के दौर में सामाजिक काम केवल सर्विस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये तेजी से बढ़ता हुआ एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शन बन चुका है। CSJMU यानी छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का सोशल वर्क डिपार्टमेंट यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां वे सोशल वर्क के साथ साथ कॉरपोरेट, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बेहतर करियर बना सकते हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में सत्र 2026-27 के लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क CSJMU के MSW पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अवधि 2 साल और करीब 30 सीटें हैं। जो भी छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमने अप्लाई किया है एक और गाने के लिए, वो भी आपके लिए।

नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाजों में ये गाना आप एंजॉय कर रहे थे फिल्म लव आजकल से। प्रीतम का म्यूजिक था, लिरिक्स थे इरशाद कामिल के। दोस्तों प्रोग्राम में वक्त है अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट का, जहां बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि ब्रिटेन में कैरम फेमस हो रहा है और इसके इवेंट्स और क्लबों में खूब भीड़ हो रही है। आपको बता दें कि भारत में जहां ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कैरम शतरंज जैसे खेलों के प्रति युवाओं का रुझान थोड़ा घटा है, वहीं ब्रिटेन में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। एक्चुअली ब्रिटेन में पारंपरिक साउथ एशियाई गेम्स कैरम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जहां ये केवल एक खेल नहीं बल्कि कम्युनिटी कनेक्शन का एक नया माध्यम बन गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लंदन समेत कई शहरों में कैरम नाइट्स और क्लब्स में भारी भीड़ उमड़ रही है और कई इवेंट्स के टिकट मिनटों में बिक जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, जहां वक्त है एक और गाने का।

फिल्म टू स्टेट से ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक था, लिरिक्स थे अमिताभ भट्टाचार्य के। दोस्तों प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में हम आ पहुंचे हैं सेगमेंट स्पोर्ट्स डेस्क तक। तो दोस्तों आईपीएल 2026 रिवेंज वीक में कल डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स को उसके ही घर यानी अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने महज 142 रनों का टारगेट 15वें ओवर में ही हासिल करते हुए डीसी को 8 विकेट से हरा दिया, जो डीसी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फिनेलन ने शतकीय पारी खेली और नॉट आउट रहे। वहीं आज राजस्थान को हराने उतरेगी गुजरात टाइटंस। फुल कॉन्फिडेंस के साथ गुजरात टाइटंस शनिवार यानी कि आज राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट होने वाले आईपीएल मैच में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखकर स्कोर टेबल में अपनी फर्स्ट पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों आज का मैच होने वाला है सुपर इंटरेस्टिंग और प्रोग्राम में होने वाला है एंजॉय इस गाने के साथ।

तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम के एंड में जान लेते हैं हाल मौसम, जो थोड़ा खुशगवार और सुहाना हो रहा है। जहां हवा और हल्की फुल्की बारिश से ने गर्मी को थोड़ा कंट्रोल कर रखा था कुछ दिनों से। हालांकि कल दिन में थोड़ी धूप जरूर खिली रही, मगर सुबह और शाम का मौसम सामान्य रहा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री जाने की संभावना है। तो दोस्तों, मौसम कैसा भी हो, मगर याद रखिएगा 102.2 FM रेनबो कानपुर पर एंटरटेनिंग म्यूजिक के साथ हम आपका मौसम सुहाना बनाए रखेंगे।

दोस्तों 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, आपके दोस्त एंड शो होस्ट आचार्य गौरव के साथ, जहां वक्त है आपसे विदा लेने का। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, हम सारा दिन यूं ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे। सो जस्ट स्टे विद अस एंड डोंट गो अवे। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश

0: देश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएमके पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को

0: कर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। सुवेंदु अधिकारी टू टेक ओथ एज फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल में। प्रोग्राम की ये पहली पेशकश आप सुन रहे हैं फिल्म आशिकी से। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, नदीम श्रवण का संगीत और लिरिक्स हैं समीर के।

और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म अलग अलग से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आरडी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल हैं।

फिल्म दिलजले से ये गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में, अनु मलिक का संगीत था, जावेद अख्तर के बोल थे। अब सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गीत फिल्म दीवाना से, कुमार सानू की आवाज़ है, नदीम श्रवण का संगीत और समीर के बोल हैं।

0: दोस्तों, इस ट्रैक के बाद ही कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल यहीं खत्म होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सुरूर ऐसा जो उतर न पाए, सुरूर ऐसा जो उतर न पाए, म्यूजिक ऐसा जो सीधे आपके दिल में समाए। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.2 कानपुर की दिल की धड़कन।
0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। दोस्तों, सुबह के 9 बजे हैं और 102.2 FM रेनबो कानपुर पर मैं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आज ये गौरव आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं प्रोग्राम रस बहार में। तो दोस्तों, आसमान में सूरज से हाई हेलो हो चुकी है और सपनों की मुलायम दुनिया और जिम्मेदारियों की हकीकत के बीच हर सुबह एक अलार्म बजता है और उस अलार्म के बाद के 5 मिनट में नींद विदा लेती है और लाइफ की अपनी शर्तों के साथ शुरू होती है। बस यहीं शुरू होती है अलार्म और सपनों के बीच की जंग।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर सुबह एक जैसी नहीं होती, लेकिन एक चीज़ जो शायद हम सब के साथ होती है और वो है मोबाइल स्क्रीन पर चमकता हुआ अलार्म, कानों में गूंजती हुई उसकी आवाज़ और मन में उठती हुई एक धीमी सी गुहार कि बस 5 मिनट और। बस यही वो 5 मिनट होते हैं जहाँ नींद और जागने के बीच एक अनदेखी जंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ समय की लड़ाई नहीं बल्कि मन, शरीर और इच्छाओं की खींचतान है।

0: सुबह का फ्रेंड्स, सारे पल कहें चल कहीं चलें, जहां सुबह का ये लम्हा दो दुनिया के फासलों को मिटा दे। एक्चुअली सुबह के वो 5 मिनट हकीकत में दो जहां के बीच एक ब्रिज की तरह होते हैं। साइंस की नज़र से देखें तो ये टाइम ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जहां सपनों की दुनिया धीरे धीरे वास्तविकता की कठोर दुनिया में बदल जाती है। और इस सिचुएशन में हम ना तो पूरी तरह जागे हुए होते हैं और ना ही पूरी तरह सपनों में डूबे हुए होते हैं, जहां हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में लाइफ की भागम भाग को अपनाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। एक्चुअली
1: Thank you.

चलिए दोस्तों, आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम रस बहार, मगर प्रोग्राम रस बहार में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सो डोंट गो अवे, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक विद इन फ्यू मिनट्स।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: Bless your heart. Beat on the floor of music. Only on 102.2.
2: आपने ट्यून इन किया है 102.2 FM रेनबो कानपुर और प्रोग्राम में फिर से एक बार स्वागत है और प्रोग्राम का नाम है रस बहार। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आज एक गौरव, जहां आज बात चल रही है सपनों और अलार्म के बीच की जंग की। जी हां दोस्तों, यही वो पल है जहां हमारा ब्रेन जागने जैसा एक्टिव होता है, जिसके ज्यादातर सपने आते हैं और ये सपने अधूरी इच्छाओं, दबे हुए इमोशंस और दिन भर के स्ट्रेस को मिक्स करता है और अलार्म इस प्रोसेस को बीच में ही रोक देता है और हमें सुबह उठने में बहुत मुश्किल महसूस होती है। लेकिन 102.2 FM रेनबो कानपुर पर हमें आपको एक और ट्रैक सुनाने में कोई मुश्किल नहीं है।

जी हाँ दोस्तों, अलार्म और सपनों की जंग हकीकत में टाइम के साथ हमारे रिश्तों को दिखाती है। मगर दोस्तों, ये सवाल भी उठता है कि क्या हम टाइम को एक साधन मानते हैं या जिसका हमें यूज़ करना है, या एक प्रॉब्लम जिससे लड़ना है, या फिर एक नेचुरल फ्लो है जिसके साथ हमें चलना है।

दोस्तों, इस मॉडर्न एरा एंड डिजिटल एरा में हमने टाइम को एक दुश्मन मान लिया है। शायद इसलिए जब भी हम कभी किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो शिकायत होती है कि यार क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए बेहतर है कि नींद के बजाय हम सोशल मीडिया एंड एक्सेट्रास को कम ही करें और ज़िंदगी को किसी गैजेट या डिवाइस पर डिपेंड ना करें। बस भरपूर जिए और इस सुबह की रवानगी का मज़ा लें ताकि सुबह बगैर अलार्म के उठा जा सके।

तो दोस्तों प्रोग्राम रस बहार का बस यहीं तक था आज का सफर, मगर इंटरटेनिंग म्यूजिक के साथ हम बने रहेंगे आपके हम सफर। मगर चलते चलते आपको सुनवा रहा हूँ फिल्म विलन का ये ट्रैक, तो आप एंजॉय कीजिए इस गाने को और अपने दोस्त एंड शो होस्ट आज गौरव को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026।

0: सूचना समाप्त हुई।
1: रात 10:30 पर आपकी पसंद के गीत आपकी फरमाइश कार्यक्रम में, प्रायोजक वीको वज्रदंती, सारी दुनिया की दान।

0: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
1: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
0: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा।

0: on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
0: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सभी सुनने वालों का इस्तकबाल है प्रोग्राम महफिल गजल में।

0: प्रोग्राम की इस आखिरी पेशकश के साथ ही प्रोग्राम महफिल गज़ल अब ख़त्म होता है। दीजिए इजाज़त। अगला ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे हमारे लखनऊ स्टेशन से।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी का एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतियोगिता देश भर से आए पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाड़ियों के बीच समन्वय, सौहार्द और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में कल एक स्वगणना सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार के कई मंत्रियों और सांसदों ने अपनी स्वगणना पूरी की। इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, कपिल देव अग्रवाल और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हैं। स्वगणना 2027 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सरकार की ओर से प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए सहायता केंद्र और हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जा रहा है। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वाले व्यक्तियों और नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: अरे भैया, राम राम प्रणाम। कैसे हैं आप सब? देखा भैया, आए शनिवार, शनिचर और घड़ी बज गया है 10:04। तो और हम लेके आए गए ही, हम यानी अंजू शुक्ला लेके आए गए ही 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम सुगंध माटी की, जेकर आप सब कर रहा थे बहुत इंतजार। तो भैया, आप सबसे जैसे वादा करे रहे तो कि हम एक बहुत दिल के राजा मनई कले के हो गए, एकदम वैसे भी राजा मनई है और दिलों के राजा हैं, यानी अंदरों से राजा है, उनके नामों राजा है। ऐसे झंझटी भैया मने कही देते हैं, है ना? लेकिन आप हैं राजा भैया, बहुत बहुत स्वागत राजा भैया। राम राम।
1: हाँ, राम राम दीदी। और हमारे FM रेनबो का सुनने वाले जितने श्रोता भाई बहनी, मातारी, चाचा चाची, उन सबका हमारा प्रणाम और राम राम।
0: राम राम भैया, राजा भैया का बात है। आज तो बढ़िया चटक कुर्ता उर्ता पहन के आया है। मौसम वैसे बढ़िया होता है बाहर।
1: हाँ, बढ़िया तो है।
0: तो का आज कौन कौन तैयारी करके आवा हमारे श्रोता पंचन के लिए, बतावा तो।
1: अरे, श्रोता पंचन के लिए सब तैयारी ही तैयारी, हम लोग तो बातें फायदे की करी थे।
0: सही बात या, सही बात या, बहुत बहुत फायदा के बात होते और बहुत सारी बात कही होते है, और बत कही में बहुत कुछ सिखावे तैयारियां हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हाँ, वैसे मौसम जो है कहाता है कि जो है कुछ ऐसे ऐसे मतलब सुनाए दी गौ नहीं कि अब हमारे जो का कहा थी जो श्रोता पंचय है ना, वो मगन हो जाए और अपने सबके जो है ये जो सुगंध माटी कार्यक्रम सुना थे ना, वह सुनत सुनत मगन हो के बहुत ढेर सारा काम कई डाले हैं।
1: हाँ, बिल्कुल करें।
0: तो सबका गौ नहीं सुनाई और बत कही सुनाई हमारे राजा भैया।
1: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो चला हम सब जौन है आज का कार्यक्रम सुगंध माटी की जौन रहा थे FM रेनबो पर हर शनिवार का, और ई कार्यक्रम में आप सुना थे अवधि गौ नहीं। अब भैया देखा, हमरे अवधि के बात अगर कीन जाए ना, तो फिल्म होए, चाहे नाटक होए, चाहे साहित्य होए, हिंदी साहित्य होए, हर जगह अवधि के बोलबाला रहा है ना भैया।
1: हाँ, बिल्कुल, बड़ी जानदार। हाँ, और बड़ी शानदार भाषा है।
0: हाँ, बहुत शानदार भाषा है। तो चला आज के जो कार्यक्रम के शुरुआत है ओका बहुत पुराने एक थी बहुत मजेदार फिल्मी गाने से कह देते ही, और ये गानों गौने ही सुनत जा और वापस आवा। तो राजा भैया के साथ है अंजू शुक्ला सुगंध माटी कार्यक्रम में, हुए ढेर सारी बात कही और मजा मजा।

0: यही इही दर जौन है ना सब गड़बड़ाए जाते मामला है। पान खाओ लेकिन ये जौन कुर्तो अब छींट पड़ जाते तो जौन घर में मलकिन यहाँ ना उनके मूड हो जाते खराब है, कैसे छूटे बतावा है।
1: सही बात है बहनी। पान तो देखो मुख शुद्धि के लिए बहुत बढ़िया है और आयुर्वेद में कई बीमारी में प्रयोगी का होता।
0: सही बात है,
1: रोग मुक्त करत है
0: और क्या। और अपने सांस्कृतिक सनातन परंपरा में भी जो ना पान का तो बहुत महत्व होते हैं। और लखनऊ में नवाबों के शहर में रहा था ही पान तो जो ना है जो उन शान से खावा जाता रहा। हाँ, हाँ, ना
1: लेकिन अब लोग पान का जहर बना दिए।
0: सही कहे हो राजा।
1: दुनिया भर के किवाम और तमाकू जाने का पान का सही जो उपयोग है वो है भुला दिन लोग।
0: सही कहो राजा भैया।
1: नुकसान होता है तब गंदगी फैला चार।
0: ये जो गंदगी फैलावे में जो है पान मसाला गुटका ये सब तो बहुत है। मतलब का बताई खाते तो खाते अपने शरीर के तो अंदर गंदगी भरत है नुकसान करता है। और शहर और आसपास के माहौल सड़क वड़क कुल गंदा कर देते हैं।
1: बिल्कुल। अरे गुटका तो बहनी जहर है ही है लेकिन पान तो अमृत है। मगर उसका उपयोग ऐसे ढंग से लोग करे लगे है वह जो है नुकसानदेह हुई हुआ है।
0: तो राजा भैया तनी सम
1: हर शादी ब्याह मौके पर और पूजा पाठ में पान का
0: बहुत महत्व होते।
1: आगे
0: हाँ बहुत महत्व होते। भगवान का भोग लगा पान सुपारी लौंग इलायची देखा बीरा जो है भगवानों को समर्पित की जात है।
1: जोड़ा इलायची दुर्गा माता हो काली माता हो माता के पूजा में कौनो भगवान की पूजा हो पान अग्रणी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल रहा थे। और देखा ये सब बात जो है हमरे सबके परंपरा में इतनी सुंदर सुंदर है। और जौन जौन चीज प्रयोग कीन जाते ओके जैसे आप बतायो आयुर्वेदिक महत्व है ओके स्वास्थ्य के दृष्टि से पर्यावरण के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सब चीज यहाँ है। बहुत जरूरी जरूरी है लेकिन मन ही सब भुलाया जाता है।
1: पान में दो इलायची डालो एक इलायची डालो लौंग डालो है और बस उका लपेट के और खा लो। उमा थूके की कोई जरूरत नहीं सब अंदर।
0: सही कहो। ओकरे बाद फिर देखा हाजमा दुरुस्त है।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: और सब
1: बिल्कुल,
0: कुछ दुरुस्त है और मूड भी दुरुस्त है।
1: बिल्कुल बिल्कुल क्या बात। और बगल में जो बैठा हो खुशबू से वो को मन
0: का खुशबू है। और देखा यहाँ जो ना एक बन्ना गीत सुनाए देते ही मालिनी अवस्थी जी की आवाज में। और देखा बन्ना का भी पान खवावे की तैयारी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: अब भैया 10:16 के बखत होता है और अंजू शुक्ला और राजा भैया के साथ आप सब पंचे सुनता है कार्यक्रम सुगंध माटी की एफएम रेनबो पर। और राजा भैया आज है शनिचर है और देखा अधिक मास पुरुषोत्तम मास बतायन रहे हमने श्रोता पंचन का वो चलता है जेठ महीना बिल्कुल। मतलब अब की शनिचर और बड़ा मंगल डबल हो गया, दुगुना हो गया।
3: अरे हाँ, यह तो हम सुने तो हम कहें अरे वाह, तो बड़ा बढ़िया है। पन खाओ भंडारा।
2: हाँ, और भंडारा के अगर बात होते तो एक तो परंपरा लखनऊ से शुरू है रही।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपन नवाब साहब रहे, उनकी बेगम रहे, वही हम सुना है कि अलीगंज के मंदिर की स्थापना करवाना है और पहल भंडारा वही लगाना है
2: पुराने हनुमान मंदिर।
3: और तब से जो है वह परंपरा चल निकली, एका लोग आज तक निभा रहे हैं और हनुमान जी के नाम से भंडारा खवावत हैं और लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा भी होत
2: है। बहुत बहुत कृपा होत है। अरे भाई, उन्हें इनके कृपा से तो सब कुछ होत है, उन्हें इनके प्रताप से तो उन्हें मनाई सामर्थ्यवान बना था कि खवाए पावे सबका।
3: बिल्कुल बिल्कुल, लो देखो तुम मंगल की याद दिवा दी हो, हमको अपन एक झंझट याद आ गया।
2: अरे दैया तो चला सुना है, हम सोचते न रहे कि राजा भैया बहुत राजा बना बैठा, कौनो झंझट वाली बतिये नहीं बताया।
3: अरे बहनी, हम कौनो झंझट किया नहीं चाहिए थे, हम का बताई।
2: हाँ, बस हो जात,
3: गलत बात हमका बर्दाश्त नहीं होते, बस हो जात।
2: तो चला कौन झंझट भाई।
3: अरे भवा यो भाई, बड़े मंगल मा सबे लोग हनुमान जी के दर्शन करे जात, भीड़ दुगनी चौगुनी हो जाती। अब हमारे पड़ोसी है एक मंगल भैया, वो जो है वहाँ गए दर्शन।

0: करे हनुमान जी के और मेहरिया का हाथ पकड़ लिही ने आगे आगे चले लाग और बच्चा जो उनका रहा है वो दो चार आदमी उनके पीछे आगे आगे लड़का पिछड़ गवा। अच्छा। अब वो हवल दिल दाएं बाएं देखे लाग।
1: ये बड़का मंगल वाले दिन के बाद
0: अरे ये है मंगल जो पहल मंगल भवा।
1: अच्छा
0: अब उनका लड़का दहने बाएं होएगा और थोड़ी देर बाद आगे चले के बाद जब वो देखिन के लड़का कहूँ है नहीं तो दहने बाएं वही ढूंढे लाग। मारे हवल दिल भागे भागे घूमे ऐसे पूछे वैसे पूछे अरे भैया इतना बड़ा लड़का रहा नीला नीला बुशर्ट पहने रहा है देखियो तो नहीं है। अब को कहे भाई हम नहीं देखा को कहे हम नहीं देखा। मार हवल दिल तब तक वो दूर खड़ा रो रहा है। तो हम गए हम कहन बच्चा काहे रो रहे हो कहन अम्मा बप्पा हमार हेराए गए।
1: अच्छा आप उन्हें नहीं हेरा अम्मा बप्पा हेरा।
0: हम कहने अच्छा आओ बच्चा तुम्हारे साथ आओ प्रसाद की दुकान पर लेके खड़े भन तब तक देखा मारी आंखी लाल चले आए दौरत हवल दिल दो घंटा बोल के मार दिन अब हमारे आगे लाग गए।
1: अरे लड़कियां को मार दे
0: साथा नहीं चल सका थो। अरे हम कहें रुका ये लड़की का गलती है कि तुम्हारी गलती है मेहरिया पकड़े हाथ आगे उलरा चले गए हैं और यो का करे चार आदमी बीच में घुस गए और यो दाएं बाएं देखा लाग नहीं दिखाई पड़े तो रोई है ही है।
1: सही बात बतावा नान भरे लड़की लड़किया आपन जिम्मेदारी नहीं समझा था और लड़कियन के डांटा था
0: उनके मार दी।
1: बतावा
0: मार पीटअप तो वैसे अच्छी बात नहीं।
1: सही बात
0: हिंसा करना बहुत
1: बेचारा वैसे रोवा था और सहन गए हुए।
0: हम कहें खबरदार जो अब हाथ उठाए और आयो भगवान के दर्शन करे लड़का पीट रहे हुए
1: तो
0: फिर कहीं ना रे दादा अब कहा बताई गुस्सा आए गए। हम कहें गुस्सा कंट्रोल में
1: रखा
0: हमारे गुस्सा आ जाई तो तुम्हारा पैजामा ढील हो जाए।
1: बहुत सही झंझट और बढ़
0: जाए।
1: नहीं तो राजा भैया बहुत सही कहे हो। समझ गए रहे नहीं समझ गए रहे
0: समझे किसी आ गए जाओ भगवान के दर्शन करे भगवान दर्शन करो उनसे जो मन्नत मांगे खो तो मांगो है।
1: सही बात
0: खैर लेके चले गए मेहरियो कहे उनकी मेहरारू जो रहा है कहला दादा इनकी आदतें खराब है हाथ बड़ी जल्दी इनका उठाते हम कहने अब की अब हम हाथ तूर इनके अगर लड़कियों के ऊपर उठाए तो।
1: सही कहे हो और राजा भैया देखा यह तरह से जो है महतारी बाप का लड़किया बच्चा बड़े भाग्य से मिला थे संतान है उनका अच्छा संस्कार दो अच्छी परवरिश करो उनका ध्यान रखो कल कतो मेला वेला देखे जाओ तो इस ना हो लड़किया जो है आप पूरी सब्जी की लाइन में लगा हो लड़किया हाथ हथवा छोड़ा के वह कहती आइसक्रीम के लाइन में लग जाए और फिर हेरत फिरत रहा है तो ध्यान रखा जाए लड़किया मन
0: चलता आसमान एक हो जाते
1: हैं। तो चला राजा भैया गवनी एक बढ़िया सुनाए देते ही अपने श्रोता पंचन का और यही तरह बढ़िया बढ़िया बात आपसे जोत रहे कार्यक्रम चल रहे सुगंध माटी की।

0: अबैया झुलनिया उलनिया तो गढ़ूबे कर दिया, और कलकतिया से जौन है सड़ियो लेत आया है, कहे से कि जौन है उनका उनका प्रसन्न रखिए का राजा भैया है, तब तो बढ़िया बढ़िया नीक नीक खाना उना खाए के मिले घरे में, बतावत ना
1: सही बात,
0: सही कहे ना,
1: एकदम सही।
0: तो जौन जौन डिमांड करत जाती जौन है ओका पूरा करत जा कर, वैसे जौन है कल जब मनसेधु हरे यहाँ है जौन पति परमेश्वर है, वो सभी अपने मेहरारू के अपनी पत्नी का ध्यान तो रखबे करत है, लेकिन जब अभी महतारी बाप के बात करे है तो और लड़किया बच्चा है उन्हों सभी अपनी महतारी के बहुत ध्यान रखे करे,
1: बहुत बहुत कहा था महतारी के आंचल में जो छाया है वही में अमृत तो राहत है।
0: बिल्कुल सही कहे हो राजा भैया, और कहा था कि महतारी से बढ़ के केहू नहीं होता,
1: कोई नहीं, और कोनो बात होए कोई से न कह पाओ, बाप से लड़का इतनी बात नहीं कह पाओ, महतारी से कहते चाहे जितनी पीड़ा बैठा हो महतारी के पैरन पर लेट जाओ आंचल डाल दे, मनो आधा दर्द खत्म हो जा।
0: बिल्कुल सही कहे हो राजा भैया, और दर्द में हो अरे तनी ठोकर लाग गए गिर पड़े कुछ हो गए अरे मोर माई अरे मोरी मैया हो तो पहले मैया याद आवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहनी, महतारी के आंचल में सरग है।
0: हाँ सही कहे हो राजा भैया,
1: और सुख दुनिया में कौनी चीज में लाई कहूँ नहीं,
0: बिल्कुल ना। और आपने भारत में तो महतारी एक नहीं होते, वैसे बहुत जने कहा थे महतारी एक का है, हाय भैया माँ एक ही होते हैं सबके, लेकिन हमरे यहाँ तो एक का महतारी नहीं होते, जाना था गांव देश में देख लिया बड़की माई छोटकी माई व पुरवा वाली अम्मा उसरा पुरवाली अम्मा,
1: बिल्कुल बिल्कुल, जितनी बुजुर्ग होती है वही सब माई तुल्य होती है,
0: और क्या,
1: और वह सम्मान दिया जाता है,
0: चाची मौसी नानी सब महतारी होती, महतारी सम्मान होते हैं,
1: और अगर कोई उनका सम्मान नहीं देते तो बहुत बड़ी नालायकी करते
0: हैं। अब देखा कदरस मदर्स डे मनावा जाते, मातृ दिवस है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनावा जाते, बहुत मन

0: जो ना एस महतारी के ना फोनों फोन करी हैं ना जो ना उनके हाल चाल पूछी हैं, लेकिन कल बड़का बड़का स्टेटस स्टोरी लगाई हैं देखियो। हाँ बतावा।
1: लेकिन भाई बहनी हमें ये बताई कि महतारी का ख्याल, महतारी की सेवा, महतारी से प्यार, चेतना करे मने वो कम है। एक बात और बताई, महतारी के ऋण से कोनो संतान उऋण नहीं हो सके थे, चाहे सर के बल खड़ा हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल कहो, सही कहो राजा भैया। अबे देखा जबलपुर में जो उन घटना सामने आए रही, हृदय विदारक घटना, सबके जीव हिल गए हैं। अपने नान भर एक लड़किया के बचावे के लिए महतारी का सीना से लगाए जीव दई देस, लेकिन अपनी लड़किया नहीं
1: छोड़ी।
0: तो बस यही माँ माँ के भावना होते तो एक समझे चाहिए सबका। अपने यह जीवन में अगर समझ ले कि महतारी के चरणन में है असली पुण्य असली स्वर्ग, तो जो उन्हें समझ ले आपके जीवन हो गए धन्य।
1: ये तो बहनी हम बताई कि महतारी बाप जो हैं वो जीवित देव हैं,
0: सही
1: जीवित भगवान हैं, हमारे घर में हैं, हमारे पास हैं, उनकी सेवा से न चूको भैया, वह से स्वर्ग है।
0: वही बिल्कुल सही कहे हो। और परम पिता परमेश्वर के अनुकंपा बनी रहा है सबके ऊपर। और देखा कौनो भी मांग मनोती मांगे खोए तो भैया पहले महतरिये याद आवती है। पहले कहा थे कि देखा हे भगवान हमारी पूरा कह दे तो पूजा हो। और हमरे सबके हिया तो संकटा मैया, तुरंता मैया, चट्ट मैया, सानी मैया, दुर्गा मैया, काली मैया, और
1: अरे बहुत मैया है हम कहे तो, यही लिए इतने अवतार लेके
0: धरती पे
1: आई
0: यहाँ की कौनो। हाँ
1: महतारी का महत्व तो बना रहा है,
0: बना रहा है। और कौनो लड़किया बच्चा के दुख कलेश कुछ न रहा,
1: कुछ
0: है,
1: न रहा है। घर की महतारी का तुम सेवा न करो।
0: मंदिर
1: दो
0: मंदिर में जाके चढ़ाओ,
1: घंटा हलाओ, कुछ नहीं मिले वाला है तुमका। वो महतारी गुस्सा रही है तुमसे।
0: बिल्कुल सही कहे हो राजा भैया, बिल्कुल बहुत सही कहे हो। और यही वजह से जो है हम सभी इस कार्यक्रम में आपका याद दिलावत है। अरे चला फोन घुमावा मम्मा अम्मा का अपने, और हाल चाल पूछा। और अगर घरे में है तो एक कप चाय बना के उनके नाश्ता पानी कराए दे, तनी के उनके सेवा के दे।
1: अच्छा बहनी, हाँ हम कहे दुनिया भरे के सब काम निपटावे के बाद 10-5 मिनट महतारी बाप के पास बैठ जाओ,
0: बैठ जाओ,
1: उनके दुख सुख समझ लियो।
0: हाँ बैठ जाओ, बस वही बहुत
1: है उनके लिए, परम सुख
0: है, बहुत है
1: ना। वो पीठिन पर हाथ फेरी है,
0: बिल्कुल
1: आशीष दिया है,
0: बिल्कुल आशीष दी है। और देखा एक बहुत सुंदर के गवनई अवधि सुनावत है आप सबका, यूं में बहुत आशीर्वाद है और बहुत सबके लिए मनौती है। और ई गवनई है अवसानी मैया के,
1: सुनाओ सुना
0: दी।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अब भैया सुगंध माटी की सुनता है आप सब। अंजू शुक्ला और राजा भैया आपके साथ है। राजा भैया दूर दूर रैया वाला गाना सुनाए रहे हैं भैया। हाँ, सानी भैया
3: हर महतारी मानत है,
2: हाँ।
3: है और जब उनकी मानता पूरी हो जाते तो खवावत है।
2: हाँ, और हमें सब किया तो जो ना कौनो शुभ कारज हो है तो पहले जो ना दुर्दुरिया माता के अवसानी माता के सुहागन खवाई जाते
3: हैं और बड़े भाव से विधि विधान से या दुर्दुरैया खवाई जाते
2: हैं। अच्छा बहुत जने जो ना इस तरह करते हैं अवसानी मैया करते हैं कहूँ संकटा मैया कहूँ चट्ट मैया मतलब महतारी से जो ना है बढ़ते कौनो स्वरूप हो
3: महतारी का स्वरूप।
2: हाँ और हम जो ना मान मनौती मांग के जब पूरा हो जाए तो खवावा किया जाता
3: है। क्षेत्र में अलग अलग मान्यता है तो करते है। और एक बात बहनी हम बतावा चाहित रहे कि आजकल मनई मनई से तो प्यार करत नहीं न फरता है वह के प्रति मनमा अपने जहरू घोला कर
2: सही गए
3: लेकिन पशु प्रेमी बहुत हो गए। हम यो नहीं कहे थे कि पशु प्रेम करब गलत बात है बहुत बढ़िया बात है लेकिन अब उनके कुछ तरीका भी हैं तौर तरीका हैं। पशु पालो तो उनकी व्यवस्था भी सही बनाओ
2: सही कहे सही कहे।
3: अब कुछ है दिन पहले की बात है के धनी सर भैया है।
2: अच्छा
3: वो का कहा थे उनका डॉग लवर। हाँ डॉग लवर
2: डॉग लवर
3: कुकुर प्रेमी वही है उनके यहाँ 8-10 कुत्ता।
2: अच्छा
3: छोटे बड़े सब
2: खावत पियावत है
3: हाँ परे रहा थे और कहूँ जाखत है तो उठाई उलावत तो अब उनके यहाँ का भवा के एक दिन बरसतिया का बेटे बाजार रही रहा है।
2: अच्छा
3: और वह हाथे में पकड़े रहा है कुछ खाए पिए वाला सामान सब दौड़ा लेन भगवाए चढ़ बटो के ऊपर और गिरा दिन मारे ऐसी वैसी नोच डाइन चिल्लाए फिर हम उधर से दूर रहन दौड़ गए।

0: मारा एक आधे के डंडा भगाएं चिल्लाए के, तब तक अपनों आगे हम कहें यार देखो यो प्रेम तो तुम्हारा ठीक है,
1: हाँ, सही
0: सेवा करो इनकी, लेकिन उनकी व्यवस्था भी कायदे
1: हाँ,
0: से बनाओ।
1: सही सही क्यों देख देखे रहो भैया कि कहूँ लड़किया बच्चा का केहू रहा चलत मनी का दौड़ावे ना काटे ना।
0: और तुम छपरा तरे बैठ देख रहे हो वहां से उर रो कह रहे हो चलो चलो तो कुछ मनी है मनाई तो आजकल मानत नहीं इतना कहे।
1: बताओ बेटी वा का कितना चोट लग गया हो, कितना
0: चार जगह का होएगा भूके कितने इंजेक्शन लगी
1: है। हाँ, सही कहो।
0: तो वह तो भुगत गई उसके मातारी बाप भुगत गए, तो तुम्हारा जो पशु प्रेम है धरा रहेगा। तो आइस करो भाई, पशु पालन करो, प्रेम करो पशुवन से, लेकिन ऐसा ध्यान रखो कोनो को नुकसान न पहुंचावे।
1: सही कह राजा भैया।
0: हाँ
1: जीव जंतु पशु प्रेम बहुत जरूरी है, मनई इंसान न ध्यान दही है तो इनका का हो भाई है। तो हर पशु प्राणी के पक्षी का आप सब ध्यान रखो, उनके खाए पिए के देखभाल करो, उनके शरण के देखभाल करो, है उनका छाव कही दियो कहूँ बिछावे के करे के, लेकिन भैया कंट्रोल करो है। और सरकारी व्यवस्था बहुत है तगड़ी राजा भैया, बताई ना सुई हुई लागत है, आप कंप्लेन कही के बुलावा अपने जो उन्हें कॉलोनी में जितना है आपके जानवर उनका सबका सुई लगवाए दियो है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो रोग न हो काटे पर।
1: हाँ सही बात है। और बाकी जो ना है व्यवस्था इस तरह रखे हो कि जो ना अगर कहूँ कौनो कटहा कुकुर वगैरह आए तो एक बोर्ड आवत है ना कुत्तों से सावधान, इस तरह से लिख दो तो कि ताकि जो राह चलत मने अनजान मने आवत है वो थोड़ा सावधानी से रहा है। अब भाई जरूरी है वही उन्हों का घर है, उन्हों सब रहा है वहां, लेकिन जे जिम्मेदारी लेता है जे खबावत भी आवत है वो का यो जिम्मेदारी ले चाहिए कि जो ना केहू का काटे उटे
0: काटे ना, कोई तकलीफ न हो। और देखो के हम सुना है कि कुकुर काटे के सुई पेटे में लागत है।
1: अरे न पूछा राजा भैया, बहुत तकलीफ दे होते
0: तकलीफ हुई।
1: हाँ कितनी तकलीफ दे बात होते, लेकिन भैया देखा राजा भैया बहुत नीक बात बतायो, तो ओकरे बात तो फिर वो ध्यान दे हुई है।
0: हाँ हाँ ध्यान दे है, ध्यान ध्यान का है नहीं, दबाव डाला जाए और आप जो है वही बनवाई है।
1: हाँ बनवाए देंगे उनका, मतलब गेट वेट के अंदर रखा करें कि निकल न पावे हैं, क्योंकि दौड़ावे न पावे।
0: हाँ हम जब कहें तो चार छह गांव वाले और टाल हो गए, तो फिर उनके ऊपर दबाव बना। अब उनकी व्यवस्था कहीं नहीं
1: है। चला ये तो बहुत बढ़िया बात बताए हो राजा भैया। चला यही बात पे एक अपने श्रोता पंजन का एक बढ़िया गौने ही सुनाई दी, और ये देखा इतना ईमेल आवा है, इतना बढ़िया बढ़िया बात लिख के सब भेजे है। चला उन्हों को तो पढ़े टाइम चाहिए, लेकिन पहले हम तो गाना सुनाई है, और ये गाना बड़ा मजेदार है, सुना ध्यान से। अरे मनोरंजन खातिर सुना बताई बस ऐसे ना
0: सुनाई हो।
1: हाँ सुनाओ थे देखा,
0: अच्छा
1: बहुत झलकौआ गाना है। हाँ

0: ए राजा भैया,
1: हाँ,
0: दोनों ही चटकदार रही ना।
1: हाँ, बहुत बहुत बहुत।
0: तो चलो हमने श्रोता पंचर का मजा आया जाते, यही बजाए।
1: हमारा तो पाँव फिर कह लागे।
0: पैर चल रहा राजा भैया। अच्छा राजा भैया, यह तरह जो अपन लोग गीत होते है ऐसे बाजा वाजा लेके बैठ जाते रहे चौपाल में, मन ही जो ना क्यों गावत रहा, क्यों बजावत रहा, क्यों नाचत रहा, मजा।

0: ए राजा भैया,
1: हाँ,
0: दोनों ही चटकदार रही ना।
1: हाँ, बहुत बहुत बहुत।
0: तो चलो हमने श्रोता पेंशन का मजा आया जाते, यही बजाए।
1: हमारे तो पाँव थिर कह लागे।
0: पैर चल रहा राजा भैया। अच्छा राजा भैया, यह तरह जो अपन लोग गीत होते है ऐसे बाजा वाजा लेके बैठ जात रहे चौपाल में, मने जो ना केहू गावत रहा, केहू बजावत रहा, केहू नाचत रहा, मजा आ जात रहा।
1: अरे का बात, खाली पखौरा नहीं फरकती, अंदर से हुल उठत।
0: सही कहे हो,
1: गीत में वह कशिश है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से हुल उठत है, मनवा ऐसे झूम
1: जात है कि बस लहर लहर लहराए लागे।
0: अरे वाह वाह वाह। और यह कहती जो ना हमारे जो श्रोता पंच है ना, जब ये कार्यक्रम आवत है ना, तो उन्हों सबके मनवा डोले लागत है। हाँ देखा के इतना सारा ईमेल आए गया। हाँ जल्दी जल्दी देखा आपको बताई, रमेश कुमार भैया हमका मेल करे यहाँ कोलकाता में सुनता। हाँ
1: अरे
0: हाँ कोलकाता में सुनता है, देखा तहसील कैंपियरगंज जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाला है।
1: हाँ।
0: और ये जमुना सुगंध माटी के प्रोग्राम बहुत सुंदर लागेला, कहा था कृष्ण कुमार ग्राम जगन्नाथपुर पोस्ट लोहरपुरवा तहसील कैंपियरगंज गोरखपुर से है। कमाए उमाए गए हुई कोलकाता,
1: बिल्कुल भाई,
0: नौकरी चाकरी
1: जाते हैं इधर सुधर।
0: हाँ हाँ, और देखा विकास आपका चरण स्पर्श लिख के भेजे यहाँ,
1: खुश रहो।
0: हाँ
1: बहुत बहुत आभार और बड़ा धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम सुनत हो।
0: हाँ और एक उन्नाव से सुनता है, सफीपुर जिला उन्नाव से। अच्छा। और कार्यक्रम की तारीफ इनका गाना ही बहुत नीक लागती है।
1: सुने रहो। हाँ। सुने रहो।
0: और झग्गर राम साहू भैया भरे सुनता है बहुत जने, बबलू साहू, जामुन देवी, पूजा प्रेम, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा, सब जने सुनता है। और कहाँ से ये सभी मेल करे हैं ये तो नहीं लिखे हैं भैया, हमको दिखाई नहीं पड़ता है इनके हुआ की कहाँ से मेल हमें करे हैं, लेकिन दोनों पिंकी बारी बहनी बगलिये से अमीनाबाद से करती है पड़ोस में आए, और कहा थी कि जमुना है आज हम बोलबे ना, आज हम कविता बोली आप दोनों जन के
1: अच्छा।
0: लिए। हाँ और कविता लिख के भेज दिए हैं, और कहा थी यहाँ कि देखा अंजू मैम पूरा पढ़िएगा, बहुत दिल से भेजी हूँ। अच्छा। तो देखा पढ़ी थे है? राजा भैया ध्यान से सुने, कहा थी यहाँ कि राजा भैया के ठाठ निराले, चटकीदार कुर्ता पैजामा वाले, सुगंध माटी का शो सजावत है, अपनी बोली से मन हरसावत है, और 60 पार के उम्र भले हो। अब ए राजा भैया ये तो पोल खोलती हैं।
1: पोल खोले जो तो काम
0: है, 60 पार की उम्र हो बतावती हैं सबका। अरे राजा भैया हमारे अबे कितना बड़ा है ये है भाई। हाँ देखा कहा थी आगे कि 60 पार की उम्र भले हो, जो सो हुआ का जवानन सो हो, हंसी मजाक और मीठी बोली सुनत है, खिल उठत सबके टोली, माटी के खुशबू संग ले आए, अपन गांव के रंग जमाए, राजा भैया जियत रहे हजारन साल, रहुआ बिना सूना लागे हर चौपाल। और अंजू शुक्ला मैडम के बोली मिठास सुनते, खिल उठे सबके एहसास, सुगंध माटी का मंच संभारे, अपने अंदाज से दिल में उतरे, और चेहरा पर मुस्कान निराली, बातन में अपनापन वाली, गाँव गाँव के रंग जमावे, माटी का खुशबू दूर तक पहुँचावे, राजा भैया संग जमे जोड़ी प्यारी, इसे चंदा संग चमके फुलवारी, अंजू मैडम जियत रहे खुशवाल, और रउआ से रोशन बा हर चौपाल। वाह भाई वाह,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: पिंकी, यही है।
1: हाँ।
0: बहुत बढ़िया लिखे लागू,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत
0: सब लेखिका कवित्री बनी है सब जने।
1: हाँ बिल्कुल, पूरा वर्णन कर दी।
0: अच्छा फोटो वोटो देख लेते सब स्टोरी पे है कि राजा भैया कौन कुर्ता पहन के आए।
1: वैसे तो समझी नहीं।
0: हाँ अच्छा, मोनी दून भैया कुडरी खैराबाद सीतापुर में सुनता है, देखा फोटो वोटो भेज दे, सेल्फी लई के रेडियो चलता है बाजा, और लड़कियों बैठा है, और प्रोग्राम धमाकेदार चलता है कहा था, और थोड़ी आवाज बढ़ाए रहे हैं रेडियो के फुल वॉल्यूम में सुनता है, और मुनेश कुमार राज भैया भी सुनता है, और राजा भैया कैसे नहाए बरसात और साथ भाई की नहीं भाई बतावा।
1: हाँ तो 4 दिन पहले तो भाई रहा है भाई, 30-31 पहली तारीख तक। अब तो खैर मौसम
0: ठीक है।
1: हाँ बराबर है।
0: हाँ,
1: हाँ, आगे कोनो संभावना तो मौसम विभाग वाले दे नहीं रहे।
0: हाँ,
1: 2-4 दिन।
0: हाँ चला। हाँ ये बात तो सही है, वैसे मौसम ठीक ठाक रहा है, गर्मी और भी ना पड़े तो भले या है, लेकिन अब का बताई पड़े तो है ही है भाई।
1: गर्मी है। हाँ, तो गर्मी तो पड़बे करे,
0: पड़बे करे। हाँ, जम के पड़े है, हचक के पड़े,
1: सुना ज्यादा पड़ी,
0: बहुत ज्यादा पड़ी,
1: तो अपन सब व्यवस्था रखे हैं लोग।
0: हाँ हाँ तो चला। अच्छा मुनेश कुमार राज भैया जो आप पूछे है ना वो बात सही कहे। हाँ उनके वह नाम है, एक गुप्त बातें पूछे तो हम गुप्त ढंग से इनका जवाब दे दिए। अच्छा जावेद अख्तर भैया आजमगढ़ से सुनता है, और बहुत मोबाइल ऐप पे सुनता है, बहुत तारीफ करके इन्हों भेजे हैं, वारिस अली खान भैया, इंद्रपाल मिश्रा भैया कहाता है बहुत उपयोगी बात बतावत है आप हैं। अब बोली जो ना बहुत मीठी लागत यह है। अब ये ग्राम अमृता महोली सीतापुर से सुनता है, और वारिस अली खान भैया जो

0: आपका प्रणाम भेजे है, कार्यक्रम
1: खुश
0: बहुत
1: रहो भैया, खुश रहो।
0: शिद्दत से सुनता है, संजय नगर ऐसबाग से जो है, और कहा था पहले सादा पान खाता था, बाद में छोड़ दिया। आपने सही बताया, पान के कई फायदे हैं, लेकिन सादा पान खाने से
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: भैया गंदगी ना फैलाने से
1: बिल्कुल
0: ना राजा भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ, और देखा बहुत मन ही हमका मेल करे हैं, आशा पांडे बहनी अमरावती महाराष्ट्र से सुनती हैं, और इनका जो है बहुत सुहाना लगता है प्रोग्राम हमेशा की तरह, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के लिए सभी का बधाई देती हैं।
1: धन्यवाद
0: हाँ,
1: धन्यवाद, बहुत आभार।
0: और बहुत जने हमका मेल करे हैं, लेकिन भैया बखत हो गया कि एक बढ़िया के गौ नहीं सुनाए दे, एक सुना और बाद वापस आवा, तो बहुत नीक नीक बत कही और बताई हैं अबे राजा भैया है, तो सुनत रहा है आप सब सुगंध माटी की।

0: का बात है भैया, सुनिया अंगना में पाजेब गाड़े हर सुइया में झुलनी कर धनिया और जो नहा हसुली सब मिली या सेवा करी है सास के पतोहिया रानी तबे तो मिली।
1: बिल्कुल सही हा? बात है। अरे ना ही मिले मगर बुजुर्गन की सेवा तो ऐसे करे चाहिए। सयानन का धर्म है,
0: बहुत धर्म है। और भैया जमीन जायदाद और गहना गूठी के लालच में ना ही महतारी बाप सास ससुर के सेवा करत जा, निस्वार्थ सेवा करत जा ना। और ए भैया राजा भैया देखा 10:53 हाँ। और आपका यही तरह नहीं झंझटी भैया कहते भाई, जो बतावत रहे हमका झंझट मोल लेके आवा है बताए हाँ। दिया तनी हमने श्रोता पेंशन का जल्दी जल्दी हाँ। से।

0: बहनी झंझट नहीं है, एक आम बात है और लोग जी का ध्यान नहीं रखा। हम देखे थे कि सहारन में भी बहुत से लोग और गांवन के लोग बहुत से हेलमेट नहीं लगावत मोटरसाइकिल चलावत बिरिया
1: है। हाँ, बरवा जो लहरावत की चलत है खराब हो जाए। हाँ,
0: अब बिरजू दादा का लड़कवा करीब हाँ अच्छा खासा पट्टा है और यहाँ लखनऊ में बाजार करे आवा रहा है। हमारे ख्याल करूँ नखास उखास के पास कुछ और कौन चीज से टकरान गाड़ी हाली,
1: अरे राम,
0: और डिवाइडर से टकरा के गिर गवा और उसके दिमाग में चोट लग गए।
1: अरे दैया,
0: लोग उठाए उठू को एक लेके ट्रामा सेंटर पहुंचे, कोई दो चार टेस्ट लिखी, जब तक पर्चा उर्चा बना तब तक पता लगा कि डॉक्टर कहिस की
1: जवाब दे दे
0: कुछ नहीं बचा। अब बिरजू दादा का बुढ़ापा में वो कष्ट मिला है,
1: अरे राम,
0: और जरा सी लापरवाही के हेलमेट नहीं लगाए रहे।
1: सही कहे हो राजा भैया।
0: भैया चाहे गांव के हो चाहे शहर के लोग हो, हमार हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है गाड़ी वाहन चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ।
1: बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात कहे हो राजा भैया। जीवन से बढ़ के कुछ नहीं होते। हेलमेट लगावा, सीट बेल्ट पहना और बहुत तेजी न दिखावा, आराम से चला।
0: अरे हाथ पैर टूटी है तो जुड़ गई है और इस दुर्घटना हो जाते हैं तो हाथ से जैसे तोता उड़ेगा।
1: सही
0: सेवा पाला,
1: सही कहे हो भाई। ये तो बहुत मतलब महतारी बाप के सामने आगे अगर जवान बेटवा बिटिया लड़किया बच्चा कुछ कुछ हो जाते हैं तो जो उन्हें महतारी बाप के जीवन तो जो हाँ,
0: महतारी बाप का तो कष्ट होता है और वह की मेहरिया के जू पर काबिल।
1: अरे राम, सही कहे हो राजा भैया। ये तो बड़ा दर्द विदारक आप जो उन्हें घटना सुनाए दे हो, लेकिन एक मकसद ये है कि हमारे श्रोता पंचन जो सुनता है एक ध्यान रखे, जो अगर दुर्घटना कोनो घटना घटित होते उसे सीखे की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और सावधान सुरक्षित रह के
0: गांठ बांध ले कि मोटरसाइकिल चलेबे तो हेलमेट जरूर लगेबे,
1: बिल्कुल
0: स्कूटर चलेबे हेलमेट जरूर लगेबे, और गाड़ी चौपहिया गाड़ी है तो वही मां भाई उसको कहा बताए
1: सीट बेल्ट,
0: सीट बेल्ट, सीट बेल्ट जरूर लगावे भैया,
1: और गाड़ी के स्पीड पे नियंत्रण रखे,
0: बिल्कुल
1: उड़ावे की जरूरत ना है।
0: बिल्कुल नियंत्रित स्पीड में गाड़ी चलावे, वाहन चलावे और सबसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है अपनी जीवन की सुरक्षा करें।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है राजा भैया। और देखा राजा भैया कार्यक्रम सुना थे तो बहुत कुछ सीखे मिले थे आप सबका। हाँ, तो राजा भैया आपके साथ बहुत जल्दी फिर से आई है कार्यक्रम सुगंध माटी के। अरे राजा भैया, ये घड़ीवा जो कहीं तेज चलती है कहा बताइए,
0: हम लोगों के कार्यक्रम से खार खात।
1: हाँ सही कहे, बड़ी जल्दी
0: तेज चले लगे,
1: इसे उड़ के जाना कैसे हो गए कि 10:56 हो गए पता नहीं लग।
0: देखो तो
1: हाँ, अब ये राजा भैया बैठा रहा भाई ना जा। और यही तरह हमारा श्रोता पंचन कहा थे कि जो ना है ये का कहा थी आवत है तो राजा भैया कार्यक्रम के टाइम जो है 2 घंटा करे चाहिए। हाँ, मन नहीं कहा था कि आपका जाए दे, लेकिन अब कहा बताइए समय
0: आरो मन का हो थे जाके।
1: देखा इतना ईमेल अजय सिंह कुमार, वकील अहमद, मोनू भैया, बबीता राव, सत्यम पाल, शैलेश कुमार, बहुत जने बाबू अंसारी, कईयो जने लेखे लिख के भेजे। मुनीश कुमार भैया पूछा था, अमित कुमारो भेजे। ए मुनीश कुमार भैया पूछा था राजा भैया कौन है, वही है जो हमें लग रहे हैं भैया तो काव लागत है तुम नहीं जाने, लेकिन आप असली नाम बताए दे इनका सबका।
0: नहीं, असली नाम का पूरे शहर में थिएटर में जो है राजे भैया जानते हैं
1: सब राजा
0: भैया, जो जान रहे हैं वही राजा भैया।
1: हाँ, वह राजा भैया है। और एक बात बताई दी, ये वही राजा भैया है जो लखनऊ के रंगमंच के जाना माना कलाकार, फिल्म कलाकार और जो उन्हें आकाशवाणी के बहुत सीनियर कलाकार हैं और जो उन कई उठी फिल्मों में भी काम करे हैं। आमिर खान भैया का जो उन्हें अवधि बोले नहीं सिखाए रहे पिक्चर लगान पिक्चर में आए, तो ऐसे हमारे सबके सौभाग्य कि आपके साथ हम कार्यक्रम करते ही मजा बहुत आ।
0: हमार सौभाग्य है कि आपके साथ काम कर रहे हैं, आकाशवाणी वाले का धन्यवाद कि हमका ये अवसर दीन, और ये भैया लोगन का आभार कितने प्यार से सुना थे।
1: हाँ, बहुत प्यार से सुना थे सब जने, और देखा सबके प्यार के लिए एक बढ़िया गाना। हाँ। और आखिरी गाना ये हमारे आखिरी गाना ये है इस कार्यक्रम के, लेकिन जो ना है राजा भैया के हम बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते ही आप सबके तरफ से है। आपके ईमेल जो उन बचा है वो अगले कार्यक्रम में पढ़वे जरूर, ठीक है।
0: बहुत प्यार।
1: हाँ, तो भैया श्रोता पंचन आप सबका हम अंजू शुक्ला और राजा भैया की ओर से राम राम
0: राम राम राम, राम।

हेलो एंड सलाम, नमस्ते, सुस्वागतम, वेलकम, खुश आमदीद, मेहरबान दोस्तों. 102.2 FM रेनबो कानपुर पर हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है हम नवा.

0: मैं हूं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आज एक गौरव, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरी हमनवा और आपकी दोस्त हाजिर हैं।
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर लिसनर्स। भाई गौरव, तुमने अभी सैटरडे छुट्टी की बात की है ना, क्योंकि आज तुम भी जानते हो अभी जब हम लोग ऑफ माइक थे तो छुट्टियों की बातें हो रही थी, तो तुमने अभी छुट्टी की बात करी तो बहुत सारे लोग ना तुमने देखा होगा कि छुट्टी के दिन अपनी तरह से पूरा दिन बिताते हैं, और वैसे भी सबकी छुट्टी नहीं होती, आज जैसे सेकंड सैटरडे भी है और कुछ लोगों की तो एवरी सैटरडे छुट्टी होती है।
0: हाँ जी मालनी जी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में आवाज से आप पहचान ही गए होंगे, हमारे साथ हैं मालनी जी। और दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं, आज है मई का दूसरा सैटरडे, आज काफी लोगों की छुट्टियां हैं, पर ये मैं भी जानता हूँ कि भाई छुट्टी वाले दिन का जो आलम होता है ना वो बड़ा ही कमाल का होता है, जबकि खिड़की से धूप कमरे के अंदर आकर पूरे कमरे को जगाने नहीं लगती ना, तब तक नींद का भाग नहीं का है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: फिलहाल बातें स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं बता दूं कि हमनवा प्रोग्राम के साथ मैं हूँ गौरव और आपके साथ हैं
1: मालिनी। अच्छा गौरव, देखो हम लोग छुट्टियों की बातें शुरू किए तो यहाँ फीलिंग भी आने लगी है हम लोग को छुट्टियों वाली। हम लोग बिंदास हो रहे हैं, लग रहा है कि आज हम भी फुल ऑन मस्ती में रहे है ना। तो इस समय जब हम लोग लगता है कोई साथ हो और फुर्सत के लम्हे होते हैं तो बस छुट्टियों में लगता है कोई रोके टोके नहीं, अपनी तरह से आज हमें जीने की पूरी छूट होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही है। और आज की जो छुट्टी का आनंद लेने के लिए ना बहुत सारे लोगों के हाथों में इस वक्त चाय, कॉफी कप या कुछ भी हो सकता है ना, जरूर होगा। और जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, सुबह उठना, वॉक करना, योगा एक्सरसाइज करना, ये सब जो है बीमारियों को दूर रखता ही है, वो सब जानते हैं।
1: पता है इस श्रेणी में मैं भी आती हूँ, मेरे लिए मतलब एक्सरसाइज वगैरह ले लो तो अपने लिए एक घंटा मैं डेली निकालती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मुझे अपनी नींद से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन एक घंटा अपने लिए मैं जरूर निकालती हूँ गौरव। और एक कहावत भी है ना, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। फिर भी कोई मतलब इसमें बात नहीं है, जो लोग अभी सोकर उठे हैं उन्हें एक दिन तो भाई मैं ये कहूंगी कि अपने हिसाब से जरूर बिताना चाहिए, क्योंकि हाथ में जब मोबाइल होगा अपने मन की हम चैट्स देखेंगे, अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट को सुनेंगे, अपने मन में जो है कुछ सोचेंगे, तो उस फीलिंग का जो एक सुखदाई अनुभव होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है।
0: और बिल्कुल सही है। तो 11 बजे के बाद हम भी आपसे जुड़ चुके हैं, जहां पर एंटरटेनिंग म्यूजिक और गपशप, थोड़ी सी आपसे थोड़ी जरूरी बातें, थोड़ी इंफॉर्मेटिकल, थोड़ी हेल्थ और सब कुछ। तो बहुत ही खूबसूरत एहसास है ना आपने जो कनेक्ट किया है मालनी जी। फिलहाल तो

0: इस वक्त साथ हैं हम नवा प्रोग्राम के शो पर, और आज प्रोग्राम में हम करेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और गाने फुल ऑन मस्ती वाले।
1: अच्छा गौरव, एक बात और बताओ, आज बहुत हमारी तुम्हारी हमनवा जो जोड़ी आई है ना, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक रहस्य है, क्या है बताओ?
0: माय गॉड, सीक्रेट?
1: नहीं,
0: गुत्थी तो सुलझा पाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। अगर बेटर होगा।
1: अच्छा ये बताओ, इससे पहले तुमने मेरे साथ हम नवा कब किया?
0: नो, मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम। जी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज फर्स्ट टाइम हम आपके साथ हैं और करेंगे खूब सारी बातें,
1: यानी कि आज आपकी सुबह प्यारी और फुल ऑन म्यूजिक मस्ती वाली होने वाली है। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की, और यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की भी बातें करेंगे, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले की जन्म जयंती की बातें होंगी यहाँ पर।
0: तेजस्विनी सेगमेंट के साथ ही रेसिपी में क्या होगा, क्या लगेगा तड़का, तो ये बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा, है ना। सोशल मीडिया पर बढ़ता समय और इसके क्या होंगे दुष्प्रभाव, ये भी हमारे टॉपिक्स हैं। और जुड़ा हुआ कोई भी, इसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपके पास सजेशन है कि भाई सोशल मीडिया पर इतना समय क्यों बिताना चाहिए, या लोग क्यों बिता रहे हैं, या उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इन सब के बारे में अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें, तो आपके पास हमारी वही मेल आईडी है aircansomedia@gmail.com,
1: यानी कि aircansomedia@gmail.com।
0: हमें रहेगा इंतजार आपकी ईमेल का, तब तक के लिए सुनिए ये गाना।

0: क्या बात है मालिनी जी, बहुत ही धुरंधर स्टार्ट करी आपने प्रोग्राम की है कि नहीं
1: भाई देखो,
0: बिल्कुल।
1: होता क्या ना गौरव, हमने लिसनर से कमिटमेंट किया था कि आज फुल ऑन मस्ती होने वाले हैं हम नवा के शो पर, तो कुछ तो पूरा करना चाहिए ना।
0: बहुत जरूरी है, मस्ती तो बनती है बिल्कुल बिल्कुल जीवन में। और ये जो गाना है ना, ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो रहा है।
1: एग्जैक्टली।
0: और सोशल मीडिया की बात चलिए तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हाल है वो कुछ इस तरह का है कि उपकरणों के साथ जीने के जो है ना नतीजे हम जानते हैं, इनफैक्ट हम रोज देख भी रहे हैं कि बट लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि इसमें लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी शहर की हवाई तस्वीर ली जाए, यानी कि बहुत ऊपर से तस्वीर ली जाए, तो दिखेगा कि अधिकांश लोग मोबाइल पर हैं और जो नहीं भी है ना वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया सोसाइटी नहीं का जमाना है। और हमारी जो सुबह और रात है ना, दिन शायद, यानी कि सुबह और जो रात है वो हमारी टेक्नोलॉजी पे ना बेस्ड हो गई है पूरी तरह से। हम यानी कि मोहताज हो गए हैं अपने मोबाइल फोन के और सोशल मीडिया के। तो कभी कभी तो मन में सवाल उठते हैं कि क्या शायद आज डिजिटल युग में सोशल मीडिया की दहलीज पे जीवन क्या हार बैठा है।
1: बहुत गंभीर विषय है गौरव ये। और कहते हैं ना, जो कुछ भी हो रहा है उससे हम अनजान तो नहीं है।
0: बिल्कुल सही है,
1: है ना। हम जानते हैं लेकिन हम अंदर से चाहकर भी उस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं।
0: इस
1: हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका हमें क्या नुकसान हो रहा है, सोशल मीडिया के कारण क्या भला होगा भला किसी का। और मैं तो कहूंगी, अगर हम जानते हैं तो उसकी बुराई को देखें। बस सिर्फ जरूरी जितनी चीजें, बस उसी के लिए हमें जुड़ना चाहिए उससे। हम जानते हैं अच्छी तरह की सीमाएं हैं, फिर भी ना जाने क्यों हम अपने ज्ञान की उपेक्षा आज कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। सोशल मीडिया को समझने के लिए हमें इसके शुरुआती दिनों को बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि सोशल मीडिया को आसानी से कुछ हम जब समझाएंगे ना, तो इस तरह से हम समझाएंगे जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि इसके शुरुआती दिनों को हम कैसे समझें। तो ये हमारे सांस्कृतिक और तकनीकी बदलावों का एक जीता जागता डिजिटल संग्रह बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के शुरुआती दिनों से लेकर वर्तमान प्रभुत्व तक यूजर्स और सोशल व्यूज में जो बदलाव के साथ साथ इसका प्रभाव भी दिख रहा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
0: बिल्कुल, एक्चुअली ऑनलाइन कम्युनिकेशन का जो शुरुआती दिनों में ना सोशल मीडिया जो लिमिटेड था, वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड जो प्लेटफॉर्म था वो ही था, और ऑनलाइन कनेक्टिविटी का जो इजी नेटवर्क यही था, है ना। समय के साथ जो है सोशल मीडिया कॉम्प्लिकेटेड मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में बदल गया, जो न केवल लोगों को जोड़ता है बल्कि इंडस्ट्रीज, पॉलिटिक्स और कल्चर को भी जोड़ने लगा, जिसकी वजह से यूजर्स जरूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करने लगे। सन 2010 की बात करें तो इस सवाल को सोशल मीडिया क्रांति कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तब से लेके 2026 तक सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला जो समय है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू सामने आ रहे हैं।
1: अच्छा गौरव, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि देखो, सोशल मीडिया आज लोगों की पॉकेट में, यानी कि फोन।
0: बिल्कुल सही है,
1: ठीक है। फोन से सारी चीज पॉसिबल है, इतने हाईटेक फोन आ चुके हैं।
0: Exactly.
1: अब हमें कहीं पेमेंट भी करना है तो भी हम मतलब ऑनलाइन पेमेंट को चूज करने लगे हैं।
0: बिल्कुल सही है।
1: मोबाइल के बिना मतलब एक आदमी अधूरा सा हो गया, पूरी दुनिया उसकी मोबाइल में, उसको कुछ भी जरूरत है वो उस जगह पे खड़े रह के सारे काम आज पूरे कर रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरह से एडिक्ट होता जा रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो साइड इफेक्ट है, वो उसकी हेल्थ पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल सही है मान लीजिए। एक्चुअली मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जब भी किसी चीज का इन्वेंशन होता है ना, तो वो हमारे साधन के लिए होता है, है ना। यानी कि आप अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज फॉर योर असिस्टेंस नॉट फॉर डिपेंडेंस। लेकिन आज की डेट में जो है जो डिपेंडेंसी जो गैजेट्स पे है ना, वो बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की, तो ये सारी चीजें हमारे, अगर हम इसे लिमिटेड यूज करें तो हमारे लिए अच्छा है।
1: अच्छा है, हमारी सुविधा के लिए है।
0: हाँ, बिल्कुल सही है। और जरूरत से ज्यादा चीज तो आई थिंक सभी चीज बुरी होती है ना।
1: आप देखो ना, घर में बच्चे हैं, आजकल सामने दुकान है, आपका घर है उसके सड़क क्रॉस करके दुकान है, लेकिन बच्चे ऑनलाइन चीजें मंगाना पसंद करते हैं।
0: हाँ, exactly.
1: उन्हें चलना बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: बिल्कुल सही है।
1: तो और एक मतलब मैं बताना कुछ कहना चाह रहे थे गौरव।
0: नहीं बिल्कुल, आप प्रोसीड करिए।
1: एक सर्वे के अनुसार ना, 9 से 17 साल के लगभग काफी हद तक बच्चे जो है रोजाना 3 से ज्यादा घंटे जो है, 3 से घंटे मतलब मतलब 3 से 4 घंटे 5 घंटे कह लो सोशल मीडिया स्क्रीन पर समय बिता रहे हैं आज, और इसके बहुत गंभीर परिणाम आजकल सामने आ रहे हैं। अगर अकेले इंडिया की ही हम बात करें तो 15 से 29 साल के युवाओं में सोशल मीडिया और मोबाइल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, ये एक आंकड़े में सामने आया है, जिसकी वजह से नींद में कमी आई है, बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी उनके अंदर देखी जा रही है। सोशल मीडिया और मनोरंजन पर समय 11.04 यानी 11.04% बढ़ा है, जबकि नींद और व्यक्ति देखभाल में समय जो है 1.25% की इसमें कमी आई है।
0: बहुत बड़ा गैप है,
1: बहुत बड़ा गैप है।
0: ऑब्वियसली मींस कि जो है आपका जो समय मोबाइल पर ज्यादा बीतने की वजह से आप और कहीं ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, तो ये जो एनालिसिस है ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, और साथ ही साथ इसका जो असर है ना वो मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा टाइम देने से अकेलापन, चिंता, अवसाद, कम आत्मसम्मान यानी कि लो कॉन्फिडेंस और डिजिटल दिखावे की वजह से मानसिक तनाव और बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ना फैमिली और रिलेशनशिप पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक्चुअली हाथ में रखा मोबाइल लोगों को एक फेक कंट्रोल का एहसास कराता है, उन्हें लगता है कि इस नकली दुनिया में वो ही सही कर रहे हैं, कम से कम सब कुछ उनके मुताबिक हो रहा है, कम से कम सब कुछ उनके कंट्रोल में है। बट दोस्तों इस भ्रम में जीना खासकर मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत नुकसानदेह हो सकता है।
1: वैसे एक बात मैं बताऊं गौरव, देखो हम और तुम मोबाइल से दूर हैं, तुम्हारा मोबाइल उधर कॉर्नर में, मेरा एकदम कॉर्नर में, हम लोग मोबाइल के टच में बिल्कुल नहीं है सच में। हाँ लेकिन कभी कभी हम स्क्रीन पर आपकी मेल्स को जरूर चेक करते हैं, तो भाई हमने आपको बताया था कि आप कितना वक्त मोबाइल के साथ बिताते हैं या सोशल मीडिया के साथ बिताते हैं। आप अपने मैसेज करें, अपने दिल की बात हमसे शेयर करें कि आप कैसा फील करते हैं, उसके बिना आप कैसा फील करते हैं। हमारा मेल आई डी जैसा कि हमने बताया ही था aarkanso@gmail.com। और सोशल मीडिया पर जब बात चल रही तो सोशल मीडिया की जो है पर्सनल डिजिटल और पर्सनल फोटोज कहते हैं जो हमारी पर्सनल डिटेल्स होती है ना, और पर्सनल फोटोज होती हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, उनको लाइक्स मिलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बट आपको ना ये भी सोचना चाहिए कि इससे कई बार हम स्कैम के भी शिकार हो जाते, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्तिगत जानकारी स्कैमर्स के लिए एक आसान रास्ता होती है, जिसकी वजह से कई बार आर्थिक नुकसान भी हो जाता है।
0: बिल्कुल सही है, और आजकल आपके पास बहुत सारे यानी अनगिनत ऑप्शन और उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ सोशल मीडिया के थ्रू स्कैम्स हुआ है। तो दोस्तों साइंस के नजरिए से अगर देखें तो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या फिर मोबाइल चेक करने से डोपामिन हार्मोन जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है संतुलन बिगाड़ सकता है, काम के टाइम आपका फोकस भी भटकता है और प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, क्योंकि इस डिजिटल एरा में सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए इसका सही यूज और बैलेंस बनाने की बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो पॉजिटिव सोच को अपनाएं और केवल दूसरों की हाइलाइट्स रील से खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि ये तनाव का कारण बन सकता है। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी क्या, मुझे तो लगता है आजकल सारे के सारे एक रील डालने के बाद
1: कभी कभी नहीं बहुत होता
0: पोस्ट,
1: है
0: पोस्ट डालने के बाद बहुत सारे लाइक्स का इंतजार करते हैं कि ये मिलियन में पहुंच जाए या फिर ऐसा हो जाए। सो दोस्तों ये एक्सेप्टेशन, ये अपेक्षा करना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, ये आपको ना कहीं लो कॉन्फिडेंस और जो है इनफीरियर फील करा सकता है।
1: अच्छा इसमें एक चीज और भी है गौरव, मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, इस जगह पे अगर हमारी सोच बदल जाए ना, जैसे मुझे लगे कि मैं सबसे ज्यादा कम लाइक आए तो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, है ना, तो वो इसलिए क्योंकि हम दुनिया से कहीं अलग हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, तो उसमें तो फंडा भी है, रहता
0: है, सही है। लाइफ का तो वैसे फंडा भी यही है,
1: और जो हम है वो तुम नहीं हो।
0: एग्जैक्टली
1: तो सब लोग एक नहीं है, जो मेरी क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है, तो थोड़ा सा आदमी को ब्रॉड होना चाहिए, तो फिर ये सारी चीजें कॉम्पिटिशन नहीं बनेगी।
0: राइट राइट, सारा नजरिए, सारा खेल जो है वो नजरिए का ही है।
1: बिल्कुल, फिर भी भाई दिल है बिल्कुल मानता ही नहीं है।

0: वाकई में कुछ लोग जो है आजकल मतलब मैंने सड़कों पे भी देखा है ना, जब दिल की बात चली और दिल का क्या करे साहेब, सोशल मीडिया की बात चली, तो कुछ तो सोशल मीडिया पर अक्सर देखो बहुत सारे अनजाने में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मतलब दिल नहीं मानता है लोगों का। इतनी सारी जागरूकता के लिए बातें होती हैं लेकिन वो अपने स्टाइल में रहते हैं। अभी मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, मैं स्टूडियो के लिए आ रही थी, आकाशवाणी निकली थी घर से, तो मैं ड्राइव कर रही थी गौरव, और एक महाशय बाइक चला रहे थे, वो क्या किए, एक तो रॉन्ग साइड से निकले हैं, रॉन्ग साइड से मुझे ओवरटेक करते हुए निकले और जूम करके बाइक को ना फिल्मी अंदाज में भगाया। बट ट्रैफिक कंट्रोल नियम भी भाई हमारी सुरक्षा के लिए ही तो है, तो बस जनाब रेड लाइट पर जाकर आगे रुक गए, मैं भी गई पीछे से, बगल में खड़ी हो गई, मैंने शीशा नीचे किया, सोचा थोड़ा सा चलो भाई आज हम लोग उनको भी जागरूक कर दें तो अपने लिसनर्स के साथ भी थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले मैंने उनको शीशा नीचे करके बोला कि भाई साहब जिंदगी की रेस में ना ओवर स्पीड का आपको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप इंसानी हैं और हम भी हैं, तो आपको रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, और आज हम बात करने जा रहे हैं सड़क नियमों का पालन और हमारी सुरक्षा हमारा कर्तव्य। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, और अक्सर लोग आपके साथ भी और कई लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं रोड पर चलते हुए होती होंगी। तो क्या बात शुरू होगी मालिनी जी, चलिए कुछ ट्रैफिक की बातें भी कर लेते हैं मालिनी जी। इसी को समझने के लिए ना दुनिया भर में ना आज 9 मई है और 8 मई से 14 मई तक मनाया जा रहा है UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, यानी कि मतलब है इसका कि ऐसा हफ्ता जो सिर्फ सड़क नहीं जिंदगी बचाने की भी बात करता है।
0: गौरव यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी स्क्रीन पर एक मेल भी आ गई है, इसके बाद हम मेल को भी ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन अगर हेलमेट सिर्फ पुलिस डर से पहना जाए, है ना, और सीट बेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए लगाई

0: जाए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सुरक्षा की असली अहमियत को भूल रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, और ये सिर्फ आपकी सुरक्षा का मामला नहीं है दोस्तों, इसके साथ आपकी फैमिली की सुरक्षा की भी बात जुड़ी है, है ना। मान लीजिए ये ठीक है कि हमें याद दिलाता है कि रेड लाइट पर रुकना है, टाइम वेस्ट नहीं बल्कि घर पर किसी का इंतजार खत्म करना है, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से दूरी, किसी हादसे से दूरी बनाना है, और हाँ रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर क्रॉसिंग को क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी गाड़ियों पे आपने पढ़ा होगा कि दुर्घटना से देर भली, तो बहुत ही छोटी सी लाइन है लेकिन इसके बहुत बड़े मायने हैं।
0: अच्छा गौरव, एक बात और भी है, बहुत से लोग कान में ईयरफोन या ईयरबड लगा करके चलते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना, उनका मोबाइल ऑन रहता, बस उनकी निगाहें होती है लेकिन उन्हें पीछे से कौन हॉर्न दे रहा है, क्या सिचुएशन है, वो उनको सुनाई नहीं देता है।
1: आप बिल्कुल अपनी अपनी दुनिया से,
0: हाँ बिल्कुल
1: जाते हैं,
0: बिल्कुल अपनी दुनिया से, और ऐसे में कई कई बार लोग हादसों का शिकार भी हो जाते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: तो गौरव वैसे काफी हद तक अब लोग जागरूकता से भी जुड़ रहे हैं, भाई काफी मेहनत की जा रही है इसके पीछे, स्कूलों में जैसे बच्चों को रोड सेफ्टी एक्टिविटीज से जोड़ा जा रहा है, ट्रैफिक अवेयरनेस रैलियां हो रही हैं, हेलमेट कैंपेन, नुक्कड़ नाटक के साथ साथ सरकार और कई संस्थाएं मिलकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं आज।
1: बिल्कुल मान लीजिए इस रोड सेफ्टी यानी कि सेफ फैमिली, क्योंकि सड़क पर आपकी एक गलती किसी के घर की खुशी छीन सकती है, इनफैक्ट कभी कभी हम खुद को भी नुकसान पहुंचा बैठते हैं इसके लिए।
0: अच्छा गौरव एक बात और भी, जो बच्चे जैसे बहुत से छोटे बच्चों को लोग मोबाइल दे देते हैं, बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, अक्सर वो कार दौड़ाने वाला बाइक दौड़ाने वाला गेम खेलते हैं, तो उनके अंदर ना जब वो बड़े होते हैं तो वो उसी से कनेक्ट रहते हैं कहीं ना कहीं,
1: राइट राइट, वो एक्साइटमेंट उनके अंदर दिखता है,
0: वो
1: गेमिंग,
0: दिखता है।
1: हाँ, गेमिंग
0: जैसे उनके फादर भी जब वो ड्राइव कर रहे हैं, मैंने देखा है वो बच्चे कहते हैं पापा और तेज, पापा और तेज तो वो जब सोचो उनके हाथ में खुद वाहन आएगा तो वो उस चीज को कहीं ना कहीं गलत तरह से चलाने की कोशिश।
1: बिल्कुल सही है, और देखिए बच्चों के लिए तो जिम्मेदारी पूरी तरह से पेरेंट्स की ही बनती है कि आप उन्हें समझाएं, हालांकि उनके लिए सुविधाएं देना बहुत अच्छी बात है लेकिन उन सुविधाओं के साथ साथ समाज के प्रति और फैमिली के प्रति जिम्मेदारियों का ख्याल कराना भी पेरेंट्स का ही काम है।
0: तो हमारे साथ सुझाव लेकर हैं एसीपी कानपुर के।
1: जी बिल्कुल,
0: तो
1: चलिए देखते हैं क्या कहते हैं।

नमस्कार कानपुर, मैं एसीपी आईपी सिंह। सभी श्रोताओं से कानपुर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मेरी अपील है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आपका जीवन बहुमूल्य है। यातायात नियम आपकी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए हैं, इसलिए इसका पालन अवश्य करें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं। निर्धारित गति से अधिक गति पे अपने वाहन न चलाएं। नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें। इसके साथ साथ वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। यातायात नियमों का पालन कर आप अपना व दूसरों के सफ़र को सुरक्षित एवं सुगम बनाएं। ट्रैफिक से संबंधित किसी भी समस्या या सुझाव के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9305104340 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।

0: बहुत ही अच्छा सा गाना था, जिंदगी ऐसी हंसती खिलखिलाती होनी चाहिए गौरव। और मैं यहाँ पर देख रही थी गौरव, अभी हमने चर्चा भी की थी कि हमारी स्क्रीन पे एक मेल आ चुकी है, लिखे हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, यानी दूसरे के अधीन होना दुख है और स्वाधीन आत्मनिर्भर होना सुख है। कितनी अच्छी बात है। ये उन्होंने भैया मोनू सेठ हैं, ये रेगुलर हमारे लिसनर हैं, हमेशा मेल करते रहते हैं। इन्होंने जो मोबाइल की हम लोगों ने अभी चर्चा करी,
1: बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले तो मोनू सेठ जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। और इस छोटी सी लाइन में उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही है कि भाई हमें खुद पे जो है आत्मनिर्भर रहना है, है ना, दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है। और इस टाइम तो सबसे ज़्यादा हम निर्भर हैं हमारे जो सबसे प्रिय मोबाइल फोन पर, है कि नहीं।
0: और एक और देखो, नीलू शर्मा की मेल आई है, मैं चाहती भाई तुम पढ़ दो।
1: बिल्कुल सही है। तो नीलू शर्मा जी ने हमें ईमेल किया है कि भाई नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग गौरव भैया और मनु जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है हमनवा में। अपनी बात बताओ, मैं घर में सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो ही चलता है। मैं सोशल मीडिया में बहुत दूर रहती हूँ, ज़्यादा अधिक मोबाइल देखने से स्क्रीन ख़राब होती है, हमारे माइंड पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर प्रॉपरली नींद नहीं लेते हैं तो मानसिकता में भी बहुत बदलाव आते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही नीलू शर्मा जी, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को समझते हैं। एंड थैंक यू FM रेनबो चलाने के लिए सारा दिन और सारा हमें दिन सुनने के लिए।
0: अरे बड़ी शिद्दत से सुनते हैं और कोई भी प्रोग्राम में आई थिंक ये मेल करना नहीं छोड़ती हैं। वो बात अलग है कि इनकी कभी कभी जो है मेल शामिल नहीं हो पाती है। देखो ये जो है मोनू सेठ और भी कुछ लिखे हैं, मुझे वो दौर याद आता है जब

0: चिट्ठियों से सारे काम हो जाते थे, टेलीफोन की जरूरत पर बात हो जाती थी, जरूरत की बात टेलीफोन पर हो जाती थी और घर एक छोटे मोबाइल से सबकी बात हो जाती थी। जी हाँ, एक मोबाइल होता था घर में छोटा सा, सबकी बात होती, सभी खुश रहते थे, एकत्रित रहते थे। अब तो अगर घर में कोई आ भी जाता है ना तो पता ही नहीं चलता, कोई उधर कोई इधर मोबाइल में बिजी बैठा होता है और हम नातेदार रिश्तेदार भी नहीं जान पाते क्योंकि हम तो सर सोशल मीडिया पर अपनी रिश्तेदारियां बताते हैं। सच कहता हूं कि मुझे मानसिक तनाव जैसा लगता है मोबाइल सोशल मीडिया से। अभी देखो मोनू सेठ ने बहुत अच्छा संस्कृत में भी मैसेज दिया था है, और ये भी मतलब बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिसनर्स इतने समझदार हैं
1: और हमसे कनेक्ट भी हैं, हमारे प्रोग्राम का जो है तवज्जो भी दे रहे हैं। फिलहाल आप सभी लिसनर्स हमारे साथ हैं प्रोग्राम हमनवा में, जहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। हम यूं गए और यूं वापस आए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: FM रेनबो कानपुर पर आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम हम नवा में। और आज आपके साथ हैं मैं आरजे कौरव और आरजे मालिनी जी। तो यहाँ पे हो रही हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, बहुत सारी काम की बातें है ना मालिनी जी। और ये जो म्यूजिक है चिड़ियों का चहचहाता हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब पुरानी यादों में चला गया हूँ कि जब
4: कोयल की आवाज।
3: हाँ जी हाँ जी।
4: तो ऐसा लग रहा है स्टूडियो में पक्षी आ गए।
3: बिल्कुल सुनने में ही कितना जो है प्यारा लगता है। हालांकि सुबह सुबह जो पक्षियों का ये प्यारी आवाजें ना दिल को इतना सुकून देती है कि मतलब हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते उसको।
4: बिल्कुल सही कहा गौरव, हम बंद कमरे में जब कभी हल्का सा आइसोलेटेड होते हैं तो ये पक्षी की आवाजें हमें बता देती हैं कि उठो सुबह हो गई है।
3: बिल्कुल माली जी। और ये आवाजें ना तरह तरह के जो पक्षियों की होती है ना, और इन पक्षियों में अक्सर वो पक्षी भी होते हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश में आते हैं।
4: सही कहा गौरव तुमने। पता है इन्हीं खूबसूरत मेहमान पक्षियों के संरक्षण और जागरूकता के लिए हर साल मई महीने के दूसरे शनिवार को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि प्रवासी पक्षी दिवस हम मना रहे हैं।
3: माली जी ये तो तरह तरह के पक्षी होते हैं है ना, ये सिर्फ प्रकृति सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो भी बनाए रखने में बहुत हेल्प करते हैं।
4: अच्छा हर साल ना मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को इस दिवस को मनाया जाता है जागरूकता के लिए। और गौरव यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन पक्षियों को सहेजा कैसे जाता है। असल में होता क्या है ना कि अपने बच्चों को पालने के लिए, प्रजनन करने के लिए, मौसम की मार से खुद को बचाने के लिए ये प्रवासी पक्षी सर्वोत्तम जो पारिस्थितिक परिस्थितियां और आवाज की खोज में जब निकलते हैं तो ये सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ऐसे प्रवास की ओर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें सुकून मिलता है।
3: बिल्कुल सही बात कही। और यहीं पर एक बात और मैं क्लियर करूंगा कि ये जो यात्रा के दौरान ना अक्सर पक्षी थकने, प्यास लगने या फिर भोजन की कमी से मर भी जाते हैं और ऐसे में उन्हें हमारी मदद की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए इन पक्षियों को उनकी आवाज़ों के संरक्षण को और उनके आवास के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए लोगों को इनके संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए साल में दो बार प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है जो कि बहुत जरूरी है।
4: जरूरी भी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाई देखिए हमारे देश में मेहमान होते हैं और अपना वक्त यहाँ पे काट के वापस भी चले जाते हैं। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 की अगर हम थीम की बात करें तो हर पक्षी मायने रखता है।
3: बिल्कुल।
4: आपकी बातें मायने रखती हैं। ये थीम जो है ना प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में सामुदायिक विज्ञान की अहम भूमिका को दर्शाती हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है ना गौरव, वो भी बर्ड सेंचुरी, वेटलैंड कंजर्वेशन और अवेयरनेस कैंपेन करती रहती है। ऐसी योजनाओं को चलाकर इसके जरिए संरक्षण पर लगातार वो काम कर रही है।
3: मान लीजिए इस जगह पर हम भी छोटे छोटे कदम उठाकर ना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पानी के स्रोत को संभाल कर रखना, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना और पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, क्योंकि ये पक्षी जब सुरक्षित होंगे तभी प्रकृति की ये मीठी धुन हमेशा गूंजती रहेगी।
4: गौरव भारत देश के कई शहर और राज्य जो हैं प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत हैं, उनको सुरक्षित आवास देने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे नवी मुंबई में फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए वेटलैंड संरक्षण पर लगातार काम हो रहा है। चेन्नई में प्लास्टिक फ्री अभियान और कंजर्वेशन ड्राइव्स चलाई जा रही हैं जिससे कि माइग्रेटरी बर्ड्स सुरक्षित रह सकें।
3: इसी तरह उदयपुर, श्रीनगर, उड़ीसा, चिल्का लेक, ये एशिया के सबसे बड़े माइग्रेटरी बर्ड हैबिटेट्स में से एक है। और भरतपुर बर्ड सेंचुरी जिसे केलोदन एलिमेंट अल्टीमेट पार्क भी कहा जाता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के संरक्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।
4: और इसके अलावा थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी कि ओखला बर्ड सेंचुरी और संजय वन दिल्ली NCR में ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहां हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं।
3: मलिनी, इन सब प्रयासों से जो ये फायदा है ना, उससे बर्ड जो सुरक्षित रहती हैं और वेटलैंड संरक्षित रहता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, साथ ही बर्ड टूरिज्म से स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ भी मिलता है
4: और हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होता है। फिलहाल तो एक गाना, जब पशु पक्षियों की बात चलिए, प्रकृति की बात चलिए, तो एक खूबसूरत सा गाना जो कहीं ना कहीं खूबसूरत फिजाओं में आपको लेकर जाएगा।

0: गौरव, बहुत प्यारा गाना था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा था कि गाना हम कंप्लीट करें।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हमारे साथ तो बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। गाने भी सुन रहे हैं, हमें भी सुन रहे हैं, और मैं हमारी कोशिश रहती है कि हम पूरे देश को कनेक्ट करते रहें, है ना। और भाई जब देश की बात आती है तो हमारे पास आज का जो दिन है 9 मई, आज ही के दिन हमारे जो तीन तीन देशभक्त हैं उनका जन्म जयंती भी है, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले की जन्म जयंती भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महाराणा प्रताप जी को, जिनको पूरा देश जो है एक महान योद्धा और देशभक्त के रूप में जानता है। मेवाड़ के 13वें राजपूत शासक थे, जो मुगल सम्राट अकबर की विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध अपने अटूट प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध हैं। 16वीं शताब्दी के सिसोदिया राजपूत शासक के रूप में वे भारतीय इतिहास में वीरता, स्वतंत्रता और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक बने रहे।
0: अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगी कि कुंभलगढ़ किले में जन्मे प्रताप ने अपने पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद 1572 में सिंहासन संभाला। कई अन्य राजपूत शासकों के विपरीत अधीनता स्वीकार करने के बजाय प्रताप ने मेवाड़ पर मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
1: 18 जून सन 1576 को हल्दीघाटी का मेवाड़ की सेना का सामना राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना से हुआ। हालांकि प्रताप को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सका। इस युद्ध के बाद प्रताप ने स्थानीय भील आदिवासी समूह की मदद से और गुरिल्ला युद्ध रणनीति की मदद से मेवाड़ को एक महत्वपूर्ण हिस्से को पुनः प्राप्त कर लिया, जिससे कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंडा शामिल है।
0: और मतलब प्रताप ने जो है अपने जो है ना अंतिम वर्ष में राजधानी चावड़ में बिताए, जहां उन्होंने कला और साहित्य को संरक्षण दिया, और 19 जनवरी सन 1597 को दुर्घटना में लगी चोटों के कारण 56 साल की आयु में इस वीर योद्धा का निधन हो गया। और आज उनके जन्म जयंती पर उनकी वीरता और देश के प्रति उनके त्याग को हम दिल से सम्मान देते हैं।
1: और मनी जी, आज एक और देशभक्त की जन्म जयंती है, जिन्होंने अपनी कलम और विचारों से देश को समृद्ध बनाया। उनका नाम था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो एक बंगाली बहुज्ञ कवि, दार्शनिक और कलाकार थे, जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत में क्रांति ला दी थी और बंगाल पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे।
0: अच्छा, इनका जन्म के बारे में तो बता दूं कि इनका जन्म जो है वैशाख माह के 25वें दिन मनाया जाता है, जो इस बार आज यानी 9 मई को मनाया जा रहा है। सन 1861 में कोलकाता के प्रतिष्ठित जोरासाको ठाकुर बारी और परिवार में जन्मे जो रविंद्रनाथ जी ने 8 साल की आयु में कविता लिखना शुरू कर दिया था और 16 वर्ष की आयु तक अपनी रचनाएं प्रकाशित भी कर दी।
1: बिल्कुल सही है।
0: और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन 1913 में उन्हें गहन कविता संग्रह गीतांजलि के लिए सम्मानित भी किया गया।
1: ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं था, बल्कि पूरे देश का भी सम्मान था। और जी हाँ, सन 1915 में किंग जॉर्ज द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सन 1919 में इस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पारंपरिक भारतीय समृद्ध शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय यता के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन, जिसे आज विश्व भारती विश्वविद्यालय से जाना जाता है, की स्थापना की। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला।
0: बहुत ही खूबसूरत है, इसकी लैंग्वेज कितनी मीठी लैंग्वेज है बंगाली, अमार सोनार बांग्ला। और बंगाल के कवि के रूप में जाने जाने वाले टैगोर जी का निधन जो है सन 1941 में हुआ, और वो अपने पीछे गोरा और धरे बाइटे साहित्यिक कृतियां छोड़ गए हैं। और आज एक और प्रमुख भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक नेता का जन्मदिन है, और उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में संवैधानिक तरीकों से समर्थन किया।
1: मई सन 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे गोखले एक प्रतिभाशाली छात्र थे, जो पश्चिमी उदारवादी विचारों से काफी प्रभावित थे, और आगे चलकर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों

के राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में काम भी किया। देश प्रेम और देश सेवा करते करते 19 फरवरी सन 1915 में मधुमेह और हृदय संबंधी अस्थमा की वजह से उनका निधन हो गया। तो ये थे हमारे तीन देशभक्त जिन्होंने अपनी अपनी तरह से देश को समृद्ध किया, और उनके लिए बजाते हैं हम ये गाना।

0: तो माली जी, देशभक्ति का ये बड़ा ही प्यारा गाना हम सब के लिए था। और माली जी, वैसे तो हमने आज प्रोग्राम हमनवा में आज जो भी खास दिन थे हमने बात करी, और लेकिन कल एक बहुत ही खास दिन है और वो है मदर्स डे, है ना। तो दोस्तों, मदर्स डे के लिए जो बात होगी वो हम आपसे कल करेंगे, लेकिन आज मेरे पास मदर्स डे स्पेशल रेसिपी है। और आज
1: क्या बात है, तो फिर आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल आज तुम बताओ।
0: तो दोस्तों रेसिपी में आज हमारे पास मदर स्पेशल जो है वो सरप्राइज है, जिसका नाम है कोल्ड सैंडविच, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक व्यक्ति के हिसाब से, मतलब यानी कि एक लोग के हिसाब से जो भी मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ वो है दो स्लाइस ब्रेड के, एक बड़ा चम्मच दही, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक छोटा चम्मच बारीक कटी गाजर, उबले हुए कॉर्न यानी कि मक्के के दाने, काली मिर्च पाउडर और काला नमक। और इसको बनाने के लिए एक बोल में दही, बारीक कटी सब्जियां, मक्के के दाने, काली मिर्च पाउडर और काला नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। दोनों ब्रेड के किनारे काट, किनारे जो थोड़े से हार्ड होते हैं उनको काट कर हटा दें। इस तैयार दही सब्जी का मिश्रण ब्रेड पर फैलाएं और उस पर दूसरी ब्रेड रख कर उसको थोड़ा सा दबा दें। बीच से सैंडविच को काटें और सॉस या चटनी के साथ बड़े प्यार से माँ को सर्व करें। आई एम श्योर कि वो खुश हो जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बताया और इतना अच्छा टेस्ट मुझे आ रहा है। और जल्दी से मैं यहाँ पे दो तीन मेल्स आई हैं और भाई लिसनर्स हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया दे रहे हैं आप। ये लिखते हैं राजेश कुमार जी, तो बस इन्होंने इतना ही लिखा है। और लेकिन हम बहुत जल्दी जल्दी मेल्स को पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वक्त बहुत ही कम बचा है। ये एक मेल आई है, आप दोनों आरजेस को नमस्ते, मोबाइल ने ना जाने क्या छीना है फिर भी हम मोबाइल के सहारे चलते हैं। ये हैं खालिसपुर से। तो देखिए अपने अपने विचार लोग शेयर कर रहे हैं। और एक और मेल आया है, गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट दीदी जी, मालिनी जी एंड गौरव जी को प्यार भरा नमस्कार। वाह, ये राजेश कुमार जी हैं, आपका शो आज बहुत दिनों के बाद सुन रहा हूँ, कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में बैठ कर सुन रहा हूँ। आपके स्टूडियो में आने का मन है बट एग्ज़ाम दे रहा हूँ,

0: चलिए आपको ऑल द बेस्ट। और एक और हमारे पास मेल आया है, मतलब एक मेल और है, मैं वो भी पढ़ दूं। वो क्या लिखते हैं देखिए, उन्होंने लिखा है कि मोबाइल आज जीवन का आधारभूत जरूरत बन चुका है। मोबाइल के बिना जीवन ना केवल गतिहीन है बल्कि मोबाइल के बिना इंसान का जीवन नीरस है। देखो सबने अपने अपने व्यूज शेयर किए हैं। सोनू परवाना जी, हमें लगता है अगर आदत हम बदल लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इतनी सारी मेल्स आने के बाद सबको भी थैंक यू बोलेंगे, आगे भी ऐसे ही सुनते रहिएगा। और अब हम आते हैं अपने तेजस्विनी सेगमेंट में, जिसमें आज हम बात करेंगे चामी मुर्मू यानी कि टार्जन लेडी की।
1: मान लीजिए तेजस्विनी में आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की उस प्रेरणादायक महिला की जिन्हें लोग प्यार से लेडी टार्जन कहते हैं, यानी कि चामी मुर्मू की।
0: चामी मुर्मू जो है आज महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। चामी मुर्मू ने पिछले 35 सालों में पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसा काम किया है जो मिसाल बन चुका है। उन्होंने झारखंड सरसावा इलाके के 500 से ज्यादा गांवों में करीब 30 लाख पेड़ लगवाए हैं।
1: ये तो बहुत ही जो है पुण्य का काम किया हम कह सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि चामी मुर्मू ने सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाए हैं बल्कि महिलाओं की जिंदगी में भी बदलाव लाए हैं। और उनकी संस्था सहयोगी महिला बगरसाई से जुड़कर 30,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है और आज ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।
0: यानी कि घर भी संवार रही हैं महिलाएं और खुशहाल भी परिवार है उनका और जंगल भी बच रहे हैं। इस संस्था से जुड़कर ना महिलाएं आज पौधारोपण, बीज संरक्षण, वन उत्पादन और स्वरोजगार से जुड़कर अपनी पहचान बना रही हैं।
1: बिल्कुल सही है। और उनके इसी अद्भुत योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2024 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और भी अन्य भी पुरस्कार दिए गए जिन्हें मेरी नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में दिया गया, सन 1996 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षामित्र पुरस्कार भी दिया गया।
0: और पुरस्कारों की चर्चा चली है तो अभी हाल ही में उन्हें नवम्बर 2025 में ये जो है एक और पुरस्कार मिला धरित्री यूथ कॉन्क्लेव में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इससे सम्मानित किया गया उन्हें। आज चामी मुर्मू सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए आइडियल वोमेन बन चुकी हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक महिला अकेले भी समाज और प्रकृति दोनों की तस्वीर बदल सकती है।
1: सच में चामी मुर्मू हमें ये सिखाती हैं कि एक पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण बचाना नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित करना है।

0: और यहीं पे बस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करेंगे। हम नवा प्रोग्राम से मैं मालिनी
1: और मैं आज गौरव आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे हम कल आपसे।
0: टेक केयर एंड बाय।
1: तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: तबीयत फितरत तेरी ये सादापन ये भोलापन तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली
1: चली। नमस्कार, 12 बजे है, आप सुनिए FM समाचार। शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उपस्थित रहे। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के

जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य शहद उत्पाद एवं निर्यात क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में हनी एक्शन प्लान पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत न्यूजीलैंड उच्चायोग के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रदेश के कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान शहद उत्पादन की गुणवत्ता, निर्यात क्षमता, तकनीकी उन्नयन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन विभाग के 3 कर्मियों को अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी कठोरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विभागीय नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चीन में आयोजित फुटबॉल चैंपियनशिप AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप में भारत ने कल लेबनान को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर लेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपकी हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10:90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो।
6: धड़कन लखनऊ की।

0: 12:05 और 10 सेकंड्स का वक्त है। आपके साथ मैं हूँ, आपके साथ आपका दोस्त विनय यादव, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है फैमिली फन, जहाँ पर हम करने वाले हैं आपके साथ ढेर सारा फन। तो आप तैयार है ना?
1: जी बिल्कुल तैयार रहिएगा
0: हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारा एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है जनाब।

हाँ जी दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे ही झूमती है जब हमारे फैमिली के लोग और हम साथ में होते हैं और एक साथ सब मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। जानते हैं फैमिली एक हमारी ज़िंदगी में एक कुछ या यूँ कहें कि फैमिली एक ऐसी चीज़ें होती है जो एक नियामत है भगवान की, नियमत कहते हैं जिसे, नियमत है भगवान की, जो आप कोई ऐसा शब्द उसके लिए है ही नहीं, बना ही नहीं है, जो ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट में दिया है। और ऐसा गिफ्ट है ना जो आप यकीन मानिए कि ज़िंदगी में वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं। और एहसास तभी होता है जब आप दूर हों। अगर आप साथ में हैं तो यकीन मानिए उनको ऐसे सहेजिए, उनसे ऐसे प्यार करिए, उनसे ऐसे मिलिए जैसे ऊपर वाले की नेमत है, गिफ्ट है।

0: 7 FM रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की।
2: फ्रेंड्स 12:23 और 55 सेकंड्स का वक्त, आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त विनय यादव और आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फन। फैमिली में बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ रहते हैं ना, और उन सब की अपनी अलग अहमियत है, चाहे वो दादी बाबा हो, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, चाचा चाची हो, और या फिर और अगर और थोड़ा आगे बढ़े तो कजिन्स भी। अच्छा, आप कैसे हैं? थोड़ा नॉटी हैं या बहुत समझदार हैं फैमिली में, या फिर बहुत स्टूडियस पढ़ाकू? सब लोग कहते हैं डिस्टर्ब ना करो, पढ़ने दो बच्चे को। खैर, ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आपको बताएं कि फैमिली को संजो कर रखना, उसके साथ बंध के रहना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। फैमिली को साथ रखना, ये उससे भी बड़ी चीज होती है। और सबकी बातों को मानना तो कितनी बड़ी चीज है, ये आप भी समझते हैं। हमारी जिंदगी में तमाम ऐसे दिन, तमाम ऐसे लम्हे आते हैं जहां पर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई हम करें तो क्या करें, मम्मी पापा की बात माने या दादी बाबा की बात माने, कजिन्स हमारे

ऐसा कह रहे हैं, चाचा चाची भाई बहन क्या करें। आपको बताएं, वही एक अच्छा फैमिली वाला इंसान होता है जो सबको खुश रख सके। लेकिन बात ही आती है ना कि भैया सबको खुश कैसे रखें, ये बहुत बड़ी चीज होती है ना। आप भी फैमिली के साथ रहते होंगे और देखते होंगे कि सबको खुश रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आप एक मैच्योर इंसान की तरह जब ट्रीट करेंगे, समझदार बनने की कोशिश करेंगे, बनेंगे धीरे धीरे, आप फैमिली को साथ लेकर चलेंगे और सबको खुश रख सकेंगे।

जी, हम सभी ना बहुत अच्छे लगते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, और सबसे जो बड़ा किरदार है फैमिली के अंदर, वो आपको लगता है किसका है? आपको क्या लगता है? मम्मी का या पापा का? हाँ जी, दोनों का, क्योंकि मम्मी पापा को तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना, उनके किरदार को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, घर में मम्मी का होना, माँ का होना किसी मंदिर में जलते दीपक जैसा होता है ना, वो खुद जलकर भी सबके जीवन में उजाला करती है, हम सबके जीवन में। अगर हम बचपन की याद करें, बचपन की याद तो हमेशा आती है। अगर हम अभी बड़े हैं, आप सुन रहे हैं और आपकी भी एज ऐसे ही है, कुछ 90s देखा है आपने, तो अगर अभी भी आप बाहर निकलते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो सबसे पहले मम्मी आपको सारे इंस्ट्रक्शन देकर भेजती हैं कि आपकी सेफ्टी रहे, आप सही सलामत घर वापस आए, आप किसी से भिड़े नहीं, आप सबकी रिस्पेक्ट करें, आपको सब प्यार करें। ऐसी ही उम्मीदें करती है ना माँ, सबकी माँ।

12:39 और 6 सेकंड्स का वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फन। और फ्रेंड्स, जानते हैं कि कहते हैं ना कि फैमिली में सामंजस्य बिठाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि अगर आप अपने किरदार को समझ जाएंगे, हाँ जी, आप क्या हैं जो जिस फैमिली में आप हैं ना, और जिन रिश्तों को आप निर्वाह कर रहे हैं, जी रहे हैं, निभा रहे हैं, वहाँ पर आप कैसे पेश आते हैं, कैसे निर्वाह कर रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों पर गौर करेंगे, उन पर ध्यान देंगे और उनकी अहमियत क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है और उन लोगों के प्रति आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, जब आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे ना, तो जो शिकायतें होती हैं ना हम सभी की कि सबको मैनेज कैसे करें, ये बहुत आसान हो जाएगा। कोशिश करके देखिएगा। खट्टा मीठा, ये सारी चीजें तो चलती रहती है ना, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जितना ज्यादा हम फैमिली के साथ रहेंगे, घुलमिल कर रहेंगे, सबके विचारों को सुनेंगे और अपने विचारों को भी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दबा लेते हैं, दबाइए नहीं, खुद को

बहुत ज्यादा पेश करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ा भी आप सुनेंगे और फिर कहेंगे तो यकीन मानिए आपकी बात को सुना भी जाएगा और गौर भी किया जाएगा।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए
2: सुनिए सुनिए
3: कहिए कहिए।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
3: ओनली ऑन यूथ वेव,
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
4: धड़कन लखनऊ की।

अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पर जिंदगी भी चलती ना फैमिली के साथ में। आपने गौर किया है क्या, अगर आप सबके लिए हाजिर हैं, सबकी बात मान रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और होना भी चाहिए। देखिए, आप फैमिली के साथ में हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, तो फिर आप सबके साथ हैं तो सबके प्यारे भी हैं और सबकी बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, सबके लिए हाजिर होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं क्यों हाजिर हूँ, मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी काम करना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी अपना करियर देखना है, ठीक है, सबके लिए टाइम होता है, 24 घंटे दिए भगवान ने। बस कहना हम ये चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ हैं तो कभी भी उन चीजों को इग्नोर मत करिए जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपका कोई भी बहाना उन्हें हर्ट कर सकता है, हाँ, या फिर उम्मीद ही ना हो, उनको पता हो कि नहीं आपसे कहना ही बेकार है, और ऐसे बनना भी नहीं चाहिए ना, और ऐसे बनने से चीजें खराब होती हैं और हो सकती हैं। तो जितना ज्यादा हो सके फैमिली के साथ उनको रिस्पेक्ट देते हुए, उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ हमें रहना चाहिए, चलना चाहिए, यही जिंदगी है। और आप यकीन माने, आप अगर कोशिश करेंगे ना धीरे धीरे उन चीजों को बदलने की, साथ रहने की, साथ चलने की, उम्मीदों पर, सामने वाले की उम्मीदों पर खरा उतरने की, तो धीरे धीरे आप उन चीजों में ढल जाएंगे, वो चीजें आपके साथ होने लगेंगी, पक्का बता रहे हैं, यकीन मानिए। और कोशिश करके जरूर देखिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ही क्यों करूं,

सबकी रग रग में आप संभालने लगेंगे। 12:54 और 37 सेकंड्स का वक्त, और ये वक्त कहता है कि विनय आपसे इजाजत लेगा प्रोग्राम फैमिली फन से, मुलाकात करते हैं लेकर नेक्स्ट प्रोग्राम में न्यूज ब्रेक के उस पर। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपके दिल की आवाज़ 107 FM रेनबो।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbow@gmail.com।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए एफएम समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल के में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य शहद उत्पादन एवं निर्यात क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में हनी एक्शन प्लान पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत न्यूजीलैंड उच्चायोग के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रदेश में कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान शहद उत्पादन की गुणवत्ता, निर्यात क्षमता, तकनीकी उन्नयन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्ती में जेल में रह रही महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और महिलाओं द्वारा बनाई गई सजावटी वस्तुओं की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सुलह समझौते पर आधारित मामलों का निस्तारण होता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आकर पारिवारिक विवाद, वाहन चालान जैसे मामलों का निस्तारण आसानी से किया जा सकता है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनकी लगभग 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान श्री सिंह का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। इस मौके पर लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत, सभी विधानसभाओं के विधायक और विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी भी उपस्थित रहे। चित्रकूट में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ब्यूटी पार्लर और महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने संस्थान परिसर का निरीक्षण कर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि कौशल विकास और स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। इसी बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 107 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

हाँ जी, मेरा भी दावा है कि आपने ऐसा मौसम मई में नहीं देखा होगा, पक्का बता रहे हैं आपको। या यूं कहें जेठ के महीने में। हाँ जी, मंगलवार की पूड़ियाँ, बड़े मंगल की पूड़ियाँ खा रहे हैं आप, वो जलती धूप में ठंडे पानी और पूड़ी सब्जी, एंजॉय कर रहे थे ना। लेकिन अब का मौसम देखा है ना आपने, ठंडी हो रही भैया, किसी किसी टाइम तो लगता है कि स्वेटर निकाल लें। फरवरी, जनवरी, दिसंबर तो नहीं आ रहा है, क्या कहें भैया, ऊपर वाले की देन है और हम सबको यहाँ रहना है तो सहना तो पड़ेगा जी। 1:06 और 30 सेकंड्स का वक्त, प्रोग्राम शुरू हो चुका है होटल पर तेरी बात, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे विनय यादव। तो बस इसी मौसम को लेकर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। तो आप तैयार है ना? हाँ जी बिल्कुल, हम भी ईमेल के सामने बैठे हैं, आपके मेल आना स्टार्ट होंगे और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे के साथ।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: फ्रेंड्स, समय है इलाकाई खबरों का।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। मगरबी बंगाल में बीजेपी के पहले वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में कल कोलकाता में हुई बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में जनाब अधिकारी को बिला मुकाबला लीडर मुंतखब किया गया था। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर जेपी नड्डा, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़राए आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा मुतअद्दिद रियासतों के वज़राए आला और सीनियर लीडरान मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के जेर एहतमाम दूसरी ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 चैंपियनशिप का इफ्तिताह करेंगे। जनाब योगी इस मौके पर एक सोवेनियर भी जारी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि यह मुकाबला मुल्क भर से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाड़ियों के दरमियान हम आहंगी, दोस्ती और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को मजीद तकवीत देगा। रियासत में 7 मई से डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत पहले मरहले की खुद गिनती शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल मर्दमशुमारी के पहले मरहले को ऑनलाइन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी मुल्क की तरक्की के लिए एक बुनियादी अमल है और इसमें हर शहरी की शिरकत इंतहाई ज़रूरी है। इस दौरान नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना मर्दमशुमारी फॉर्म ऑनलाइन भरा। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि
1: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर, काबीनी वजीर कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने भी कल खुद गिनती का अमल मुकम्मल किया। उत्तर प्रदेश के इलाकाई डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशंस ने कल यूनिसेफ के तावन से लखनऊ में यूनिसेफ के दफ्तर में सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन पर बेदारी और सलाहियत साजी के सेशन का इनेकाद किया। तकरीब में रियासत के चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने वजाहत की कि खुद शुमारी मर्दमशुमारी 2027 की एक बड़ी इख्तरा है। ये मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल मर्दमशुमारी होगी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज आज और कल 18 मजामीन में लेक्चरर ग्रेड के 624 ओहदों के लिए तहरीरी इम्तहान करा रहा है। दो शिफ्टों में होने वाले इस इम्तहान में तकरीबन 4,64,605 उम्मीदवार शामिल होंगे। कमीशन के चेयरमैन डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि तमाम इम्तहान मराकज के कमरों और अहम मकामात को AI पर मबनी CCTV कैमरों से लैस किया गया है और उन्हें जिला कंट्रोल रूम और कमीशन के मरबूत कंट्रोल कमांड रूम से मुंसलिक किया गया है। के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद जिला अदालतों, कलेक्ट्रेट अहातों और सभी तहसीलों में किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लखनऊ की हिदायत के मुताबिक लोक अदालत में खानदानी और उज़्दवाजी तनाज़ात, मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के मामलात, सार्फीन के मामलात और बैंक की वसूली समेत मुख्तलिफ किस्म के मामलात का तस्फिया किया जाएगा। रियासत के स्मार्ट प्री पेड मीटर सिस्टम को ख़त्म करने और तमाम स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में चलाने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है। रियासत के तवानाई के वजीर AK शर्मा ने बताया कि RDSS स्कीम के तहत नसब तमाम मीटरों को फौरी असर से पोस्ट पेड मोड में तब्दील किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग

0: लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: महकमे मौसमियात ने आज मशरकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने कई जगहों पर तेज हवा और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम मरकज लखनऊ के साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फाल हो जाएगा और 12 मई से वस्ती और मगरबी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।

और 49 सेकंड्स का वक्त, आप हैं प्रोग्राम होटो पर तेरी बात और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे विनय यादव। हाँ जी, आपके मेल तो हमें मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन आ गया है लाइन पे। सुधाकर यादव जी ने मेल किया है होटो पर तेरी बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं, जाफराबाद से आपने हमें मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सुधाकर जी। और उसके अलावा सुनील पाठक जी ने मेल किया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं जी, नमस्ते और धन्यवाद। और अरविंद कुमार दुबे जी ने मेल लिखा है, नमस्कार, वाकई मई महीने में इतना सुहावना मौसम नहीं दिखता है, विशेषतः सुबह और रात में मौसम ठंडा है, हम सभी लोग एक साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं, एफएम रेनबो लखनऊ के सारे कार्यक्रम लाजवाब लगते हैं। अरविंद, गोविंद दुबे, प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आपने हमें मेल किया है। हाँ जी, ये जो आपने मेल किया ना अरविंद कुमार जी ने, आपने जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बात की है और सभी लोग ऐसे ही बस नमस्ते धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है ना उस पर बात करेंगे, जैसे अब मई का महीना है और ये बड़ी बात है, हर बार जेठ के महीने में इतना ज़्यादा गर्मी और लू चलती है जिससे हम लोग परेशान होते हैं, कभी ठंड मिल जाए, कहीं ठंड मिल जाए, और वो जो ना जो चलता आ रहा है बहुत सालों से चलता आ रहा है, बहुत सालों से क्या मतलब, जब से प्रकृति चलती आ रही तब से चलता आ रहा है, और वो जो है ना वो समय की मांग है। और जो इस समय हो रहा है, भले ही हमें राहत मिल जाती है, लेकिन अगर आप दूर की थोड़ा सोचे ना तो डर लगता है ना। आपको क्या लगता है, वही तो मैंने पूछा आपसे कि आपको क्या लगता है, मई में सावन भादों जैसा मौसम है तो सावन भादों में कैसा होगा जी।

और एक बात और, डरने की परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहना है हमारे साथ और नेचर को इंजॉय करना है। और खूबसूरत ट्रैक तो हमारे पास है ही है आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: हाँ जी, 1:31 और पूरे 55 सेकंड्स का वक्त आप हैं प्रोग्राम ऑटो पर तेरी बात में। और मेल समा तक बहुत सारे पहुंच रहे हैं। शिव पूजन जी लिखते हैं कि डियर आरजे विनेदर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं जी? हम बहुत अच्छे हैं। शिव पूजन फ्रॉम विलेज सनीगवा लखीमपुर खीरी से, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा, आपको उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे समय में जब भी प्यास लगे पानी ज़रूर पिए और कॉटन के हल्के कपड़े पहने। जी बहुत अच्छी बात है, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है सभी को। उसके अलावा आयमान नवाब जी का मेल है और लिखते हैं एम नवाब संडीला से, हेलो सर जी, हेलो जी, कैसे हैं आप? और लिखते हैं बहुत सालों बाद आपको दोबारा सुन रहे हैं। हाँ, बहुत सालों बाद, ऐसा तो नहीं है जी। और आगे लिखते हैं आपको बहुत सुना है तब मैं छोटी थी, ओ माई गॉड, मतलब हम इतने बड़े हो गए कि हम इतने बात है कि आप बड़ी हो गई हैं। तो हमें क्लियर जरूर करिएगा, इतनी आप कितने साल बाद आए, कहाँ थे? अच्छा, मुझे आप याद थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप, ये आपके लिए वेलकम ईमेल था और अभी सुनूंगी तब दोबारा ईमेल करूंगी। जी बिल्कुल करिएगा, हम वेट करेंगे। रामेश्वर जी का मेल है ऑटो पर तेरी बात कार्यक्रम। जी विनय यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लिखते हैं आगे, बड़ा ही लिखे जा रहे हैं भैया, देखिए लंच वंच करने देंगे हमको कि नहीं करने देंगे, ऐसे ही बस हम। प्रज्ञा कटेरिया, प्रतिमा कटेरिया, वेद बाबू कटेरिया और का है पुत्रवधू है इनकी, निशा कटेरिया, इनका नाम जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद जी। देखिए सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप मौसम के बारे में बात करेंगे ना कि मई का मौसम है और गर्मी होनी चाहिए, लू चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम मना रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं कि नहीं हाँ काहे नहीं गर्मी पड़ रही, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नेचर ने कर रखा है। लेकिन कभी कभी अभी 2-3 दिन पहले जब बारिश हुई ना तो बिल्कुल लग रहा था कि ठंड सा माहौल हो गया है, और ऐसे में सर्दी हो जाती है ना, और तमाम तरीके अगर हम तैयार नहीं है सर्दी के लिए तैयार नहीं है तो तमाम सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। आप क्या कहना चाहते हैं? और जो भी कहें आप हमें ईमेल के माध्यम से कह सकते हैं fmrainbow@lucknow.com से। शुभम जी ने मेल किया है, लिखते हैं कि मेरी वाइफ का बर्थडे है और कौशलेन जी भी साथ में हैं और इन्होंने हमें सुल्तानपुर रोड अर्जुनगंज अंसल से हमें मेल किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखिए ये ना कोई ऐसा प्रोग्राम तो है नहीं कि हम आपकी पसंद का ट्रैक सुनवा पाएं, लेकिन हाँ जो भी ट्रैक हमारे पास हैं वो बहुत ही खूबसूरत है।

1:40 और 50 सेकंड्स का वक्त। आप हैं होटो पर तेरी बात में आज अपने दोस्त विनय के साथ और एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक और आपके मेल भी। हाँ जी, अर्पित शर्मा जी ने मेल किया है, लिखते हैं कि हमारे यहाँ तापमान 45 से भी ज्यादा है, थोड़ी ठंडक हमारे यहाँ भी भेज दीजिए। अच्छा जी, बालू तरह राजस्थान से आपने हमें मेल किया है। अर्पित जी, आपके वहाँ गर्मी पड़ रही है? देखिए, हम ये आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी लखनऊ है, तो अब आकाश से वाणी जाएगी तो हो सकता है भगवान जी देख ले जाए, उधर मोड़ दें आपकी तरफ, इंतजार करिए। अच्छे दिन बिल्कुल बारिश होने ही वाली है आपके यहाँ। वकील अहमद साहब का मेल है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, और जी धन्यवाद, आप खाना खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और लिखते हैं कि वकील अहमद मंसूरी कटका हतूरी ब्लॉक हरगांव जिला सीतापुर से आपने मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब हमसे जुड़ने के लिए। गुलफसा जी लिखती हैं, क्या लिखती हैं, गुलफसा सिद्दीकी जी, हेलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून विनय भैया, मैं गुलफसा सिद्दीकी संडीला से आप पूरे 1 महीने बाद आए हैं। मौसम की बात नहीं की आपने, लिखती हैं कि मौसम बहुत अच्छा है बस। हाँ जी, मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मई में ऐसा मौसम होना चाहिए? अच्छा तो होना चाहिए, मजा तो आ रहा है हम सभी को।

हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और होता भी है। जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो कभी चाहे नाराजगी हो या फिर कोई बात हो गई हो तो साथ नहीं छोड़ते हैं। 1:48:07 का वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम होठो पर तेरी बात। चलिए जल्दी से मेल्स पर नज़र डालते हैं। जय साहब लिखते हैं, सभी नगमे अच्छे लग रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने मेल किया है हमें। राम शर्मा जी ने मेल किया है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी बड़ाई लिख दी है हमारी जी। आंचल सेठ जी लिखते हैं, बादलों का आना जाना लगा है वैसे इस मौसम में, ऐसा मौसम हमारी समझ के परे है। इसका साफ मतलब है कि जलवायु को हम सब ने परिवर्तित कर दिया है, कभी गर्मी कभी ठंडी और कभी बारिश, पता ही नहीं मौसम भी बारहमासी हो गए। गीता सेठ जी लिखती हैं, टॉपिक अच्छा है और मौसम भी अच्छा है जी, धन्यवाद। टाइगर खान लिखते हैं, माय नेम इज नरगिस, संडीला से इन्होंने मेल किया है, हरदोई से मेल, हाँ संडीला से भी और हरदोई से, अच्छा जी, और गुड आफ्टरनून, और जी वेरी गुड आफ्टरनून, और बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ जी हम आ गए हैं, लेकिन इतने दिनों भी बाद नहीं आए कि आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैं छोटी थी और अब बड़ी हो गई हूँ। और मोनू सेठ जी लिखते हैं, मौसम बहुत ही खूबसूरत है, घर पर रहो तो सुहाना, घर के बाहर जाओ तो धूप का नजराना। चलिए बहुत अच्छा लगता है जब आपके मेल्स इस तरह के हम तक पहुंचते हैं और आपने अपने सुझाव और अपनी बातें आप हम तक रख रहे हैं, और इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं कि आप अपने दिल की बात हमसे कह सकें। ऐसा ना हो कि दिल की बात दिल में दबाए रखें और शाम तक ऐसा नहीं होना चाहिए ना जी, बिल्कुल। बिल्कुल वादा है हमारा आपसे, ऐसे सॉन्ग्स हम यहाँ पर प्ले करेंगे कि आप दीवाने हो जाएंगे 100.7 FM रेनबो के, जो कि पहले से हैं और दीवाने हैं।

हाँ जी, विनय मिश्रा जी ने मेल किया है, लिखते हैं, नमस्कार। पर्यावरण से की गई छेड़छाड़ का नतीजा है इस मई महीने में गर्मी की जगह सर्दी का एहसास हो रहा है। अप्रैल में तपिश और अपने स्वभाव पर था, लेकिन एकाएक मौसम ने करवट बदली और ठंडक ने पूरे वातावरण को सुखद बना दिया। समस्तीपुर बिहार से आपने मेल किया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जयदेव जी ने मेल किया, गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ और बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, तरबूज खीरा जैसे पानी से भरपूर फलों का सेवन करें, गर्मी में सतर्क रहने के उपाय।

हैं, बहुत सारी चीजें आपने लिखी हैं। रुद्रपुर नैनीताल से आपने हमें मेल किया है, और इतनी सारी नॉलेज आपने लाई कहाँ से? रुद्रपुर इतनी गर्मी तो पड़ती नहीं है शायद। उसके अलावा जावेद अख्तर साहब ने मेल किया है, और इन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, और लिखते हैं कि मोहब्बत व प्यार, मोहब्बत व प्यार भरे अंदाज में पूरे लखनऊ को। जी नमस्ते, जी नमस्ते। और पता नहीं आपने, आप लोग ना कई कई बार ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं अपने दिलों की कि हमको आ आ आ नमस्ते करके ही निपटाना पड़ता है। सही बता रहे हैं हम? और 1:56 और 15 सेकंड का वक्त, और ये वक्त कहता है कि प्रोग्राम से हम इजाजत आपसे ले, लेकिन रेनबो हॉटमेल हॉटमेल लेकर उस बार हम आपके साथ आते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपके दिल की आवाज़ 107 FM रेनबो।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष

0: से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
2: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
3: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक

0: रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपकी रेडियो सेट पर।

तो इसी में हम सबको शामिल कर रहे हैं। पूजा जी ने पूजा जी मलियाबा से इन्होंने मेल किया और लिखती हैं कि मौसम बहुत अच्छा है तो सर उसी से रिलेटेड कोई सॉन्ग सुनवा दीजिए। देखिए कितना प्यारा सॉन्ग है। गरिमा सिंह जी, अतुल शुक्ला और निजाम आलोक वर्मा जी, आपके पसंद का ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, और आपका भी ट्रैक आपके रेडियो सेट पर हो सकता है। बस आपको जुड़ना है हमारे साथ, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल करना है, करनी है अपने दिल की बात।

जी अशोक कुमार जी ने मेल किया, अशोक राज गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, रायपुर ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से आपने हमें मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गुरमीत सिंह जी मेल करते हैं खुशनुमा लखनऊ, और अमिता साउथ दिल्ली से जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए गुरमीत जी। उत्तम कुमार जी ने मेल किया है पश्चिम बंगाल बोहड़ा गाछी से, मुन्ना भगत गुड्डी सत्यम अर्णब किस्सू और श्वेता उत्तम कुमार। 2:36:17 का वक्त, आप है हॉटमेल पर और हॉटमेल लगातार स्टेशन से स्टेशन को पार कर रही है, उड़ती हुई निकलती जा रही है।

मुकेश जी ने मेल किया है और लिखते हैं आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया। मुकेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर, किसी भी गीत में हमें शामिल करें चो, तो भाई जो अगला हमारा नेक्स्ट ट्रैक होगा ना उसमें आपका नाम शामिल है। शाहरुन नूर जी ने मेल किया है, कोई भी गीत सुना दीजिए जी। धन्यवाद, आपने सुन लिया है जो सॉन्ग प्ले हो चुका है ना, उसमें आपका भी नाम आ गया है। ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से आपने मेल किया है शाहनूर, फरियाज, शकील, मोइन, तस्लीम और टीजी जी। तुलसी जी ने मेल किया है प्रिय होस्ट और गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून और मीत दर्द काटे गीत। क्या क्या लिखा है आपने। बिहारी कॉलोनी सादरा दिल्ली से आपने मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दिलीप कुमार जी ने मेल किया है और सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, भागलपुर बिहार से आप हमसे जुड़े हैं। दिलीप कुमार, सोनी, कमल, किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद भागलपुर बिहार से हमसे जुड़ने के लिए। मुंदी चक। विनय कुमार जी ने लिखा है, अरे आरजी विनय यादव जी कहाँ कहाँ थे आप, बड़े दिनों बाद आए हैं प्रोग्राम में। और और लिखते हैं कि आज बहुत दिनों बाद मेरा भी मन करने लगा, जबरदस्त लग रहा है प्रोग्राम सुनकर, हो सके तो मेरा भी सॉन्ग चला दीजिएगा फुर्सत मिले तो। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तो नाड़ी। क्या बात है, इतनी बड़ी रिक्वेस्ट। पुंजा जी ने मेल किया है और लिखते हैं कि नमस्कार नमस्कार और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने की है दुर्गा कॉलोनी हाथी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और डब्बू डब्बू।

आशीष तुहान, कौशलेंद्र शुभम और निजाम जी, आपका ट्रैक आपके रेडियो सेट पर। हाँ जी, हाँ जी, पृथ्वी और रेखा जी, आप भी जुड़े हैं हमारे साथ रायबरेली से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपका ट्रैक आपके रेडियो सेट

तो बज के 44 मिनट और 5 सेकंड्स का वक्त। आपको बताएं, देखिए ऐसे जब सॉन्ग बजते हैं ना तो बहुत पता नहीं क्या क्या बताएं हम आपको, और लोग ऐसे मतलब दिल से इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से सॉन्ग रिक्वेस्ट करते हैं और सुनते हैं। अपने दिल की हालत समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं और जो लोग सुन रहे हैं ना वो भी समझ सकते हैं। विनय कुमार जी, आपका ट्रैक आपके रेडियो सेट पर। वादा रहा सनम होवे जुदा। जी ये मेरी पसंद का तो है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट नहीं की। मेरा भी नाम विनय कुमार है।

2:47 और 25 सेकंड्स का वक्त, आप हैं रेनबो हॉट मेल पे आज अपने दोस्त विनय के साथ। वारिस अली खान साहब ने मेल किया है जी, धन्यवाद लिखते हैं कि विनय भाई आदाब, लगता है आपको मौसम की मार पड़ी है। क्या बताएं, आप समझ गए। और उसके अलावा लिखते हैं कि अर्ज है, हारा वही है जो लड़ा नहीं, जीता वही है जो झुका नहीं। और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने की है तो सॉन्ग तो बहुत अच्छे आई होप प्ले हो रहे हैं और आप सभी लोग इंजॉय कर भी रहे हैं। उसके अलावा शैलेश कुमार जी ने मेल किया है रूपपुर चंदेला से, नीलू शर्मा विनय सर को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और दिलवाले मूवी से तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, ये बात तो बिल्कुल वैसे भी अच्छी नहीं है। जो आपको चाहता है, जो आपको पसंद करता है, जो आपको अपने दिल में रखता है, उसको बिल्कुल भी सताना नहीं चाहिए। सॉन्ग की बात आपने की है तो कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुँचा दें। शैलेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अच्छे मेल के लिए। रमेश जी ने मेल किया है, किसी भी गीत में हमारे सभी नाम शामिल कर लीजिए, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से आप हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद चौहान, मोहनी और कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी आय और हिमांशु, हिमांश नाम आपने छोटा सा लिखा है। साई जी ने लिखा है और नमस्कार जी, नमस्कार और प्रोग्राम आपको अच्छा लगा इसके लिए धन्यवाद और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने भी की है। अच्छा जी, नारायण, ओमकार और तमाम साथियों के नाम आपने लिखे हैं। कहाँ से मेल किया है आपने? आपने मेल किया हमें कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र से।

भला ये बताइए, ये सॉन्ग किसे पसंद नहीं है? लेकिन पर्टिकुलर किसी की पसंद का सॉन्ग है और सबको पसंद है। नित्या सैनी जी ने मेल किया है हमें और ये मेल इन्होंने किया सीतापुर से। लिखती हैं कि आज हमारी एनिवर्सरी, हमने कहा था ना कि बहुत सारे लोगों की एनिवर्सरी है, शादी है, धमाल मचा रहे लोग,

0: लो बज के 54 मिनट का वक्त हो चला है और बहुत सारे मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। और मुनीश कुमार जी ने मेल किया राजभाव बहानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से और लिखते हैं कि विनय सर कहाँ थे। जी हम बिल्कुल आपके साथ में हैं और आपको सॉन्ग भी अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम्स भी अच्छे लग रहे हैं। शिवानी, शिवम, राधा रानी, लक्ष्मी, शिल्पी और राम भोर राज का नाम लेने के लिए आपने कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और उदय भानपाल जी ने मेल किया है और इन्होंने मेल किया है बुंदेलखंड महोबा जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। उदय भानपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश। अरविंद कुमार बुद्ध जी ने मेल किया है और गुड आफ्टरनून लिखते हैं। जी वेरी गुड आफ्टरनून। और रसूलपुर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से इन्होंने मेल किया है और माय फेवरेट सॉन्ग देखा है पहली बार। जी धन्यवाद, इसलिए तो हम प्ले करते हैं ना, हमको पता है ना कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं और क्या क्या रिक्वेस्ट आप करते हैं हमसे।
1: अरे मर गए मर गए फोकट में, हम कोई तो हमको लियो बचाए।
0: हाँ जी, ये सॉन्ग मालूम है किसकी पसंद का है? ये मैं तो नहीं कहूंगा कि मेरी पसंद का है, लेकिन मेरी तरफ से आप सभी के लिए है। क्योंकि भाई देखिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सबके सॉन्ग प्ले कर पाएं। संजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट टाइम में बिल्कुल आपने मेल आया है। संजय कुमार जी, उदय भानपाल, रोसी दी डिकोस्टो, नवी हसन, एम के, पिंकू सोनी, सुधाकर जी और शैलेश कुमार गुलबसा, शमशुल, टी के साहब, भागवत और रमेश चौहान, अंकुश पाटवा और बहुत सारे साथी जिन्होंने मेल किया, जिनके मेल शामिल नहीं हो पाए और जिनके सॉन्ग नहीं प्ले हो पाए, उन सभी के लिए ये ट्रैक मेरी तरफ से इंजॉय करिए।

हाँ जी फ्रेंड, 2:58 और 15 सेकंड्स का वक्त, और ये वक्त कहता है कि रेनबो हॉटमेल से आप हम अब आपसे लें इजाजत, क्योंकि न्यूज ब्रेक के उस पार प्रोग्राम आपका नेक्स्ट इंतजार कर रहा है ना। तो हॉटमेल को मेन लाइन से लूप लाइन में लाने का वक्त हो चला है, तो अपना चाहने का कहीं नहीं है, आप लोगों को एक से बढ़कर एक है आपके लिए इंतजार कर रहे हैं न्यूज ब्रेक के उस पार।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर के म्यूजिकल हार्ट बीट से वंस अगेन आप कनेक्ट हो चुके हैं।
1: पहला नशा, पहला खुमार।
2: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को।

जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ स्टूडियो में। चलिए साथ मिलकर बैठते हैं, सैटरडे की इस खूबसूरत सी इवनिंग को एंजॉय करते हैं, जो होती है जनाब थोड़ी सुकून भरी और थोड़ी सी कलरफुल और बहुत सारी म्यूजिकल फीलिंग से सजी हुई। जी हाँ, इस रिलैक्स वाली जो शाम होती है ना, इस शाम को ना कॉफ़ी की खुशबू जैसे दिल में घुल जाती है। जी हाँ, कॉफ़ी की खुशबू में घुल जाए मेलोडीज, जहाँ सॉन्ग्स बन जाते हैं कन्वर्सेशंस, और जहाँ हर दिल जुड़ जाए रेनबो के रंगों से, रेनबो कलर्स जैसे वीकेंड मूड को लेकर। जी हाँ, वेलकम टू द मोस्ट कलरफुल म्यूजिकल डेस्टिनेशन ऑफ योर वीकेंड, सैटरडे कैफे। आज के म्यूजिक कार में सैटरडे कैफे पर हमारी आपकी बातें होंगी दिल से, म्यूजिक होगा ट्रेंड से, और वाइब्स होगी

बिल्कुल वीकेंड फ्रेंड जैसी। तो जनाब कॉफी सिप कीजिए, स्ट्रेस स्किप कीजिए। और हमारे साथ साथ आप भी निकल पड़िए एक म्यूजिकल ट्रिप पर। जी हाँ, आरजे मालिनी के साथ यू आर लिसनिंग टू सैटरडे कैफे, जहाँ हर बीट में है रंग और हर रंग में है म्यूजिक का तड़का।

0: ना फ्रेंडली फीलिंग देता है। कुछ गाने हैं जो वाकई में सुनाई नहीं देते, सीधे मूड को कलरफुल बना देते हैं। कनेक्ट रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से।
1: विकसित

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जी हाँ, बात हो रही थी सॉन्ग्स की, तो अभी आपने सुना तेरे संग, एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है और इस म्यूजिकल किक के साथ अब वक्त है आपके थॉट्स को हमारे सैटरडे कैफे तक पहुंचाने का। जी हाँ, आप भी अपनी लाइफ का थॉट शेयर करिए। वो कौन सा सॉन्ग है जो आपको इंटेंशनली पॉजिटिव एनर्जी देता है? कहने का मतलब है कि कौन सा ट्रैक है जो आपका पर्सनल रेड जोन एनर्जी बूस्टर है? शेयर करें अपने थॉट्स। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा सॉन्ग को सुनकर आपका मूड लाइट हो जाता है, तो आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर airkansomedia@gmail.com। तो हमें इंतजार है आपकी मेल्स का। कीप लिसनिंग, कीप वाइबिंग, क्योंकि यहाँ म्यूजिक सिर्फ बजता नहीं है बल्कि जनाब दिलों को कनेक्ट करता है।

कभी कभी ना जनाब लाइफ भी बिल्कुल सॉन्ग जैसी लगती है, लेकिन देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है जिसका गाना सुन करके आपका मूड लाइट हो जाता है, या फिर आपके दिल में कोई ऐसी बात हो तो आप हमें मेल करके बता सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्वेश्चन मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, भाई रिपीट करना बनता है। मेरे पास देखिए दो मेल आ चुकी हैं इससे रिलेटेड, और हमारे लिसनर्स भी कितने फास्ट हैं, देखिए फटाफट जवाब देने में लगे हुए हैं। एक हैं ये शमसुल कंवर राही, सुपर आरजी मालनी जी को प्यार भरा आदाब, मेरे दिल के मेरे मन के करीब अगर कोई है तो वो डैश डैश डैश, जिसका नाम मैं नहीं लिख सकता बस महसूस कर सकता हूँ। क्या बात है, आपके दिल में वो नाम है, आपका दिल उसके नाम से धड़कता है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लिखा है मेरे दिल के करीब एक गाना है एक कली मुस्काई फिल्म का, ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं। जी हाँ, गंज टुंडवारा से मैसेज किया है शमसुल कमर राही ने शाहीन फातिमा ने। और एक और मेल हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे दिल के करीब साजन मूवी का सॉन्ग है, वाह वाह क्या बात है, जो उनको बेहद प्रिय, ये हैं राधा नामदेव। जी हाँ, और हमारे दिल में जो व्यक्ति है ना वो हमारा दुश्मन है, लेकिन उसके नाम से भी हमारा दिल धड़कता है। वाओ व्हाट अमेजिंग मैसेज, बहुत अच्छा लगा आपने इतना अच्छा सा मैसेज किया। फिलहाल तो अब हमारे आपको एक और नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉन्ग की लाइन भी भाई कमाल की है दोस्तों, कभी कभी ना दिल सच में इबादत करने लगता है और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, और लाइफ भी बिल्कुल प्यारी होती है जब हम किसी से प्यार करते हैं। लाइक सॉन्ग की सॉफ्टनेस, उसकी पोइट्री और सॉन्ग का ड्रीमी वाइब्स, ये सब चीज़ें जो है ना मिलकर दिल को एक अलग ही म्यूजिकल राइड पर ले जाती हैं, थोड़ा प्लेफुल, थोड़ी मैजिकल और थोड़ी सी सिनेमैटिक। तो आप भी बताइए आपकी जिंदगी का वो कौन सा फिल्मी सॉन्ग है जो आपको किसी ड्रीम सीक्वेंस जैसा लगता है। जी हाँ, जल्दी से हमें लिख भेजिए हमारे मेल आईडी पर और हम आपकी मेल को बनाएंगे प्रोग्राम का हिस्सा।

जी हाँ, पहली बार जब प्यार होता है तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली बहुत कुछ महसूस होता है। और कुछ गाने भी ना हमारे दिल में एंट्री नहीं लेते जनाब, बस धीरे धीरे फीलिंग्स में घुल जाते हैं। भाई सॉन्ग सुनकर ना उसकी वाइब बिल्कुल सैटरडे कैफे की लेट इवनिंग कॉफी की याद दिला रही है, जो धीरे धीरे मूड को ना म्यूजिकल बना देती है। अब तक सॉन्ग्स दिल को सॉफ्ट टच दे रहे थे, बट अब हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक और मेल को। जी हाँ, ये जो मेल्स आ रही है ना, ये भी हमारे दिल को आहिस्ता आहिस्ता छू रही हैं। तो चलिए, मेल की बात हो रही है तो हम बताते हैं, एक और मेल हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। ये लिखते हैं, कार्यक्रम म्यूजिक आर में हम अपने पसंद का गाना आपसे शेयर कर रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। मालिनी जी नमस्कार। नमस्कार जी, ये होटल फिल्म का गाना इनके दिल के बहुत करीब है। इन्होंने लिखा है कि प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और ये जो जिन्होंने मेल करी है, अंजन कुमार सिंह हैं ये। ये हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तो इनके देखिए दिल के करीब का गाना बन चुका है बहुत लोगों की धड़कन। इस समय बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा ये गाना भी, लेकिन हम आपको जो गाना आप सुनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो चलिए फिर से कनेक्ट होते हैं एक सॉन्ग के साथ। यू आर चिलिंग विद सैटरडे कैफे 102.2 एफएम रेनबो कानपुर, जहां सॉन्ग्स नहीं जनाब मूड प्ले हो रहे हैं।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक।

भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

भाई वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत नज़ाकत है इस सॉन्ग में। थोड़ी शरारत, थोड़ी मोहब्बत और दिल के अंदर छुपे उस एहसास

यह हक जिसे अक्सर हम कह तो नहीं पाते बट दिल से महसूस जरूर करते हैं। और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत बात भी यही होती है कि वो हमेशा, जी हाँ, हमेशा लाउड नहीं होता है। कभी किसी की आंखों में ठहर जाता है तो जनाब कभी किसी सॉन्ग की लाइन में धीरे से कन्फेस हो जाता है। प्यार को एक्सेप्ट करना यानी कि वो पल जब फाइनली हम डरना छोड़ देते हैं। जी हाँ, कभी कभी ना कन्फेशन जो होता है किसी बड़े डायलॉग से नहीं, बस एक ऑनेस्ट सी लाइन से ही हो जाता है। तो दोस्तों, आपके दिल में भी कोई ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही आपकी दुनिया कलरफुल हो जाती है, तो देर भाई किस बात की है। यही तो है परफेक्ट मोमेंट। जी हाँ, सैटरडे कैफे, जी हाँ, सैटरडे कैफे की इवनिंग में जुड़ जाइए हमसे और शेयर करिए अपने दिल की बात। और देखिए, मैंने दिल की बात कही तो हमारी स्क्रीन पर एक मेल और फ्लैश हुई है। यह है रूपपुर चंदेला से, यह है नीलू शर्मा की, शैलेंद्र कुमार की। लिखती है, मनु दी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मेरे जो है दिल के करीब जो सॉन्ग है वो है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट सॉन्ग है इनके दिल के करीब। और जो है बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपने दिल की बात हमसे शेयर करी है। और ये इनकी फेवरेट आरजेज का नाम भी इन्होंने लिखा है, इनकी फेवरेट आरजेज जो इनके दिल के बहुत करीब है, उनमें आरजे वंदना शुक्ला, आरजी पूर्णिमा सिंह और आरजी मालिनी सक्सेना, यानी मेरा भी नाम है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच नीलू जी। और आरजी कौसर, सभी की आवाज़ों को मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं हर कार्यक्रम को दिल से सुनती हूँ। तो आप भी अगर शामिल होना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो करिए हमें मेल। हमारा मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। सैटरडे कैफे पर एक लवली ट्रैक फॉर यू।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट से कनेक्ट हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर। म्यूजिक आर में आज हम और आप मिलकर बैठे हैं सैटरडे कैफी। जी हाँ, सैटरडे कैफी की इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ आरजे मालिनी।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

0: ज्यादातर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वंस अगेन वेलकम वेलकम बैक टू द शो म्यूजिक आर म्यूजिक आर में आज बातें हो रही हैं सैटरडे कैफे पर, चटपटी सी, बहुत सारे दिल की और बहुत सारे प्यार की।

हो, क्या बात है दोस्तों, कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ म्यूजिक नहीं होते जनाब, दे आर प्योर इमोशंस, प्योर मेमोरीज एंड प्योर हार्ट बीट्स। और दोस्तों, जब किसी खास का नाम ना दिल में सेटल हो जाए तो भाई हर लिरिक हर मेलोडी उसी शख्स का चेहरा पेंट कर लेती है। भाई फिलहाल तो रिलैक्स कीजिए वक्त के साथ आज सैटरडे कैफे में। जस्ट क्लोज योर आईज, जी हाँ, आप आंखें बंद कीजिए और फील द वाइब्स और एहसासों को महसूस कीजिए और खो जाइए ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ। क्या बात है जनाब, आपके मेल्स भी ना लिटरली हार्ट टचिंग है। किसी ने मेल किया है, जी हाँ, उनके भी दिल के करीब एक प्यारा सा गाना है, उस गाने को सुनते ही ना किसी की आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगती है, जी हाँ। और पता है बहुत सारे लोग बहुत सी बातें लिखे तरह तरह की, लेकिन मैंने सब तरह की मेल्स आप तक पहुँचा दी है। फिलहाल नेक्स्ट प्ले लिस्ट में जो गाने का नंबर है उसको सुनाने से पहले मैं एक मेल को शामिल करना चाहती हूँ, जी हाँ। किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है, वाह क्या मतलब, ये इंतजार में भी एक आनंद है, बिल्कुल ये झलकता है इस गाने से, जी हाँ, इनके दिल के करीब है ये गाना। और ये कौन है, जिशान वारसी, और इन्होंने हमें मेल किया है सिंधौली बरेली से। तो इनके दिल के करीब जो गाना है इन्होंने भेज दिया है फिलहाल।

मेरे दिल के करीब एक गाना है, मैं आपको चाहती हूँ मैं भी सुना दूँ। तो सुनते रहिए, कनेक्ट रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए, ओनली ऑन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से। म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम में आप एंजॉय कर रहे हैं सैटरडे कैफे प्रोग्राम के साथ, मैं आरजे मालिनी।

बिल्कुल, दिल में अगर कोई आपके बसता है और किसी से मिलने की आपके अंदर तमन्ना है तो अपनी कोशिश करते रहिए और धुन को बराबर बरकरार रखिए, उससे मिलने की कोशिशें करते रहिए। सॉन्ग की भी लाइन ना कमाल की है दोस्तों, कभी कभी ना दिल सच में इबादत करने लगता है किसी के।

बिल्कुल, दिल में अगर कोई आपके बसता है और किसी से मिलने की आपके अंदर तमन्ना है तो अपनी कोशिश करते रहिए और धुन को बराबर बरकरार रखिए, उससे मिलने की कोशिशें करते रहिए। सॉन्ग की भी लाइन ना कमाल की है दोस्तों, कभी कभी ना दिल सच में इबादत करने लगता है किसी के नाम की, किसी मुस्कान की, किसी की यादों की, और वीकेंड यानी कि खुद को फील करने का परफेक्ट टाइम। नो ऑफिस प्रेशर, नो जल्दी, बस सॉफ्ट सॉन्ग का साथ। कोई टेरेस पर बैठकर सॉन्ग से सुनता है तो कोई लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है, कोई डायरी लिखता है और कोई किसी खास की प्रोफाइल बार बार चेक करता है, कौन है वो। जी आप अपने दिल से पूछ कर देखिए, क्योंकि जनाब दिल का कनेक्शन वाईफाई से नहीं, फीलिंग से चलता है, लाइक दिस सॉन्ग।

बिल्कुल, जब फीलिंग्स ना बहुत खूबसूरत होती हैं तो भाई चारों तरफ शाइनिंग ही शाइनिंग नजर आती है, और यही तो है वीकेंड वाली फीलिंग। सचमुच एंजॉयमेंट से भरी हुई होती है वीकेंड वाली फीलिंग। एक हमारे पास मेल आया है, मैं उसको भी शामिल करना चाहती हूँ। नीलू शर्मा ने एक बार फिर से मेल की है कि वो लिखती हैं कि हमारी दोस्त हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, करीब 3 महीने से वो मुझसे बात नहीं कर रही है, हर तरीके से मनाने की कोशिश की है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि बहुत प्यार करती हूँ तुमको सनम। देखिए भाई, इतनी प्यारी लाइन आपके लिए बोल रही हैं नीलू जी, तो प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए, बैठ के बातों को ख़त्म कर लीजिए, गले मिल लीजिए, जी हाँ एक कप कॉफ़ी पी लीजिए। और फिर नीलू लिखती हैं कि एक जन्म में ही 7 जन्म तक मैं उसको मनाने का इंतज़ार करती रहूँगी। कितनी गहरी बात लिखी है नीलू जी ने। नीलू जी, बहुत अच्छा लगा आपकी मेल पढ़ करके, आप हमारी एक रेगुलर लिसनर हैं। और फिलहाल तो मैं घड़ी भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत खुशियाँ जो हैं बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं कि हैप्पीनेस हमेशा एक्सपेंसिव हो, कभी कभी ना सिंपल हैप्पीनेस भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, जैसे कि लेट नाइट चाय, बारिश और बालकनी, पुराने सॉन्ग्स के साथ, दोस्तों के साथ गॉसिप, या फिर अकेले बैठकर खुद से बातें करना, और इन सब के साथ दिल में किसी का नाम हो तो वही, वाह क्या बात है, वीकेंड थोड़ा सा सिनेमैटिक भी हो जाता है। सो गाइस, आज खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, फोन साइड रखिए, डीप ब्रेथ लीजिए और अपने दिल की आवाज को सुनिए।

तो दोस्तों सैटरडे कैफे की महफिल अब धीरे धीरे भाई लास्ट चुस्की की तरफ आ गई है, बट जाते जाते ना हम सबके दिल में एक प्यारा सा एहसास छोड़ जाती है ना। उस एहसास में प्यार है, अपनापन है और हल्की सी मुस्कान है जो कॉफी की गर्माहट के साथ दिल तक पहुंच रही है। अगर आज की इस सैटरडे कॉफी ने आपके फेस पर थोड़ी सी भी स्माइल लाई हो, जी हाँ, तो पुरानी यादों को हल्का सा याद करिएगा और अपने दिल में बसा करके उसे मुस्कुराइएगा। फिलहाल तो अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल की बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपने दिल का म्यूजिक वार्म रखिए, रिश्तों को टाइम दीजिए। टेक केयर, स्टे ट्यून, 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्ट बीट। म्यूजिक कार में आज आप एंजॉय कर रहे थे सैटरडे कैफे विद आरजे मालिनी। मिलती हूँ लास्ट सॉन्ग के बाद आपकी पसंद प्रोग्राम के साथ।

जनाब, जाते जाते एक मेल स्क्रीन पर और आ गई है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अर्दी मालिनी जी, नमस्कार। मेरे दिल के करीब जो गीत है वो है पल पल दिल के पास तुम रहती हो, और ये हमें मेल किया है जाकिर ने, मंसूर रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से।

नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

सबसे पहले प्रोग्राम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जी हाँ, दिलों को थाम कर बैठिए। लेकिन प्रोग्राम का पहले गीत का नाम बताने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, बार बार एक ही आदमी बार बार मेल करता है तो होता क्या है कि बहुत सारी मेल्स हमारी आंखों से निकल जाती हैं, वो हट जाती हैं। और फिर भी मैं देख रही हूँ, इतना कहने के बाद भी हर बार कुछ लोग लगातार मेल करते हैं और स्क्रीन पर लगातार करते भी जा रहे हैं। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, जिनकी मेल लगातार आएगी ना, आज उनका नाम मैं नहीं शामिल करने वाली है। तो आप प्लीज़ एक बार अगर मेल कर दिए हैं तो आप बार बार मेल ना करें, अपने नाम आने का इंतज़ार करें। फिलहाल तो पहला गाना जो मैं शामिल करने जा रही हूँ वो इज्जत फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और धुन बनाई है बर्मन दानी, आडी बर्मन जी ने। और इस गीत के लिए हमारे पास मेल आई है, लिखते हैं आरजे दीदी जी, नमस्ते नमस्ते, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। जी हाँ, चलिए हमने आपको नाम ले लिया है, आप कौन है चलिए ये भी बता दें। चंद्रनगर सहरनपुर से हैं आशा डोमेन, सोनाली डोमेन, सुरेश डोम, पथिक डोम, रायगढ़ बिहार से हैं उमा राज, पवन उमा और प्रभा रानी जाटव।

और एक और मेल आई है इसी गाने के लिए, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनीता शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और काल, ये हैं सेक्टर 67 से मोहाली चंडीगढ़ से हैं, कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज और साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, तो इन सबको भी इज्जत फिल्म का यही गाना सुना है। और एक हमारे पास मेल आई है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इन्होंने भी हमें मेल करी है। और हमारे पास मेल आई है, एक मेल और स्क्रीन पर दिख रही है।

दोस्तों कभी कभी ना बहुत छोटा लिखा होता है तो मेल पढ़ने में दिक्कत होती है। खैर चलिए आप पढ़ते हैं, लिखते हैं। नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी आप अभिनंदन कर रहे हैं, हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं। इन्होंने भी लिखा है, हमारा नाम शामिल कर लीजिए। ये है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा विमला अनेजा। और हमारे पास एक मेल और आई है, ये है कमल कांत, हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं। मैडम जी जरा हमें भी याद कर लेना जी, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, हम बहुत सारे लिसनर्स हैं भाई, सबको याद करते हैं। तो चलिए आपका नाम ले लेते हैं। ये हैं समडील नवाब पारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, ये है अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता। तो चलिए हम सबकी पसंद का गाना सुनवाते हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना है फिल्म इज्जत से।

यहाँ बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था, आशा भोसले जी ने गाया था। तो चलिए अगला सॉन्ग हम आपको सुनाए उससे पहले हम और मेल्स को शामिल कर लेते हैं। एक हमारे पास मेल आई है, ये मेल है अभिजीत अलका, अभिजीत की नेहरू वार्ड पांडर कवड़ा से है। अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनुश्री बुरांडे और बलहार शाह से है सुजन लोढ़े, प्राची लोढ़े और एकलव्य लोढ़े। इन्होंने भी गीत सुनना चाहा था। और एक मेल और हमारे पास आई है, मेरठ कैंट से है दिग्दर्शन कविता, संजय ढींगिया, राधा नावदेव, अनीता जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शना भाई, इनकी भी मेल हमने शामिल कर ली। इन्होंने भी इज्जत फिल्म के गीत के लिए हमें फरमाइश की थी। एक और हमारे पास मेल आई है दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह की मूंदी चक भागलपुर बिहार से, ये मेल हमारे पास आई है। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करें, उससे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं कुछ खास।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

भाई देखिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट सॉन्ग की ओर। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा अगला गाना भी है, दिल वाले फिल्म का। कुमार सानू की आवाज है, नदीम श्रवण की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं। जी हाँ, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। और ये जो गाना है ना, इसको सुनना चाहा है हमारी बहुत ही रेगुलर लिसनर। ये आज सारे प्रोग्राम में लगातार मेल कर रही हैं, बहुत शिद्दत से ये जुड़ी हुई हैं रेडियो से, और यहीं से नहीं और भी जगह के ये रेडियो चैनल्स को सुनती हैं। ये है नीलू शर्मा, ये लिखती उनसे, मिलकर बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में उनके दिल मजबूर हो गया, कसूर नहीं इसमें कुछ भी उनका, हमारी चाहत ही तो थी कि उन्हें गुरूर हो गया। मनु दी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन्होंने दिल वाले फिल्म का गाना सुनना चाहा है, तो गाना तो हमने बता दिया है नीलू जी। तो चलिए, आप स्पेशली डेडिकेट कर रही हैं कौसर मैडम को, पीहू और मनु दी को। तो चलिए, आपने गाना भी डेडिकेट कर लिया, और गाना हम बहुत जल्दी आपको सुनवाएंगे, लेकिन हमें और भी मेल्स को यहाँ पर लेना है। तो इसी गाने के लिए हमारे पास देखिए मेल आई है स्क्रीन पर, और भी मेल आ रही है लगातार। तो ये जो मेल आई है, ये आदरणीय दीदी जी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, इन्होंने मेल करिए शास्त्री नगर बीड शहर से, आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया सपकाल, साहिरा सपकाल और विशा सपकाल। और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रमिला सिंह, हेमा, अंतरा सिंह और डोंडी लोहारा से हैं शंकर देव, जटोलिया और प्रभा हिंगोड़िया। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, इनका भी नाम आया है, तो लीजिए इनका भी नाम हमने शामिल कर लिया। देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आप एक बार मेल कर देते हैं तो बार बार प्लीज मेल मत करिए। फिलहाल तो हमने गाना प्ले कर दिया है, आप इस गाने को एंजॉय करिए।

जी हाँ, जो चाहे उसको सताना अच्छी बात बिल्कुल नहीं होती है। गाना भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो आई थिंक इस गाने के बाद चलिए हम कुछ और मेल्स को शामिल कर लें, जैसे इस गाने को और भी लोगों ने पसंद किया रहा। आदरणीय दीदी जी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, ये मेल आई है शास्त्री नगर बीड शहर से। आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया सपकाल, साई राज सपकाल और विशाल सपकाल, आई थिंक हमें लग रहा है ये इन्होंने दोबारा मेल करी है। हम बार बार बोलते हैं बार बार मेल मत करिए, लेकिन होता है, आप लोग सुनते नहीं हैं। खैर चलिए, अगली मेल है जेल रोड दिल्ली से है लाल बाबू दीवाना। दिव्या भारती और उमा राज डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, इन्होंने भी गाना सुनना चाहा था। और एक हमारे पास और मेल आई है, ये है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद अब्बासी, अनाम यह है अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी, सिकंदरा यह है सिकंदराऊ, सिकंदराऊ से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आपका नाम शामिल हो गया है, अब हम क्या करें, नेक्स्ट सॉन्ग आपको सुनवाएं। जी हाँ, नेक्स्ट सॉन्ग है, देखिए एक और आ गया मेल हमारे पास, तो ये कोई भी गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए इस वाली नेक्स्ट सॉन्ग में इनका हम मेल शामिल कर लेते हैं। ये अगला गाना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दोस्ताना फिल्म का गाना है, और गीत को गाया है मास्टर सलीम ने, कुमार के बोल हैं और धुन बनाई है विशाल शेखर ने। और इस गीत को सुनना चाहा है बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून ने। और इसी गीत के लिए चलिए हम एक और मेल है, कैथल हरियाणा से है जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा। कालका से है शुभचंद्र बजाज, शाहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

ये है सप्रेम। नमस्कार नमस्कार जी। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। और एक और मेल आई है, नमस्कार कृपया हमें भी किसी गीत में शामिल कर लीजिए, मेहरबानी होगी। लीजिए जनाब, आपका नाम तो शामिल हो गया। हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई हैं चंडीगढ़ से, नहीं ये मनाली हिमाचल से, चंडीगढ़ से है शेफाली, शेफी, डेविस, विमला, सतीश, अनेजा। तो आप सबका नाम शामिल हो गया। ये मनाली का जो नाम आया ना, इससे ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग जो हैं गर्मी में हैं तो यहाँ पर ठंडक सी आ गई है। तो फिलहाल क्या कहते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले किया जाए। तो चलिए मैं प्ले करती हूँ, आप इंजॉय करिए।

जी डोली चढ़ने के बाद भाई माँ का लाडला बिगड़ गया। कितना परफेक्ट सॉन्ग है भाई, बिगड़ता नहीं है, उसे पत्नी की बात भी सुननी पड़ती है। और देखिए जो गाना हमने सुनाया ना, इसके लिए हमारे पास और भी मेल आई थी। ये मेल आई है गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से, रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंश और ये हैं ललित नारायण भाऊ खटसे, ये आराध्या खटसे। तो चलिए इनका भी नाम हमने ले लिया है और लगातार मेल आ रही हैं। नेक्स्ट मेल जो है ये है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। इन्होंने हमें मेल कहाँ से करी है,

बीड शहर महाराष्ट्र से, तो इनका भी नाम हमने शामिल कर लिया है। और एक और हमारे पास मेल आई है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट सॉन्ग में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग अब हम प्ले करने वाले हैं। ये जो अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा सा सॉन्ग है, उदित नारायण की आवाज़ है, सिर्फ तुम फिल्म का नाम है। और इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल आई है वो आई है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप की। इन्होंने एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिया है, लिखते हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो। भाई आपका भी, हम ये भी आपके लिए हम यही ख्वाहिश रखते हैं। और अगला जो मेल है, लिखते हैं आरजे जी, आदाब, आदाब जी, मैं हूँ मालिनी प्रोग्राम के साथ, और इन्होंने हमें मेल करी है गंज टुंडवारा से, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान ने। और एक और मेल हमारे पास आई है कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु की है, ये कहाँ से आई, न्यू दिल्ली से ये मेल हमारे पास आई है, इन्होंने भी गाना सुनना चाहा है। एक और हमारे पास मेल आई है, ये हैं मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन सरधना मेरठ से है, हैं आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, तो इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। एक मेल और आई है, ये हैं रिस्पेक्टेड जी, नाइस जी, योर प्रेजेंटेशन बड़ा ही शांत लिखे हैं आज आप जो हैं, इन्होंने कुछ पता नहीं क्या लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक दो मेल भी हम भेज रहे हैं, अपने जैसे कहाँ जी, कोई भी गीत में हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए। देखिए आप लिखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर लिखा करिए, फुल स्टॉप कॉमा लगा के, कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ये मेल आई हमारे पास सहारनपुर से, अनु, मोना, अलका, विकी, आशा, सोनाली और एस के नारंग की, आज ये गीत सुनवा दीजिए हमें भी। तो चलिए हम आपका भी नाम शामिल कर लिए हैं, सुरेश नारंग जी, बहुत अच्छी सी आपने मेल लिखी है, लेकिन थोड़ा सा कॉमा फॉल स्टॉप अगली बार हम उम्मीद करते हैं आप लगाएंगे। लेकिन इन्होंने ना वाटर मेलन मतलब तरबूज बना के भेजा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ग्रेप्स बना के भेजे हैं, बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन बनाए हैं, अच्छा सा लगा, थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत मेल भेजने के लिए। अब एक और मेल हम पढ़ रहे हैं, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, नमस्कार जी, मेरा भी नाम किसी भी गीत में शामिल कीजिए, तहे दिल से शुक्रिया। मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से।

और इसी गीत के लिए हमारी स्क्रीन पे और भी मेल्स हमें फ्लैश होती दिख रही थी। ये है मैडम कौसर जी, सादर प्रणाम जी। मैं कौसर मैडम नहीं हूँ, मैं मालिनी बात कर रही हूँ, मैं मालिनी प्रोग्राम प्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने नाम शुरू में बोला भी था। चलो अनारकली बजरा बाजार जगराओं से पंजाब से ये हमारे पास मेल आई है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इन सब की मेल है। और मेरे पास और भी नए नए नाम आ रहे हैं लगातार। आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन मालिनी जी को सादर नमस्कार। हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं मालिनी जी, मेरा नाम शामिल नहीं करोगी? हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं, हम मजबूरी में दूसरा मेल कर रहे हैं। देखिए आपने बात मानी, बहुत अच्छा लगा और आपका नाम भी देखिए शामिल हो गया। बहुत सारे लोग लगातार मेल करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, फिर हमें जानबूझ के थोड़ा सा उस मेल को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे पास एक बार दो बार मेल करते हैं उनको हम ज़रूर स्पेस देते हैं। तो प्लीज़ मेरा मेल ज़रूर शामिल कीजिए, मेरा भी किसी गीत में नाम शामिल कर दीजिए। ग्राम व पोस्ट मुंगेसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधू निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, धन्यवाद बहन मालिनी जी को। तो चलो भाई, इतनी खूबसूरत सी मेल इन्होंने भेजी है। एक मेल हमारे पास और आई है, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से है। प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके की ये भी मेल हमने शामिल कर ली है। अब हम नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा सुनाएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

लीजिए जनाब, हम आ गए नेक्स्ट सॉन्ग के साथ और हमारी स्क्रीन पर जो है, स्क्रीन पर बहुत सारी मेल्स दिख रही हैं। लिखते भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से हैं ये मेल हमारे पास। कुमारी दीपिका चौधरी, स्वाति चौधरी, प्रज्ञा चौधरी, मालती चौधरी, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, खट से कुमारी, वंदना मराठा, हमें किसी भी फिल्म में शामिल कर लीजिए। तो ये इंदौर से हमारे पास मेल आई थी। तो नेक्स्ट सॉन्ग जो हम सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। जी, आशा भोसले की आवाज़ है, आर डी बर्मन की धुन पर गीत रचना है आनंद बख्शी की। और इस गीत के लिए भी हमारे पास देखिए मेल आई थी। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं मेरठ से लगभग 40 वर्ष से आकाशवाणी के अलग अलग स्टेशन पर फरमाइश भेज रहा हूँ और मेरा नाम भी बोला जाता है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये मेल हमारे पास आई है ये गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। तो चलिए, आपकी पसंद का सॉन्ग शामिल हो चुका है और भी हम नाम ले लेते हैं फिलहाल। तो हमारे पास एक मेल और आई है, आपकी पसंद में हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए। ये हैं मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर और शेख वजीर। अगली मेल हमारे पास आई है कापस हेड़ा दिल्ली से है, फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा और जालंधर से है संदीप जाटव और सुरेश जाटव की। तो चलिए गाना हम प्ले कर देते हैं।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गाना सुना। देखिए, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग लगातार मेल करते हैं, जो बहुत सारी मेल कर देते हैं। हम जब उनकी मेल बहुत सारी एक लाइन से आने लगती है तो हमको इग्नोर करना पड़ता है, और ऐसी ही नाराजगी जताइए। एक हैं बोधराज खोरवाल जी, जो लगातार मेल कर रहे थे, उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। तो इनकी मेल को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ा, लेकिन चलिए हमने नाम ले लिया है। इन्होंने किसी भी गीत में अपना नाम शामिल करने को कहा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपसे उम्मीद है कि आप ऐसी मेल्स बार बार नहीं करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी। और एक दो तीन नाम और भी हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता हम बार बार उन नाम को हाइलाइट्स करें। अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है पाकीज़ा। जी हाँ, पाकीज़ा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ें, कमाल अमरोही ने बोल लिखे हैं और गुलाम मोहम्मद ने बनाई है धुन। एक और हमारे पास मेल आई है इसी गीत के लिए, पाकीज़ा फिल्म के गीत के लिए। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया की है, स्टेशन रोड जमशेदपुर से ये मेल है। एक मेल और आई है, मेहर पटेल कॉलोनी राजकोट से है, अजीता पॉल, हेमा और प्रमिला पॉल की। कबीर नगर बार वाराणसी से मेल हमारे पास आई है, देव जाटव बेलदार, शंकर बेलदार, सरिता बेलदार और पूजा टुनटुन बेलदार। एक और हमारे पास मेल आई है सनावत से, शेख मूसा मोहसिन की। इन्होंने भी किसी भी गीत में नाम शामिल करने को कहा है। लिखते हैं प्यार भरा आदाब। आदाब जी, आगे इन्होंने लिखा है, आप खैरियत से हो? जी हाँ, बिल्कुल खैरियत से हैं। क्या आप हमसे नाराज हो? हमें कब शामिल करोगे? दुआ में याद रखना। देखिए कितनी इन्होंने तहजीब के साथ मेल करी, बहुत अच्छा सा लगा आपकी मेल पढ़ के। आपका नाम देखिए शामिल हो चुका है शेख मूसा जी, आप हमारे काफ़ी रेगुलर लिसनर हैं। एक और है, आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन मालिनी जी को नमस्कार, आदाब। आज का कार्यक्रम बेहद बेहद बेहद पसंद आ रहा है, गीत सुमधुर हैं, प्रस्तुति काबिले तारीफ, हमारी ओर से हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच जी, आपका नाम हमने शामिल किया है। नाम अब बोलने जा रही हूँ, मंसूर रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद और नसीम, फलक, लुबना और यश मंसूरी। तो चले गाना सुनवाएं आपको, बहुत ही प्यारा सा पाकीज़ा फिल्म का गाना है, पहुंच रहा है आप तक।

बहुत ही प्यारा सा गाना था और इस गीत के लिए हमारे पास और भी मेल आई थी। ये मेल आई है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो की। इन्होंने लिखा है, रिस्पेक्टेड होस्ट दीदी जी, हम भी जुड़े हुए हैं, तो देखिए हमने आपका ख्याल रखा, आपका नाम शामिल हो गया है, आप हमें भी किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। लीजिए जॉन डिकेस्ट्रो जी, आपका नाम शामिल हो गया, आप हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं। प्यार भरा आदाब जी, आपकी पसंद का सदाबहार नगमा कोई भी सुनवा दीजिए। खंडवा रोड सनावत से है शहबाज, अरबाज, फरहान, फरदीन, समीर, डॉक्टर मुइन शेख, और खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती।

अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सॉन्ग की ओर. जो नेक्स्ट सॉन्ग हम सुनाने जा रहे हैं उसके लिए फकीरा फिल्म का गाना है. आपको बता दें लता मंगेशकर की आवाज है, गीत संगीत है रविंद्र जैन का, और इस गीत के लिए हमारे पास मेल आई है छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव और टुक टुक जाटव, उमर खेड़ से सिराज खान और शबाना खान की. और एक और हमारे पास मेल है दादरी गेट भिवानी से है, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा. नमस्ते दी, हम भी श्रोता हैं मैडम. जी जी हाँ बिल्कुल, हमें पता है आप लिसनर हैं और आप लगातार मेल कर रहे हैं. एक और है मालनीय सिस, शॉर्ट में लिखा है सिस्टर को, सिस प्लीज एक नज़र इधर भी प्लीज. जनाब आप पर नज़र पड़ गई है, उत्तम नगर राजापुरी से है महादेव सोनी, दीपक सोनी मधुबनी बिहार से हैं, मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली और रुखसाना खातून. तो आपका नाम देखिए शामिल हो गया है. एक और हमारे पास बहुत खूबसूरत सी मेल आई है, लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, मैं भी कार्यक्रम सुन रहा हूँ, अपने पसंद का कोई भी गाना हमें भी सुनवा दीजिए. देखिए मेरी पसंद का गाना नहीं है, आप में से कुछ लिसनर्स की पसंद होती है. और गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से मेल हमारे पास आई है राजा पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा, मऊ से है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपका धन्यवाद जी. तो आपने धन्यवाद दिया और इधर मैंने गाना भी प्ले कर दिया.

दोस्तों, वक्त की नजाकत को देखते हुए इस गीत को हम थोड़ा सा सुनवाएं और एक गाना और हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करता आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन। कोई भी सॉन्ग में हमें भी शामिल कर लीजिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति और इसके लिए आपको धन्यवाद दीदी। तो चलिए, आपको अच्छी लग रही है प्रस्तुति, आपका नाम शामिल हो गया। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना हर्षित, खुशी गोस्वामी, तो आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। और एक और नाम है, एक ये है, कहाँ से है आदरणीय प्रसारक जी, नमस्ते नमस्ते जी, ये जय जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी से महाराष्ट्र से है। रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार, तो इनका भी नाम शामिल हो गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की ओर। अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कभी कभी का टाइटल ट्रैक। इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल आई है वो आई है मोताला बाजार से, बबलू ठेकेदार शेख शगीर और शेख वजीर सोहिल।

इसी गीत के लिए हमारे पास मेल आया जेल रोड शिमला से है प्रमिला अशोक जाटव, अनुश्री, प्रदीप और संदीप श्याम जाटव का। लता मंगेशकर मुकेश की युगल आवाजें हैं, खयाम की धुन पर गीत रचना साहिल की।

सादर नमस्कार प्रिय दीदी जी, मधुर स्मृति, आप किसी भी गाने में हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए। तो चलिए, इस लास्ट सॉन्ग है इसमें हम आपका नाम शामिल कर रहे हैं। अनुरोध करता है तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा।

कभी कभी फिल्म के इस लास्ट सॉन्ग के साथ। फिलहाल मालिनी यानी आरजे मालिनी आपके पसंद प्रोग्राम को वाइंड अप करती है। टेक केयर एंड बाय बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। होमुर्ज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पास से गुजर रहे एक जहाज ने चालक दल के नौका में सवार लोगों को बचा लिया है। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वो सुरक्षित हैं। सूत्रों ने बताया कि आग लगने के कारण का पता लगाया नहीं जा सका है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक से संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और मंच पर उन्हें अंगवस्त्र पहनाया। उत्तर प्रदेश सरकार जनगणना 2027 को अधिक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और सटीक बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए जनगणना 2027 के अंतर्गत एक स्व गणना सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कई मंत्रियों और सांसदों ने अपनी स्वगणना पूरी की। स्वगणना के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रसार के लिए सरकार राज्य में जागरूकता अभियान चला रही है और इसके लिए सहायता केंद्र और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कौशाम्बी में 284.46 लाख की लागत से बनने वाले जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। जवानों के हित में विभिन्न प्रकार के भत्तों को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज पूरी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी दो दिनों में मौसम साफ रहेगा। कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी दौर शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति एक विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
2: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना दो चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
3: धन्यवाद ओम जी।
2: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
3: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और उसको एक यूनिक कोड उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध है उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
2: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
3: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है। एक बार आपने अपना रिस्पॉन्स फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच। तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते हैं
2: जी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखती हैं आप?
3: उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है वो है कवरेज, कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज

0: ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कम्प्लीट करे। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है और शहरी क्षेत्र की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती हैं। शहरी क्षेत्र की समस्याएं, जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने एक माह के अवधि के दौरान और आप उसको घर पर नहीं मिले और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वयंगणना का भी प्राविधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोग के जिलाधिकारियों ने की है उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए।
1: क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या है?
0: बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा, आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है और ये भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं।
1: अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं इनको पार्टिसिपेट करना ही है?
0: सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे, यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
1: आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
0: वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े क्योंकि घर घर तक ये बात पहुंचानी है। हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी ये तिथियां हैं। बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में RWA के माध्यम से, क्योंकि RWA सभी जगह जहां पे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा 2 स्तर का कैंपेन है, एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से और ग्रामीण जो हमारे कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माध्यम से होगा और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है तो मीडिया कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वयंगणना अधिक से अधिक लोग करें क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनेयर भरने के लिए आधा घंटा दे पाए, तो स्वयंगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा, नगर निगमों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहां के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट कर ले।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओम जी।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम।
4: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
5: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
6: धड़कता है जो हर दिल में
7: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
8: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
5: धड़कन लखनऊ की।
9: डायबिटीज, जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन

0: शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो,
5: धड़कन लखनऊ की।
6: या दोस्तों, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 107 FM रेनबो पर। शाम के 5:13 हुए हैं, विनय आपके साथ है और शुरू हो चुका है FM टॉप 10, जहां हर बीट में है एनर्जी, हर सॉन्ग में एक स्टोरी। और आज हम लेकर आए हैं सन 2006 के सुपरहिट गाने और उसका काउंटडाउन। तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिकल जर्नी को। और गाने 10 से लेकर 1 तक हम आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, समय थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। तो पहले गाने की थोड़ी सी झलक तो बनती है।

दोस्तों ये है कॉरपोरेट फिल्म का गाना, जो फिल्म 7 जुलाई 2006 को रिलीज हुई थी, और ओ सिकंदर ये गाना जो बहुत ही बेहतरीन गाना है और बहुत ही बेहतरीन आवाज़ कैलाश खेर जी की आवाज़ है। ये सिर्फ गाना नहीं बल्कि ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया है। कभी गिर कर भी मुस्कुराना सिखाता है, जो जो भी हो खुद पर भरोसा रखना है ये सिखाता है। तो दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर।

और आइए अब चलते हैं गाना नंबर 9 की ओर, जो अगेन अब बहुत ही बेहतरीन गाना है और ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। जी दोस्तों, 10 नवंबर 2006 को फिल्म रिलीज हुई थी विवाह, मुझे हक है, ये है गाना नंबर 9। प्यार में सिंप्लिसिटी कितनी खूबसूरत होती है, गाना हमें एहसास कराता है। वो छोटे छोटे वादे, वो हल्की सी मुस्कान, अगर आपके लाइफ में कोई भी स्पेशल है ना, तो उसे एक प्यारा सा हक करिए या फिर एक प्यारा सा मैसेज तो भेज ही सकते हैं। क्यों?

और दोस्तों श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज में ये बेहतरीन ट्रैक आप सुन रहे थे 100.7 FM रेनबो पर। और अब वक्त है गाना नंबर 8 का। लगे रहो मुन्ना भाई, 1 सितंबर सन 2006 को रिलीज हुई ये फिल्म और ये गाना पल पल पल पल हर पल को खास बनाने का मैसेज देता है ये गाना। ये याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि फील करने के लिए है। कल किसने देखा है, आज है, आज जी लो भाई।

दोस्तों, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे गाना नंबर 8 और अब वक्त है गाना नंबर 7 का। थोड़ा ग्लैमर, थोड़ी मिस्ट्री और ढेर सारी स्टाइल। दोस्तों, ये गाना कहता है कि आज की रात बस जी लो बिना किसी टेंशन के। कभी कभी खुद को ब्रेक देना भी जरूरी है और डांस भी करना जरूरी है। ये डॉन फिल्म का गाना आज की रात। 20 अक्टूबर सन 2006 को ये फिल्म रिलीज हुई और आज के काउंटडाउन में ये है गाना नंबर 7।

और वैसे रात नहीं हुई है जी, डॉन फिल्म का ये गाना जो आज की रात आप सुन रहे हैं, रात होने वाली है, अभी तो उजाला है लेकिन अभी आप सुन रहे हैं FM टॉप 10। तो 2006 में ये गाना टॉप पर बना हुआ था और बेहतरीन व्यू बटोर रहा था, फिल्म भी सुपरहिट थी। और गाना नंबर 6 तैयार है, ओमकारा का बीड़ी जलेले। 28 जुलाई सन 2006 को ओमकारा फिल्म रिलीज हुई थी। देसी स्वैग और पावरफुल बीट है ये गाने में, अलग तरह का अंदाज है इस गाने का, और जब मूड थोड़ा लो हो तो बस ये गाना प्ले करिए, आप खुद ब खुद डांस करने लगेंगे और एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों धूम 2 जो कि 24 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई। क्रेजी किया रे ये गाना नंबर 5 है, नाम ही काफी है क्रेजी किया रे। ये गाना आपको डांस फ्लोर पर खींच तो लाएगा ही, जिंदगी में थोड़ा क्रेजी होना जरूरी है। फन करिए, एंजॉय करिए।

जी क्रेजी, ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट रहा था उस वक्त, और सुनिधि चौहान की बेहतरीन आवाज में ये गाना आपने सुना, जो कि है गाना नंबर 5। और अब आते हैं चौथे नंबर पर। जी हाँ, ऋतिक रोशन क्रिश, जो कि 23 जून 2006 को रिलीज हुई थी, दिल ना दिया। सॉन्ग की बीट्स पावरफुल फील है और एनर्जी से भरा हुआ ये गाना, और हाँ, लाइफ में चैलेंजेस आए तो भी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि नेवर एवर गिव अप।

दिया कुनाल गांजावाला की बेहतरीन आवाज में आप ये सुन रहे थे गाना नंबर 4। ऋतिक रोशन का बेहतरीन डांस आपने इस गाने में जरूर देखा है। और अब आ गया है गाना नंबर 3। जी हाँ, मितवा कभी अलविदा ना कहना का ये बेहतरीन ट्रैक। ये गाना दिल की गहराइयों से बात करता है, लव इमोशंस और फीलिंग का परफेक्ट ब्लेंड। कभी कभी दिल की सुनना जरूरी है क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता।

0: कभी अलविदा ना कहना का ये बेहतरीन ट्रैक आप सुन रहे थे 100.7 एफएम रेनबो पर। प्रोग्राम चल रहा है एफएम टॉप 10
1: लाला।
0: और अब आ गया है गाना नंबर 2। जी हाँ, ये बेहतरीन आवाज आपके कानों तक जरूर पड़ गई है। फना फिल्म जो कि 26 मई सन 2006 को रिलीज हुई और ये बेहतरीन फिल्म है। इसमें आप देखेंगे काजोल और आमिर की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगी है। रोमांस का असली जादू, ये गाना सुनते ही दिल में एक अलग सी फीलिंग सी जाग जाती है। अगर किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उसे अपने प्यार को जताना है तो बस आप ये गाना उस तक पहुंचा दीजिए, आपकी फीलिंग अपने आप पहुंच जाएंगी। फिलहाल ये गाना आप तक पहुंच रहा है 100.7 FM रेनबो के थ्रू।

दोस्तों अब वक्त हो चला है गाना नंबर एक का। सन 2006 में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई थी और वो फिल्म थी रंग दे बसंती। जी हाँ, एक बार फिर से आमिर खान रूबरू ये गाना रंग दे बसंती 26 जनवरी सन 2006 को रिलीज हुई थी और ये है नंबर एक गाना रूबरू, एक ऐसा गाना जो हो पॉजिटिविटी और नई शुरुआत का सिंबल। आंखों के सामने जो है उसे पहचानो, खुद को पहचानो, ये गाना हमें यही सिखाता है, मौका देता है और किस तरह दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती निभाइए। ये जो बेहतरीन गाना है इसे प्रसून जोशी ने अपनी कलम से लिखा है, म्यूजिक है एआर रहमान का। आइए हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं इस बेहतरीन गाने को जो है 2006 का गाना नंबर 1।

पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। कई जिलों में जिलाधिकारी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रति कर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उन्नाव में स्वगणना जन जागरूकता अभियान एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिजनौर जिले में मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला जनसंख्या अधिकारी ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा रही है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आधुनिक टेक्नोलॉजी और संगठित दुग्ध व्यापार के जरिए सीधे बाजार से जुड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण मॉडल से अवध क्षेत्र में दुग्ध कारोबार से 18,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मोबाइल ऐप और डिजिटल सिस्टम से महिलाएं गाँव से ही सीधे बाजार व्यवस्था से जुड़ रही हैं। बीते 3 वर्षों में 1,25,000 से अधिक महिला सदस्य इस नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में मिर्जापुर के महरच्छ गांव में आज संतुलित उर्वरक, उचित प्रबंधन, स्वस्थ मिट्टी, समृद्ध किसान विषय पर किसान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित पोषण प्रबंधन तथा जैविक एवं टिकाऊ खेती के प्रति जागरूक करना था। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रदेश के टॉप 10 न्यूज के तहत प्रस्तुत किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, रते आशिके जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
6: सात रंग का इंद्रधनुष है,
7: सात सुरों की सरगम।

दोस्तों 6:06 हो चले हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो आज विनय के साथ। शाम अवध का शुरुआत हो चुकी है और ये जो सेल्फी लेने हमने गाना बजाया जय जय बजरंगबली, जेठ का महीना चल रहा है और हम हर मंगलवार को अपने बजरंगबली जी की अर्चना प्रार्थना करते हैं और शनिवार को भी, मंदिरों में भीड़ तो है ही, तो इस पूरे जेठ के महीने में हर शनिवार हर मंगलवार बस जय जय बजरंगबली। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि बजरंगबली हम सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमको स्वस्थ रखें, हमारी रक्षा करते रहें। जय जय बजरंगबली।

और हमने सेल्फी ले भी ली है। जी हाँ, हमने तो खटाक से सेल्फी ले ली है, क्योंकि हमें तो भाई हमने बजरंगली का नाम लिया और सेल्फी ले ली। और आप लोग भी भाई अगर मंदिर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सेल्फी लेना मत भूलिए, क्योंकि ये जब हम फोटो खींचते हैं ना तो ये हमारी मेमोरीज में शामिल हो जाती हैं। और जब भी आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं तो वहाँ पर हम बड़ी सारी फोटो वीडियोस बनाते हैं, और 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद जब उन्हें देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमने अभी बजरंगबली का नाम लिया, और देखो गर्मियां चल रही हैं ना, और गर्मियों में बड़े सारे लोग घूमने का प्लान करते हैं, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप कैलाश मानसरोवर घूमने के बारे में सोच रहे हैं, उसका प्लान बना रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। जी हाँ, ये न्यूज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है अगर आप ऐसा प्लान कर रहे थे। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर, उसके लिए 1 जनवरी सन 2026 को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है मिनिमम, और मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु के इंडियन सिटीजन ही इसमें पात्र हैं। और किस तरह से आपका चयन होगा, किस तरह सेलेक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन ड्रॉ होगा, जो लोग भी आवेदन करेंगे उनका ऑनलाइन ड्रॉ होगा और उसके तहत ही आप चुने जाएंगे। और हाँ, इसमें हेल्थ चेकअप अनिवार्य किया गया, क्योंकि थोड़ी टफ होती है ना। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए और पूरी तरह से आप हर पहलू को जानने के लिए आप एक वेबसाइट सुन लें, उस पर जाकर आप अच्छे से देख लें कि आखिर कौन सी टर्म एंड कंडीशन है जिन्हें आपको पूरा करना है, कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या है लास्ट डेट। और वो वेबसाइट है kmy.gov.in। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं kmy.gov.in। तो अगर आप चाहें तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी लीजिए और इस गर्मी में आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके घूम कर आइए।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbowhelpline@gmail.com।
3: याद रखिए हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: ये दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर रविवार बड़ा ही स्पेशल होता है, और जैसा अभी शिवम और स्वेच्छा आपसे कह रहे थे कि अगर आप अपनी बागवानी की कोई भी समस्या जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट फोन पर अवेलेबल रहते हैं, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। बड़ी ही सिंपल सी मेल आईडी है fmrainbowhelpline@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप अपने सवाल हमको अभी भी भेज सकते हैं, और इस मेल आईडी पर जो भी सवाल बागवानी से जुड़े हुए, आप अपने घर में अगर फल फूल या कोई भी समस्या हो रही है, कुछ जानना चाह रहे हैं पौधों के बारे में, सब्जियों के बारे में, अगर लगाने में समस्या आ रही है,

कैसी खाद इस्तेमाल करें, ये सब इनमें से कुछ भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और वो हमारे साथ अवेलेबल रहते हैं फोन पर। आप हमें मेल करें fmrainbowhelpline@gmail.com पर। साथ ही साथ संडे को हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम, जो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, हम आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में डॉक्टर मोहम्मद तौफीक खान जी, जो कि MBBS MD हैं मेडिसिन विभाग से। और कल का विषय है बहुत ज़रूरी, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, बड़ी कॉमन समस्या हो गई है। तो कल का विषय यही है कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसका आप सीधे हमारे डॉक्टर साहब से जवाब पा सकते हैं। ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है, हमारे डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे, उनसे आप सीधे सवाल करें। और सवाल करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं 0522 2238 852 और दूसरा नंबर है 0522 2238 845। हाँ, अगर आपका फ़ोन नहीं लगता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में, और मेल आईडी आप जानते हैं fmakashwani@gmail.com। तो इस मेल आईडी पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ये दो बेहतरीन प्रोग्राम जो आपके लिए हैं, और आपको इनमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। और फिलहाल चल रहा है शाम अवध, शाम के 6:22 हुए हैं, बड़े सारे लोग अपने घर जा रहे होंगे, कई लोग घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, और कई अपने घर में चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर शाम अवध और आज आपका दोस्त, आपका अपना प्यारा सा दोस्त विनय आपके साथ है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कल है संडे और कल से यानी कि संडे से डाक विभाग लखनऊ मुख्यालय अब रविवार को भी आधार के काम की सेवा शुरू करने जा रहा है। ये गुड न्यूज है। अगर आप वर्किंग डे में आधार का जो चेंजेस नहीं करा पा रहे थे, अपडेट नहीं करा पा रहे थे, तो

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शामे अवध। शाम के 6:37 हो रहे हैं। और दोस्तों, एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। राजधानी, हमारी राजधानी लखनऊ के राजकीय और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की ओर से साल 2026-27 के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसका आयोजन की जो शुरुआत है जुलाई से ब्लॉक स्तर पर होगी। विज्ञान और दोस्तों, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं 16 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। इसके बाद सितंबर से 31 अक्टूबर तक जिला स्तर और साथ ही साथ नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक राज्य स्तर और दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। और दोस्तों, इस साल बाल विज्ञान कांग्रेस का जो विषय है वो है साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। जी हाँ, एक बार फिर से बताएं, साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। और इसका जो उद्देश्य है वो 10 साल से लेकर 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को विकसित करना है और उसे बढ़ाना भी है। तो अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप एक वेबसाइट है उस पर जाकर डिटेल में देखें। वेबसाइट है iscos.org/csc2026। फिर से रिपीट कर दे, iscos.org/csc2026। यहां पर जाकर एक फॉर्म है, उसे भरना है और आप इसमें, आपके बच्चे को आप इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। वैसे भी आप जितने अपने बच्चे को इन सब एक्टिविटीज में डालेंगे उतना ही उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

और अपन तो पूरी तरह तेरा है। जी हाँ, बड़ी अलग सी भाषा है, लेकिन सही मायने में हम तो आप ही के हैं। देखिए, लखनऊ के हैं तो हम तो आप ही के हैं, अपन ये सब भाषा हम नहीं बोल सकते। दोस्तों, आप सुन रहे हैं शामे अवध, 6:49 हो रहे हैं, विनय आपके साथ है। और आपको बताते चलें दोस्तों कि राज्य संग्रहालय पर मौजूद जो स्थित विदेशी मूर्ति कला गैलरी पर्यटकों को खूब लुभा रही है, बहुत ही अपनी ओर खींच रही है। मैं फिर से बताऊं कि राज्य संग्रहालय स्थित विदेशी मूर्ति कला गैलरी पर्यटकों को खूब अपनी ओर खींच रही है। यहाँ रखी हुई दुर्लभ मूर्तियां और वस्तुएं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक इतिहास के से साक्षात करवाते हैं। जी हाँ, राज्य संग्रहालय में विदेशी मूर्ति कला गैलरी की मूर्तियों को स्थानांतरित कर संग्रहालय परिसर में रखा गया है। संग्रहालय के चौथे पार्श्व गैलरियों को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, अवध गैलरी और ओल्ड कोठी में कैफेटेरिया बनाए गए हैं, तो आप एक बार जरूर जाइए, देखिए राज्य संग्रहालय में ये नई चीज आई है जहां पर विदेशी मूर्ति गैलरी बनाई गई है, तो इसका आप मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अभी मौसम थोड़ा सही है, थोड़े दिनों बाद जैसा कि मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि थोड़ा सा बदल सकता है, तो अभी आप, कल संडे है तो कल इसका मजा ले सकते हैं। फिलहाल आप ये ट्रैक एंजॉय करिए हमारे साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: और दोस्तों इसी गीत के साथ शामे अवध से इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को। न्यूज ब्रेक के उस पार आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर हाजिर होंगे। सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो।

नमस्कार, आप सुनिए प्रदेश के टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। प्रदेश सरकार ने सम्मानजनक करियर बनाने के लिए खिलाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित सीएम भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम ने कहा, शुभेंदु अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए आयोजित 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्व गणना की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिर्जापुर, उन्नाव, बिजनौर सहित कई जिलों में लोगों को स्व जनगणना के लिए प्रेरित किया गया है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कौशाम्बी में जिला कमांडेड होमगार्ड भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक काम किए हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता मामले सहित विभिन्न वादों का निस्तारण किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया संदेश में महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को तय शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रादेशिक समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

0: ये दोस्तों 100.7 एफएम रेनबो पर 7:04 हुए, आप सुन रहे हैं आज विनय को। हेलो एफएम प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आप जानते हैं हेलो एफएम में हम आपके पसंदीदा गाने सुनाते हैं और आपसे बात भी करते हैं। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, दो मैजिकल टेलीफोन नंबर हैं, 0522-2238-852 और दूसरा नंबर है 0522-2238-845। हमारे बड़े सारे लोग अब फोन करना शुरू कर चुके हैं, बहुत पहले से फोन कर रहे हैं और जो हमारी फोन लाइनें ब्लिंक कर रही है और हमारे पहले लकी लिसनर का फोन भी लग गया। ये देखते हैं कौन है, जानते हैं कौन है हमारे साथ है। हेलो।
1: हेलो सर,
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं ममता बोल रही हूँ।
0: जी ममता जी बोल रही है, संडीला लखनऊ, संडीला सीतापुर से, हरदोई से। जी जी जी जी, संडीला के लड्डू फेमस है।
1: जी सर।
0: जी तो आप हमें ये बताइए कि आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं सारे?
1: जी सर।
0: आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है मुझे ये बताइए, पूरे दिन भर में?
1: सर सबसे पहले गुड मॉर्निंग लखनऊ, हेलो
0: सर। क्या बात है, यानी आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, ये प्रूफ कर दिया आपने, क्योंकि आपने बड़े सारे ऐसे प्रोग्राम का जिक्र किया जो सुबह से लेकर रात तक बजते हैं, उसमें रेनबो कैफे है, गुड मॉर्निंग लखनऊ और बहुत सारे। आप मुझे बताइए कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं आप?
1: सर मुझे कहां गए,
0: तो किसे सुनाना चाह रहे हैं आप ये गाना?
1: सबसे पहले आप,
0: थैंक यू।
1: राजा जी रावत और सीतापुर से
0: भैया। चलिए चलिए चलिए, आइए हम सब मिलकर ये गाना एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: ओके बाय
0: बाय बाय बाय।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 200.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं हेलो FM और हमारे बहुत सारे लिसनर कॉल कर रहे हैं और एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: जी नमस्ते।
2: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैं ग्राम बसी नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
2: उज्जैन महाकाल की नगरी?
3: जी बिल्कुल, जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल। कैसे है वहाँ, कैसे वेदर है?
3: जी बहुत ही अच्छे हैं। अभी मतलब आपको बताऊं, मौसम तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, काफी हवाएं भी चली थी अभी तेज, और ऐसे मौसम भी लग रहा है कि पानी आने जैसा हो रहा है।
2: अच्छा, तो देखिए अभी तो बेमौसम बारिश हो रही है, लेकिन अगर बरसात के मौसम में आपको क्या लगता है कि बरसात का मौसम आपको बढ़िया लगता है कि नहीं?
3: जी बिल्कुल, सबसे अच्छा मौसम मुझे बरसात का ही लगता है।
2: अच्छा, ऐसा क्यों भाई?
3: जैसे आपको बताऊं, जैसे एकदम से पानी चढ़ के आता है, बादल आते हैं, बादल छाते हैं, और मतलब ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं आती है और एकदम से बरसात शुरू हो जाती है, उसके बाद में जब इंद्रधनुष निकलता है तो ये जब नजारा होता है ना, तब देखने लायक होता है।
2: आप ये बताइए कि बरसात के मौसम भीगते हैं, नहाते हैं?
3: जी बिल्कुल, हम खेत में काम करने जाते हैं ना, तो जब अगर एकदम से बारिश आ जाती है तो भीग कर ही आते हैं खेत से।
2: नहीं, वो तो एकदम से बारिश आ जाती है, कभी नहाने के लिए निकले घर से कि चलो बारिश हो रही है नहाते हैं आज?
3: जी ऐसा तो होता है, लेकिन बट बहुत कम होता है।
2: अच्छा,
3: जैसे क्या होता है, दिन का समय होता है ना, तो वैसे तो हम बाहर ही रहते हैं दिन में, लेकिन जब अगर ऐसे शाम के समय बरसात आती है तो फिर नहाने का मन तो करता ही करता है।
2: चलिए, कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मुझे। आप मुझे ये बताइए कि गाना कौन सुनना चाह रहे हैं आप?
3: जी बताऊं, अब मदर्स डे है ना आज,
2: कल
3: तो
2: है
3: उसके, जी हाँ जी सॉरी कल है, तो उसके उपलक्ष्य में मुझे गाना सुनना है बेटा फिल्म का, आज मेरी माँ ने मुझे बेटा कह के बुलाया है, खुशियों का दिन आया है।
2: क्या बात है, और किसे सुनाना चाह रहे हैं आप ये?
3: जी हमारे दोस्त हैं भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम यादव, आशुतोष सजना, संगीता जी, और कानपुर से पूनम जी।
2: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन गाने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए।
3: जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
2: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
3: FM रेनबो का मैं नियमित होता हूँ और कॉल लगा के बात भी करता हूँ, और मतलब यहाँ पे जो जितने भी कॉलर लगाते हैं ना कॉल, उनकी बातें बड़ी अच्छी होती है सभी की।
2: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 100.7 FM रेनबो पर, हमारे दूसरा नंबर है 0522 2238 845। जिन दोस्तों का कॉल नहीं लग रहा है वो आप मेल भी कर सकते हैं FM रेनबो ये मेल आईडी पर। आप हमें कल 9 बजे, हेल्पलाइन नंबर है fmrainbowhelpline@gmail.com, इस पर आप हमें अपने बागवानी से जुड़े बातें भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आईडी है जिस पे आप भेजेंगे वो है fmakashwani@gmail.com। आइए गाना एंजॉय करते हैं, आप सुन रहे हैं हेलो FM आज विनय के साथ।

और दोस्तों इसी बीच हमारे पास मेल्स भी आ रहे हैं, अनिल पांडे जी ने हमें मेल किया है और वो हमें एक हिदायत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए और आपकी इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ गुलफ्सा सिद्दीकी ने हमें मेल किया है और वो कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, ये गुलफ्सा सिद्दीकी हैं संडीला से, हमें ये सुन रही है। साथ ही साथ इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ इन्होंने हमारी तारीफ

किए कि हम कॉलर से अच्छे से बात कर रहे हैं। वैसे हमारे सारे लिसनर्स ही बड़े अच्छे हैं, तो उनसे तो अच्छे से बात करना बनता ही है और बड़े प्यार से बात करें। जैसे उज्जैन से अभी एक साहब ने बात की, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि उनसे हम बात ना करें और हम फोन रखें या गाना बजाएं, सही बताएं। और अब 7:18 हुए हैं, अभी थोड़ी देर में 19 मिनट हो जाएंगे। 7:00

और दोस्तों इसी बीच हमारे पास मेल्स भी आ रहे हैं, अनिल पांडे जिन्हें हमें मेल किया है और वो हमें एक हिदायत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए और आपकी इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ गुलफ्सा सिद्दीकी ने हमें मेल किया है और वो कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, ये गुलफ्सा सिद्दीकी हैं संडीला से, हमें ये सुन रही है। साथ ही साथ इन्हें प्रोग्राम अच्छे लग रहा है और साथ ही साथ इन्होंने हमारी तारीफ की है कि हम कॉलर से अच्छे से बात कर रहे हैं। वैसे हमारे सारे लिसनर्स ही बड़े अच्छे हैं तो उनसे तो अच्छे से बात करना बनता ही है और बड़े प्यार से बात करें। जैसे उज्जैन से अभी एक साहब ने बात की, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि उनसे हम बात ना करें और हम फ़ोन रखें या गाना बजाएं, सही बताएं। और अब 7:18 हुए हैं, अभी थोड़ी देर में 19 मिनट हो जाएंगे। 7:20

0: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
0: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी बानिया सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय थीम बेस्ड कार्यक्रम है। जो आज का जो दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। पेश है

0: एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीम लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित 4 विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
2: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
0: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
3: हमारा केसीसी का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000 रुपए अभी दिया जा रहा है। 50,000 रुपए के लिए हमको समय मिला है 2 महीने का, हम दे देंगे।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फरुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। आईटीएफ जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने आज आईटीएफ जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न।

0: कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर एक बार फिर से आपका दोस्त विनय हाजिर है लेकर प्रोग्राम हेलो FM। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप हमसे बात करते हैं और हम आपके फेवरेट गाने सुनाते हैं, आपके पसंद के गाने आपको सुनाते हैं। हमारे दो नंबर हैं 0522-2238-852 और दूसरा नंबर है 0522-2238-845। साथ ही साथ हमारे दोस्त हमें मेल भी कर रहे हैं जिनका फोन नहीं लग रहा है, और हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। हमारी एक प्यारी सी लिसनर बहुत देर से इंतजार कर रही है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है?
5: जी मैं निशा अंसारी, जिला बाराबंकी से बोल रही
4: हूँ। जी बाराबंकी से निशा अंसारी जी,
5: सर कैसे हैं आप?
4: मैं बहुत जबरदस्त हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
5: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात हो गई और अच्छे
4: से। हाँ आपने बहुत इंतजार किया हमसे बात करने के लिए।
5: जी हाँ, एक घंटे का होता है, गति पे एक घंटे इंतजार कर लेते हूँ।
4: अरे वाह, इतना आप हमारे FM को प्यार करते हैं।
5: जी हम बहुत चाहते हैं FM को।
4: आप हमें ये बताइए कि बाराबंकी में ऐसी कौन सी फेमस जगह है जहाँ बहुत घूमने जाती हैं?
5: जी अभी तो नहीं गए, लेकिन देवा मेला,
4: देवा शरीफ का मेला जो लगता है देवा में, हाँ वहाँ मैं भी नहीं गया और मेरा भी बड़ा मन है जाने का।
5: जी हाँ भी नहीं गए हैं, दिल करता है जाने का।
4: तो इस बार जब मेला लगेगा तो हम साथ में चलेंगे, क्यों? अरे आपने बोला जी, तो अभी कहाँ मेला लगा है? जब मेला लगेगा तब चलेंगे, अभी कहाँ मेला लगा हुआ?
5: आप वहाँ से आएंगे, हम जाते हैं।
4: वही वही तो हम कह ही रहे हैं, हम लखनऊ से आएंगे, आप बाराबंकी से, और फिर हम साथ में चलेंगे। आप हमें बताइए कि एक बहुत बेहतरीन गाने की फरमाइश आपने की है, वो गाना कौन सा है?
5: मूवी है जानम समझा करो।
4: और बोल है लव हुआ। जी आप में बताइए किसे सुनाना चाह रहे हैं गाना जिससे आपको लव हुआ?
5: रेडियो को सुनाना चाहते।
4: क्या बात है, वाह वाह, ये अच्छा आपने जवाब दिया कि आप रेडियो से प्यार करती हैं। और किसे सुनाना चाह रहे हैं, नाम को लेना चाह रहे हैं आप?
5: लेना चाहते आपको, आपकी पूरी टीम को, आपकी नीति है उनको, गुलाबसा सिद्दीकी है, संडीला से
4: जी,
5: अंसारी है, सानिया अंसारी और रुकाना अंसारी है, जितने लोग सुन ले सभी को।
4: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे नाम लिए और हमें, हमारे सारे जो RJs को भी आपने डेडिकेट किया, और प्रीति जी खास आपके लिए भी है ना, तो
5: प्रीति मैम
4: जी,
5: प्रीति मैम आई है क्या?
4: नहीं मतलब हमने ऑन एयर बोल दिया, जरूर सुन रही होंगी वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच इतना समय निकालने के लिए। चलिए हम सब ये गाना एंजॉय करते हैं, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: तो आइए अपने एक दोस्त से हम बात करते हैं, और ये फैज साहब हैं, हमारे रेगुलर लिस्नर हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी बताइए।
1: सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम। जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा बाराबंकी से बात कर रहे हैं सर।
0: हाँ हाँ जी जी जी, आपकी दुकान है ना सब्जी और फल की?
1: जी सर, मेरी सब्जी और फल की दुकान है। कई मर्तबा आपको मैंने बुलाया अपने गांव, आप नहीं आए सर, ये बात गलत है।
0: अब दिल से नहीं बुलाया भाई, ऐसे कहते हैं आप सिर्फ।
1: जी नहीं सर, ये मत कहते, मेरे दिल ही से बुलाते हैं सर।
0: चलिए आप हमें ना मेल करिएगा अपना एड्रेस, हम आएंगे आपके, है ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ आवाज आई, बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: जी सर, हम गाना सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा, गाने के बोले हैं, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। ये वाला सब है सर।
0: क्या बात है, इसी गा गा के सब्जी बेचते होंगे, है ना आप?
1: जी जी सर।
0: और किसे सुनाना चाह रहे हैं आप?
1: जी, सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजी विनय भैया हैं, जो इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं उनको।
0: अच्छा।
1: मोहम्मद जावेद अख्तर भाई है, मोहम्मद आसिफ भाई हैदराबाद तेलंगाना से हैं, और रिंकी पिंकी है, समा परवीना पे गुलाब साहब हैं, साइबान सारी हैं, साबियान सारी हैं, यासर अंजीत भाई हैं, तालिब भाई हैं, जमील

0: देखिए सारे नाम हमने सुने लेकिन ऑन एयर नहीं गए, इतना धीरे आप बोल रहे थे।
1: नहीं सर, हेलो।
0: हाँ हाँ, अब आए आप, पता नहीं फोन से कहाँ चले जा रहे हैं आप।
1: जी नहीं सर, आवाज सर, आवाज
0: आवाज पूरी आ रही है। चलिए हम सब मिलकर ये गाना सुनते हैं। थैंक यू सो मच।
1: हेलो
0: जी। हाँ,
1: मैं मतलब कुछ लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ सर।
0: हाँ, नाम सुन लिया मैंने, बहुत सारे रिंकी पिंकी और सबका नाम लिया आपने।
1: जी एक बार फिर ले लो, अगर सब लोग नहीं सुने तो।
0: चलिए ले लीजिए, आपको मौका दिया।
1: सबसे पहले मोहम्मद जावेद अख्तर भाई, मोहम्मद आसिफ भाई हैदराबाद तेलंगाना से, रिंकी पिंग के समा परवीन आप, गुलाब साहब भी, सादिया अंसारी, यासिर हमीद भाई हैं, तालिब भाई हैं और बाबू अंसारी भाई हैं, जमीर गुंटी वाले सुरभि सिंह हैं सर।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू।

और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन गाना हमें सुनने को मिला, और फैज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इतने बेहतरीन गाने के लिए, मुझे भी बहुत पसंद है। अब आइए मेल्स की ओर बढ़ते हैं, हमारे एक प्यारे से लिसनर वेट कर रहे हैं, पर मेल्स बहुत सारे हैं, इन्हें पढ़ना तो बनता है। और हमारे वकील अहमद साहब ने हमें मेल किया है, वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि आवाज़ इन्हें अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब जी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि अच्छा, इन्होंने खुदा गवाह वकील अहमद मंसूरी कटरा हथुरी ब्लॉक हरगांव जिला सीतापुर, और साहिबा अंसारी, रजिया अंसारी, परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, सबका नाम लिखा है इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया और हमने आपका मेल पढ़ दिया है। और साथ ही साथ और इसके बाद हमें मेल आया है, ये है सत्यमपाल जी। सत्यमपाल जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें दो मेल भेजे हैं, और एक मेल में सिर्फ नाम है, दूसरे में लिखा है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ओके इन्होंने भी हमें एक हिदायत दी है जी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। साथ ही साथ हमें अर्पित शर्मा ने मेल किया है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, फोन लग नहीं रहा है, सोचा मेल ही कर दूं, म्यूजिकल प्रोग्राम्स और मनोरंजन और मज़ेदार होते हैं, साथ ही आपका शानदार एंकरिंग, अच्छा ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें मेल किया। कुछ इन्होंने नाम भी लिखे हैं, टी आर शर्मा, अर्पित, तोशिका और निर्मला, और फ्रॉम ये शायद कुछ लिखने चाह रहे थे पर वो हो नहीं पाए, लिखा नहीं पूरा। साथ ही साथ एक और बहुत ही प्यारा सा मेल है, ये है अनुष्का गुप्ता, गुड इवनिंग कह रही हैं अनुष्का, ये जलालाबाद यूपी से काफ़ी टाइम बाद मैसेज कर रही हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है, और कहती हैं माँ के लिए कुछ संदेश देना चाहती हूँ, आप ज़रूर पढ़िएगा, और पूरी फैमिली की तरफ से बहुत सारा प्यार एफएम रेडियो को। लिखती हैं कि क्या लिखूं मैं माँ पर, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, माँ वो है जिसने मेरे गुनाहों को भी नज़रअंदाज किया, उनसे मिली हर सीख जिंदगी सवार देती है, माँ के सपनों को पूरा करना ही असली जीत है, दुनिया की हर माँ को सलाम, उनका संघर्ष प्यार असीमित है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ माँ होती है। मोनू भैया ने हमें मेल किया है, पूछ रहे हैं कैसन है हम, बहुत ज़बरदस्त हैं। इंद्रपाल जी ने भी हमें मेल किया है, फ़ोन नहीं लग रहा है, हमने आपका मेल शामिल कर लिया है, ये हमें ग्राम अमृता सीतापुर से मेल कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें मोनू सेठ जी ने दूसरा मेल किया है, और अच्छा इन्होंने एक फिल्म का नाम लिखा है, और आइए आकाश कुमार जी का मेल है, आकाश वर्मा है, ग्राम मुरारपुर रेलवे स्टेशन दरियाबाद जिला बाराबंकी से संदेश भेज रहे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, और इन्होंने लिखा है कि कई दिनों बाद ये कार्यक्रम में मैसेज कर रहे हैं, सभी मित्रों के साथ बैठकर कार्यक्रम सुन रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, और सबको नमस्ते बोल दीजिए, जिसमें मैं कुछ नाम भी लिख रहा हूँ, ओके उन्हें भी शामिल कर लीजिएगा, नाम कुछ यूं है कि अर्जुन यादव, अंशु शर्मा, सचिन रावत, सत्यम भास्कर, विकास, सुनील, सभी ये सभी मित्र, अच्छा इन ये सभी मुझे नमस्ते कर रहे हैं, हमने इन्हें नमस्ते कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने गाने की फरमाइश की, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका गाना लें। और रामराज जी ने हमें मेल किया है, श्री गणेशाय नमः, जिला रायबरी से मेल कर रहे हैं, और इन्होंने भी कुछ नाम लिखे हैं, राजा राम, राजू भान, पप्पू पासी, मनीष, निर्जा, मिर्जा, इमरान बेग, रिजवान भाई, सबका नाम लिखा है। और अशोक कुमार जी ने हमें मेल किया है, और ये अशोक राज हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, रायपुर, उडारा, मितौली, लखीमपुर खीरी से इन्होंने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। जिशान खान ने गुड इवनिंग कहा है, बोल रहे हैं विनय भाई, आई एम जिशान खान, सनीला से, आप प्रोग्राम अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने

0: नहीं लग रही, इसलिए इन्होंने मेल कर दिया है। और हमारे एक लिसनर हैं सत्यम जी, जिन्होंने हमसे बात करने के लिए फोन किया लेकिन बड़े प्यार से कहा कि हम कल बात कर चुके हैं इसलिए हम ऑन एयर नहीं होंगे। कैसरगंज बहराइच से इन्होंने हमें मेल किया, इन्होंने फोन किया था और हमारे एक लिसनर हैं, वेट कर रहे हैं हमारे हमसे बात करने के लिए, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार विनय सर।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं
1: जी? देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं सर।
0: जी बाबू अंसारी जी, कैसे हैं आप?
1: जी सर, हम बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं?
0: हम बहुत बढ़िया हैं। और हमने आपसे पूछा ना कि आपने एक गाना फरमाइश की है, दिल दीवाना ढूंढता है एक हसीन लड़की।
1: जी, कुमार सानू जी की आवाज में और अलका याग्निक की आवाज।
0: क्या बात है। यस यस, आपको यानी पसंद है बहुत।
1: जी जी जी।
0: हाँ, तो आप भी ढूंढ रहे हैं आई थिंक किसी को। अब मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाने के लिए कहा जाए, मान लेते हैं कि आपको हम एक टिकट देते हैं स्विट्जरलैंड की, मान लेते हैं दो टिकट देंगे, है ना, तो आप किसे ले जाएंगे?
1: किसे ले जाएंगे सर?
0: अपने साथ।
1: अपने साथ सर, मैं जो है अपने चचा को ले जाऊंगा साथ में अपने।
0: अच्छा, चचा, चचा जी का क्या नाम है?
1: मुनान अंसारी नाम है सर।
0: तो चचा जी को
1: के साथ में जाता हूँ जगह घूमने के लिए।
0: क्या बात है, चचा भतीजे की जोड़ी यानी हिट है
1: जी।
0: चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है कि ऐसी भी एक जोड़ी है जो साथ घूमने निकलती है। अब मुझे ये बताइए कि जो गाना आप पहले तो अपने चचा जी को सुनाना चाहते हैं, आई एम श्योर, उसके बाद कुछ नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी सर।
0: जी बताइए।
1: सबसे पहले सर आपको डेडिकेट करते हैं सर।
0: थैंक यू।
1: और मोहम्मद फैज अंसारी रामपुर कटरा से, कुलदीप गुप्ता जी उधौली बाराबंकी से, सुरभि सिंह है सीतापुर से, और श्री प्रकाश तिवारी जी हरिकेश जी हैं, और साहिबा अंसारी जी हैं, और समा परवीन अंसारी जी हैं।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर। सर जरा से हमारे भाई फुरकान से बात कर लीजिए जरा से।
0: अब हमने गाना बजा दिया है, जल्दी से बताइए। हेलो, कैसे हैं आप?
2: सर नमस्ते।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है।
0: चलिए आपसे
2: बहुत मस्त चल रहा है।
0: चलिए, थैंक यू सो मच। आइए हम सब मिलकर ये गाना सुनते हैं एक रिश्ता फिल्म से। थैंक यू।

0: और दोस्तों उस घड़ी बहुत तेजी से आगे भाग रही है, 7:54 हो चले हैं। आइए हम कुछ मेल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे मेल्स हैं। अमन नवाब जी ने हमें गुड इवनिंग कहा है संडीला से, ये हमें मेल करती हैं और ये लिखे हैं दो विनय एक ही दिन। जी ये आपने नोटिस किया, गुड। विनय यादव जी आए थे दिन में और आज शाम में विनय। और साथ ही साथ छबी राम जी ने हमें मेल किया है और ये हमें छबी राम जी राजपूत छबी, ये इन्होंने एड्रेस नहीं लिखा है। साथ ही साथ राधे श्याम जी ने मेल किया है, गुड इवनिंग कह रहे हैं और कैसरगंज आए हैं। मैं आपको कैसरगंज के फेमस नदरई का पुल, अच्छा ओके जी जी जी जी, हमें बताइएगा कि मुझे किधर आना है घूमने के लिए। यास्मीन बानो जी ने हमें मेल किया है, गुड इवनिंग कह रही है, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इन्हें। ये हमें सीतापुर से मेल कर रही हैं। शुभम, काजल अवस्थी, सनीला, ये सभी हमें सुन रहे हैं। साथ ही साथ सुनील कुमार जी ने हमें मेल कर रहे हैं और भी बड़े सारे लोग हमें मेल कर रहे हैं, तो हम बस नाम लेंगे। और हमारे एक लिसनर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हैं सिमरन सौरांजलि ने हमें मेल किया है, शैलेश कुमार ने हमें मेल किया है, पिंकू सोनी, मनोज विश्वकर्मा जी ने मेल किया है। और आइए हम अपने लिसनर से बात करते हैं जो हमें फ़ोन पे जिनसे हमारी बात होने वाली है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ कौन सा बोल रहे हैं जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मेरा नाम है गुलाब कश्यप।
0: जी बताइए कैसे हैं आप?
1: सर बिल्कुल ठीक हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सर रामपुर राय जिला उन्नाव से।
0: ये तो पास में हमारे है ना।
1: जी सर,
0: आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है खाने में?
1: खाने में
0: जल्दी बोलिए, समय नहीं हमारे पास, 57 होने वाला है, इतना सोचना पड़ रहा
1: है। करेला की सब्जी बहुत,
0: क्या बात है, करेला बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, आपको पसंद है?
1: हाँ सर बहुत ज्यादा ही।
0: चलिए आप मुझे गाना बताइए कि सुनाना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे फोन रखना पड़ेगा।
1: सर गाना सर खास कर सर आपको डेडिकेट है और सर कल मदर्स डे के अवसर पर सर मैं माँ को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: थैंक यू सो मच फोन करने के लिए, क्योंकि समय नहीं है, हम बहुत बात नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी गीत के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को, किसी रोज आपसे फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल बागची की पीठ ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया है कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल RN रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रदेश में गुरूवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। मिर्जापुर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिजनौर, इटावा, पीलीभीत में भी मीडियाकर्मियों और लोगों को स्वजनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। कई जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का 2रा चरण आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित होगा।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, आदाब, तहे दिल से इस्तकबाल आपका आबशार में 8:05:33। मैं हूं आपकी मेजबान समरीन। आज की इस खूबसूरत महफिल की शुरुआत उस एहसास के साथ जो हमसे शुरुआत से जुड़ता है, जब हमारी जिंदगी का आगाज हुआ होता है, वो पहली लोरी, वो पहली दुआ और वो पहला सहारा और हमारी सबकी पहली मोहब्बत यानी माँ। इस पर एक बड़ा खूबसूरत सा शेर मुनव्वराना ने कहा है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। दोस्तों, बचपन की वो रातें जब माँ की गोद दुनिया की सबसे महफूज कोना लगती थी और वही हिफाजत हम आज भी ढूंढते हैं हर रिश्ते में, जब उनकी उंगलियां पकड़कर हम हर डर से पीछा छुड़ा लेते थे, बड़े से बड़ा डर छोटा लगने लगता था, जब उनकी आवाज में एक जादू हुआ करता था जिसकी तलाश आज भी जारी है। आज की हमारी पहली गजल उस ममता के नाम, उस अपनेपन के नाम और उस बेपनाह मोहब्बत के नाम जो बिना किसी शर्त के बस देना जानती है। यकीनन मदर्स डे कल है और जैसा कि हम कहते हैं कि इसके लिए कोई एक दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बेलॉस मोहब्बत के लिए शायद पूरी जिंदगी जो है वो कम पड़ जाए। शुरुआत करते हैं जावेद अख्तर की लिखी हुई और जगजीत सिंह की गाई हुई इस बेहद हसीन गजल के साथ। प्रोग्राम आबशार में मैं समरीन एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ।

इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे माजी की मीठी यादें तपती धूप में फुहारों जैसी हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जो खत्म होकर भी दूर नहीं जाते। दिल उन्हीं के नाम से हमेशा धड़कता रहता है। जब जुदाई का दर्द अल्फाज बनता है तो गजल बनकर सदियों तक दिल में उतर जाता है। आज की इस महफिल में अगली गजल है शहनशाह गजल मेहंदी हसन की, जिसमें शिकायत भी है, मोहब्बत भी है, रुखसती भी है और एक गहरा यकीन भी। ये सिर्फ एक गजल नहीं बल्कि टूटते रिश्ते के बीच हुई मोहब्बत की आखिरी आवाज है। तो आइए अपने जज्बात को थोड़ा खामोश करते हैं और दिल को सुनते हैं, क्योंकि अब सुरों की बारिश में उतर रही है एक ऐसी गजल जो सुनने वाले की रूह तक यकीनन जाएगी। मेहंदी हसन साहब की आवाज में ये गजल।

किताबों में तो अचानक से हुई मोहब्बत और पहली नज़र की मोहब्बत का जिक्र अक्सर होता है और गानों में भी होता है, गज़लों में भी होता है, लेकिन आप का दिल किसी की तरफ धीरे धीरे रागिब होता है और धीरे ही धीरे ये जज्बात रूह में उतरते चले जाते हैं। एक मुस्कान से शुरू हुआ इश्क कब आपकी जिंदगी बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और फिर एक दिन एहसास होता है कि जिसे हम देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जिसे देखकर जिंदगी शादाब हो जाती है, अब वो मेरी पूरी कायनात बन चुका है। और इसी खूबसूरत कैफियत को अपनी आवाज में अमर किया है शहनशाह गजल। एक बार फिर से मेहंदी हसन साहब की अगली गजल आप सुनेंगे, खूबसूरत एहसास, जिसमें शख्स धीरे धीरे हमारी तन्हाइयों में, हमारी रूह में बस जाता है, फिर हमारी बातों में उतर जाता है और फिर धड़कनों का हिस्सा बन जाता है। गजल तो आप समझ ही चुके होंगे। इस गजल में मोहब्बत के उसी सफर की कहानी है जहां इश्क शोर नहीं करता, बस खामोशी से दिल में घर बना लेता है। इस सुरीली शाम में कुछ पल मोहब्बत की उस नर्म बारिश में भीगते हैं जहां आपके दिल में इसके हर मिसरे से आप वो मोहब्बत की पहली खुशबू को महसूस कर सकेंगे।

वक्त की गुजर जाने का, साथी के बिछड़ जाने का डर हम सबको सताता है। और इस पे एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराकदारी है। और यही तकलीफ, यही उलझन आपने महसूस किया होगा फरीदा खानम की अभी जो आपने गजल की उसमें। कुछ ऐसे दर्द होते हैं दोस्तों जिसे हम दुनिया से छुपाना चाहते हैं, मगर दिल के कोने में वो अपनी शिद्दत बनाए रखते हैं। चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं, महफिलें सजी होती हैं, लेकिन रूह किसी कोने में एक खामोश उदासी लिए अपनी जगह पर मौजूद रहती।

और जब ये उदासी अल्फाज बनती है तो ऐसी गजलें जन्म लेती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आपकी रूह को या तो तस्कीन देती हैं या माजी की तकलीफ। अगली गजल गुलाम अली की आवाज में आप सुनेंगे, जिसमें पहले ही मिसरे में आपको पूरी जिंदगी की थकान महसूस होगी, किसी के बिछड़ने की कसक होगी तो कुछ अधूरे रिश्तों की चुभन होगी, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब वक्त भी नहीं दे पाता। अपने इन्हीं जज्बात को आवाज देती हमारी ये गजल आपके रेडियो सेट पर, ये रही गुलाम अली की आवाज में।

0: 8:42:19 और हर बार की तरह आबशार से इस गजलों भरी महफिल से मैं आपकी दोस्त समरीन आपसे लेती हूँ इजाजत। 9 बजे आपसे रेनबो कैफे में एक बार फिर से मुलाकात होगी, जहाँ होंगे आपके प्यार भरे मेल्स, कुछ बेहतरीन गाने और होंगी आपसे बातें। फिलहाल रेनबो कैफे से मुझे दीजिए इजाज़त। अभी एक आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली से प्रसारण में।
1: मैंने अदाकारा की हैसियत से अपनी सलाहियतों को जाहिर

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो

0: विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा।

में भी चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना

0: हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

9:42 आप है अपनी दोस्त समरीन के साथ, प्रोग्राम चल रहा है रेनबो कैफे और आपके मेल्स का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल मदर्स डे है तो आज अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी माँ से तो आप ज़रूर हमारे साथ मेल के ज़रिए से शेयर करिए। और फिलहाल बाबू अंसारी लिखते हैं कि समरीन जी अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और हम सभी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। एक मेल जो रह गया है शैलेश जी, नीलू शर्मा रूपपुर दिल्ली से लिखती हैं, बाद मुद्दत के उनको ख्वाब में देखकर यूं लगा जैसे बेताब दिल को करार आ गया, आरजू के गुल मुस्कुराने लगे जैसे गुलशन में जाने बहार आ गया। समरीन दी को मेरा सलाम, 7:58 पर मैंने आपको दिल से याद किया और 8 बजे आपकी आवाज़ भी सुनने को मिल गई। सारा पीहू रोशनी बबीता वंदना मनु सोनी को मेरा नमस्कार बोल दीजिए। तो जब आपने 7:58 पर मेरा ख्याल किया और 8 बजे मैं आपको सुनने को मिल गई तो आपने ये नहीं सोचा कि काश कुछ और मांग लिया होता? ऐसा अक्सर होता है। आगे बाबू अंसारी जी का तो मेल मैं पढ़ चुकी हूँ। कोमल तिवारी लिखती हैं, आप प्रोग्राम धमाकेदार करती हैं हमेशा, शुक्रिया कोमल। बहराइच से इन्होंने हमें मेल किया है। अच्छा एक नाम था मोनू जी, आपने मेल 2 बार किया है लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि आपने मेल कहाँ से किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझे मेल भेज रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में ही डालिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अर्पित शर्मा अनमोल लिखती हैं, शुभ संध्या मेम साहब, आपकी शहद जैसी आवाज़ के साथ शानदार म्यूजिक ट्रैक बड़ा मज़ा आ रहा है, कसम से फुल इंटरटेनमेंट, बहुत शुक्रिया। टी आर शर्मा, निर्मला, अर्पित शर्मा, तेशिका शर्मा बलोत्रा राजस्थान होडू से इन्होंने हमें मेल किया है, बहुत शुक्रिया अर्पित जी। और जीशान खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम समरीन अप्पी, आई एम जीशान खान संडीले से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी वाइफ गुलफशा सिद्दीकी दोनों इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आप सऊदी से आ गए हैं संडीला, वाह वेरी नाइस, आप दोनों साथ बैठ के ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। नेक्स्ट मेल अरविंद कुमार दुबे लिखते हैं, नमस्कार FM रेनबो लखनऊ, समरीन मैम आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी हंसी अच्छी लगती है, ईमेल ढूंढकर हर किसी को शामिल करना एक कठिन काम है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मेल हमेशा शामिल हो जाता है। हम सभी रेनबो लखनऊ के सारे प्रोग्राम्स का आनंद लेते हैं। अरविंद दुबे, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। देखिए जिस चीज़ को आप शिद्दत से करते हैं वो आपको ये कायनात देती है। अभी किसी ने मुझे लिखा, नीलू ने लिखा कि 7:58 पे उन्होंने याद किया और मैं 8 बजे जो है मुसल्लत उनके सर पे। तो आप भी जो भी चाहें आपको जरूर मिलता है, बस शिद्दत होनी चाहिए। सुधांशु लिखते हैं, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। मैं लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र हूं और मुझे समाज शास्त्र विषय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपको मेहनत और आपका हौसला ही आपकी सफलता का रास्ता तय करता है, इसलिए खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। आई टोटली अग्री सुधांशु, अक्सर हमारी जिंदगी में बहुत टफ फेजेस आते हैं जब लगता है कि आप टूट गए हैं और ये बोझ जो है वो जिंदगी का बढ़ता जा रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और आपको लगता है ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बिलीव मी कि ये फेज़ है और ये फेज़ गुजर जाएगा। आपको बस शिद्दत से अपना काम करते रहना है और ये मान के चलना है कि बस जो भी है ये वक्ती है, चाहे खुशी हो या गम, ये आपको बहुत मोटिवेट करता है। एमन आ गई हैं, लिखती हैं, हाय डियर समरीन अप्पी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एमन, और आपका मेल आते ही मैं और भी अच्छी हो गई हूँ। लिखती हैं, आपको मुझसे शिकायत रहती है कि एमन देर से आती है इसलिए आज मैं जल्दी आ गई, ये मेरी माँ के लिए है। आसमा अनंत है, बिल्कुल मेरी मम्मा के प्यार की तरह, हैप्पी मदर्स डे मम्मा। मुझे पता है मम्मा दिखाई नहीं देती पर वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, उनका प्यार उनका स्पर्श मैं हमेशा महसूस करती हूँ। आई लव यू मम्मा, एमन नवाब संडीला। इसमें कोई शक नहीं कि माँ लव्ज़ आते ही आप इमोशनल हो जाते हैं और ये ऐसा लव्ज़ है जो हमारी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत होता है। इस पर मुनव्वर राना का बहुत खूबसूरत शेर है, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ

दुआएं साथ चलती हैं। इसी के अलावा जो दूसरा मेरा बहुत पसंदीदा शेर है वो है कि इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और ये माँ लव्स अपने आप में प्यार से भरा हुआ छोटा सा शब्द है जो आपकी पूरी जिंदगी, पूरी कायनात हो जाता है, ये आपका वजूद है। तो एमन, ढेर सारा प्यार आपको मेरी तरफ से। आनंद तिवारी लिखते हैं, मौसम बदल रहा है, सब अपना अपना ख्याल रखें। सुना है बदलता मौसम और बदलते लोग बहुत तकलीफदेह होते हैं, पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का। फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। आनंद तिवारी, दारुकोया, मल्लावा, हरदोई, यूपी। और लिखते हैं कि जबरदस्त प्रोग्राम आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से जब बात होती है ना तो खुद हमें भी हौसला मिलता है और लगता है कि जिंदगी की इस तपती धूप में आपके ये जो प्यार है, ये जो मेल्स हैं जो हम तक पहुंचते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें भी बहुत हौसला देते हैं। महेंद्र दीपान लिखते हैं, आदरणीय समरीन मैम जी, चरण स्पर्श आपके हिसाब से पढ़ लीजिएगा, अपनी दोनों बहनों का नाम जरूर ले लीजिएगा, बबीता राव जी गुसाईगंज और रोशनी रावत जी। और इन्होंने बहुत प्यारा सा मुझे एक पोस्ट कार्ड बना के भेजा है और बाकायदा उसमें लिखा है, लिखते हैं कि रेनबो कैफे सिर्फ एक शो नहीं, एहसास है। आपकी आवाज में वो जादू है जो दिल को छू जाता है, आपकी बातों में वो अपनापन है जो हर श्रोता को अपना बना लेता है। आपकी शानदार प्रस्तुति, मधुर आवाज और बेहतरीन अंदाज के कारण रेनबो कैफे न सिर्फ एक रेडियो शो बल्कि हमारे दिन की खूबसूरत शुरुआत बन जाता है। आप यूं ही हमारे दिलों में मुस्कान, ऊर्जा और उमंग भरती रहें। आपकी हर बात हमें प्रेरित करती है, आपकी हर झलक हमें मंत्रमुग्ध करती है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, और मैं वाकई अभिभूत हुई आपके इस मेल से। और अतुल कुमार यादव लिखते हैं, हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। माँ तो माँ होती है, इसलिए जो भी कहें कम है। सभी माताओं को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। ग्राम खोरेता खैराबाद सीतापुर से इन्होंने हमें मेल किया है, और बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन चूंकि ये रेनबो कैफे है तो यहाँ सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि बेहतरीन म्यूजिक भी लगातार इंतजार कर रहा होता है आपके रेडियो सेट पर। ये रहा

बैंड ऑफ बॉयज, एक ऐसा वक्त था जब आपको जब म्यूजिक का मजा लेना होता था. बैंड ऑफ बॉयज, सनम बैंड, ये सारे ऐसे म्यूजिकल बैंड्स होते थे जिनके बिना ना म्यूजिक अधूरी लगती थी. और हमारे टाइम पे तो जो एल्बम था उसका अलग ही लुत्फ था. हालांकि अब क्या एल्बम का कल्चर थोड़ा सा कम हुआ है कंपैरेटिवली, बट फिर भी जो प्राइवेट एल्बम्स होते थे बहुत खूबसूरत होते थे. आइए बढ़ते हैं और शामिल करते हैं उन मेल्स को जो बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं. अच्छा फरमाइश आई है कुछ नो अपनी रीजनल लैंग्वेज का भी हम गाना सुना दें जरूर. अच्छा जीशान लिखते हैं, नहीं समरीन अपी, मैं अभी भी सऊदी में ही हूँ और यहीं से सुन रहा हूँ. गुलफशा संडीले से सुन रही है और मैं यहाँ खाना बनाते हुए ये गाना सुन रहा हूँ. अरे वाह. और अफजल लिखते हैं, मेरा कुछ गुनाहों की सजा भी साथ, अच्छा मेरे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है. मैं जब भी घर से निकलता हूँ अम्मी की दुआ साथ चलती है. बहुत ही खूबसूरत शेर अफजल जी. सीतापुर इमाल या सुल्तानपुर फर्राकपुर से इन्होंने हमें मेल किया है. रामराज लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः. पॉप टाइम, जरा रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, पप्पू और मनीष, नीरज मिर्जा रिजवान भाई आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है जब आप ईमेल पढ़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है. हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार. बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी. रमाकांत लिखते हैं, गुड इवनिंग डियर मैम जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन. कुमुद नाम काफी दिनों से नहीं आ रही है, क्यों? रमाकांत सिंह, ग्राम मदनपुर, जिला लखीमपुर खीरी से. सोनू जी लिखते हैं, आज रोटी के पीछे भागता हूं तो याद आती है माँ. रोटी खिलाने के लिए माँ मेरे पीछे भागती थी, बस यादें. अब मेरी माँ मेरे पास नहीं है, जो है वो है यादें. और सोनू जी, एक खास बात यह है कि वो यादें बहुत खूबसूरत हैं. हम रह रहकर उन यादों में जाते हैं, उस पल को जीते हैं और फिर आज की जिंदगी में वापस आते हैं जहां हमारे बहुत सारे फराइज हैं या तो हम माँ बाप बन चुके हैं. तो यकीनन वो पल जो हमने अपनी माँ के साथ गुजारे थे उन्हें हम चेरिश करते हैं, याद करते हैं और वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारी

जिंदगी में काम करते हैं। वैभव प्रकाश सिंह लिखते हैं, गर्मा गर्म राम राम इसलिए भेजा है आपको कि आप लोगों से हमें बहुत जलन हो रही है, आपके उधर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और नागपुर में बहुत गर्मी पड़ रही है और इसी गर्मी में ट्रेन चला है, लोगों को मंजिल मंजिल तक पहुंचता रहे, बस आपके प्यारे प्यारे मेल्स और गानों से ठंडक पहुंच रही है, इसलिए दोबारा से मेल किया है। वैभव बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से मेल करने के लिए और बात का जवाब देने के लिए। और देखिए जल्दी आपकी तरफ भी मौसम बेहतर होगा, हालांकि जिस लिहाज से बारिश हो रही है ये भी अच्छा नहीं है, जिस वक्त पे जो चीज़ हो वो बेहतर होती है, ये वक्त नहीं है कि इस वक्त पे बारिश हो, क्लाइमेट चेंज का असर सब तरफ दिखाई पड़ रहा है। रेणु देवी लिखती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने परिवार के साथ सुन रही हूँ, राम सेवक, रेणु, आयुषी, उषा, नीतू, गुड इवनिंग समरिंदी, हसनपुर और रास उन्नाव से इन्होंने हमें मेल भेजा है, बहुत शुक्रिया रेणु जी। आंचल सेठ लिखती हैं कि बेपना मोहब्बत माने की बाप ने भी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन कंधों पर कभी सवारी की थी उन कंधों को भुलाते लोगों को भी देखा है, जीते जी कभी कुछ नहीं मरने के बाद उन्हें रोते देखा है। बिल्कुल सही बात आपने कही और आज मैंने कहीं एक देखा था जिसमें था कि एक दिन जिस दिन सब आपसे प्यार करते हैं, और ये कह के आपकी मतलब एक बॉडी रखी हुई थी और उस पर ये लिखा हुआ था, तो जिनको आप प्यार करते हैं उनको जिंदगी रहते हुए जरूर जताइए कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं। रोशनी रावत लिखती हैं, नमस्ते समरीन दीदी जी, आप कैसी हैं, मैं आपके साथ 12:02 तक रहूंगी, एक एक पल का आप हिसाब रखते हैं, हाँ दैट्स सो स्वीट, आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम एकदम ललन टॉप चल रहा है, साथ ही साथ मैं सिर हिला हिला कर झूम रही हूँ और गीत सुन रही हूँ और गुनगुना भी रही हूँ। मैं अपनी माता श्री के लिए दो शब्द कहना चाहती हूँ, वो हैं तो हम हैं। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट बमना, तहसीलपुर सफीपुर, जिला उन्नाव से इन्होंने हमें मेल भेजा, चंडीगढ़ से ये प्रोग्राम सुन रही हैं। नीलू शर्मा दीदी, बबीता राव जी को राधे राधे बोल दीजिएगा। और अर्ज किया है इन्होंने कि हमसे ना पूछिए हमारा इरादा क्या है, खुद से खुद का वादा चाहिए, पता नहीं क्यों आजकल रातों को नींद कम आती है और सुबह भी नींद जल्दी खुल जाती है, आजकल चेहरे पर मुस्कान रहती है। देखिए अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका दिमाग बहुत चल रहा है, और एक वजह हो सकती है कि आप काम नहीं कर रही हैं रोशनी ये दो बड़े बड़े रीजन हो सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये होता है जब मैं थोड़ी काहली करती हूँ और बहुत मेंटली बहुत काम कर रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ, प्लानिंग्स कर रही होती हूँ, तो मेरी नींद गायब हो जाती है। तो एक तो फिजिकल अपना जो है वो काम बढ़ाइए और दिमाग को शांत करिए, दिमाग को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन करिए। आगे नीलू शर्मा लिखती हैं, रूपपुर चंदेला से, माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, सभी सुनने वालों को और समरीन दी आपको मदर्स डे की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, मैं जितना प्यार अपनी माँ से करती हूँ उतना ही सारा पीहू रोशनी की मम्मी से भी करती हूँ, समरीन दी जब मेरी तबीयत खराब होती है मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हाय माँ जी मुझे बचा लो, अब आपसे कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी मैं तो आप ऐसे काम क्यों करती हैं कि आपको मम्मा से ये कहना पड़े, ऐसे काम ही मत करिए। सावित्री देवी जी लिखती हैं, गुड इवनिंग डियर मैम, कैसे हो आप, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू, हम विलेज भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे साथ अनंत ईशान भी हैं, शुक्रिया सावित्री जी। अरुण आनंद लिखते हैं, जिंदगी में जब बचपन के खेल समाप्त हो जाते हैं उसके बाद किस्मत के खेल शुरू होते हैं, जय कृष्ण जी। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा जो बचपन होता है जिसे माँ अपने आंचल से ढककर हमें तमाम तरह की परेशानियों से दिक्कतों से बचाती है, हमारे आंखों में आंसू नहीं आने देती है, और आजकल का दौर तो और जेंटल पेरेंटिंग का हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के लिए जो बाहर की दुनिया है वो और हार्ड हो गई है, हार्श हो गई है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि भगवान का दिया सबसे खूबसूरत वरदान जो है वो माँ है। मोनू सेठ लिखते हैं, नैनन में है जल भरा, आंचल में आशीष, तुम सा दूजा नहीं यहां तुम्हें निवाए शीश, रही लहू से सींचती काया तेरी देन, संस्कार सारे दिए अद्भुत प्रेम, माँ का प्यार दुनिया की सबसे सच्ची दुआ है, माँ घर ही नहीं पूरी दुनिया होती है,
रातों को जागकर हमें

लिया है पाल, ऋण तेरा कैसे चुकाएं, सोचे तेरा लाल। मेरे पास मेरी माँ नहीं है, इस बात का दुख जीवन भर रहेगा। लेकिन जब तक आपकी माँ आपके साथ रही होंगी, यकीनन वो प्यार जो आपको एक बार मिला होता है वो जिंदगी भर साथ चलता है। हालांकि बहुत इमोशनल मेल आ रहे हैं माँ के प्यार में, या माँ से जो जज्बाती कनेक्शन हम सभी का होता है उससे रिलेटेड एक थोड़ा सा पेपी सा ट्रैक सुनाते हैं, ताकि थोड़ा माहौल बदले, एनर्जी बदले। आपके रेडियो सेट पर बी पराग का ये ट्रैक रहा।

अब उम्दा प्रस्तुति, आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है और स्टूडियो में हमारी आरजे भी हैं। मैम जी, आपको और सभी दोस्तों को एडवांस में मदर्स डे की शुभकामनाएं। ईमेल शामिल करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बबीता, अच्छा फील करेंगी आप तो अच्छा फील होगा। आप सोचें कि आपके अच्छा फील करने से, ये बहुत इन्फेक्शियस चीज है, दूसरे भी अच्छा फील करते हैं, तो अपनी स्प्रिट हाई रखिए। मनोज विश्वकर्मा लिखते हैं, गुड इवनिंग मैम जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आबशार सुना बहुत अच्छा लगा, पूरा रजनीगंधा तक आपके साथ रहूंगा। छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से उन्होंने हमें मेल भेजा है। अरुण आनंद लिखते हैं, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी करीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। के आनंद ने हमें ये लाइंस भेजी हैं, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत मैसेज भी दे रही हैं और लाइंस भी बहुत खूबसूरत हैं। रोशनी रावत लिखती हैं कि आपको सुनने के लिए देर रात तक जागते हैं और सुबह साइबर कैफे आने के लिए उठना पड़ता है, और भी एक दो वजह हैं मैं समझ सकती हूँ, जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखें आप। एम के राज ने लिखा है, मनीष कुमार राजगांव भानुपुर हरोआ जिला का लखीमपुर खीरी से, कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब, हर घंटे हर रोज लाइव सुनता हूँ, वाह वाह क्या गाने बज रहे हैं, थिरकने पर पांव मजबूर हो गए हैं। विवेक गौतम लिखते हैं, मैं विवेक गौतम गंगागंज शिवगढ़ रायबरेली से, प्रोग्राम के गानों की प्लेलिस्ट मुझे बहुत पसंद आ रही है, मेरी एक देखिए अगला मेल हमें भेजा है आयुष ने, मेल बहुत लंबा है, मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैम आपकी आवाज बहुत प्यारी लग रही है, पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, माँ का होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है सांस लेना, इसलिए माँ कभी नहीं जानी चाहिए जिंदगी से, माँ के बिना अधूरा है। आई लव यू मम्मी, हम सब लोग सुन रहे हैं, रेनू देवी और जीजू राम सेवक विलेज मैनी पोस्ट और न्यू अशोक नगर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। आयुषी, आपका मेल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। जाते जाते एक खूबसूरत सा ट्रैक जिसे सुन के आपको यकीनन अच्छा फील होगा, अंशुल गर्ग की आवाज़ में आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

9:38 रेनबो कैफे के जाने से जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जल्दी से वो उन मेल्स को शामिल कर लेते हैं जो चाहते चाहते हमारे पास आए हैं। बबीता राव लिखती हैं, मैम जी आपको सुने और ईमेल ना करें ऐसा मुमकिन नहीं, पता नहीं क्यों आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपकी वॉइस और गजलों का आबशार प्रोग्राम रेनबो कैफे सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसका असर ये हुआ है कि जैसे लग रहा है कि कोई मेडिसिन मिल गई हो, अब तो रजनीगंधा प्रोग्राम भी सुनकर ही सोऊंगी। मैम जी आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत शानदार, लाजवाब।

नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। गौतमबुद्ध नगर में आयोजित 5वीं व्हीलचेयर राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप में मेजबान उत्तर प्रदेश की टीम चैंपियन बन गई है। रोमांचक मुकाबले में यूपी ने हरियाणा को 5 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यूपी के बल्लेबाजों ने आक्रामक शुरूआत करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 191 रन बनाए। हरियाणा की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 186 रन ही बना सकी। जौनपुर में गोमती नदी में नहाते समय 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने गए थे, तभी गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हो गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

कुछ खुशबुएं वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो बस यादों के किसी कोने में चुपचाप महकती रहती हैं। और जब ये पुराने गीत और उनकी धुनें दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो बीता हुआ हर लम्हा फिर से जी उठता है। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से मैं समरीन हमारे सभी श्रोताओं का रजनीगंधा में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक ऐसी महफिल जहाँ हर गीत अपने साथ लेकर आता है मोहब्बत की नरमी को, जुदाई की खामोशी को और उन सुनहरे दिनों की मीठी सी आहट को जो गुजरते वक्त के साथ हम कहीं दूर छोड़ आए हैं। आज की इस महकती हुई रात में पुराने नगमों के साथ फिर से महसूस करते हैं उन एहसासों को जो गुजरते वक्त के साथ कहीं दूर छूट आए हैं। हेमलता की आवाज में पहला गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: कुछ लोग अपने काम से हमेशा जिंदा रहते हैं, वो चले भी जाएं तो उनकी आवाज, उनके जज्बात किसी नज्म की तरह हवाओं में तैरते रहते हैं। और आज का ये हमारा गीत जिंदगी की उसी सच्चाई को बड़ी सादगी से बयां करता है कि इंसान तो बस कुछ लम्हों का मुसाफिर है, लेकिन उसके एहसास, उसकी मोहब्बत, उसकी आर्ट, उसकी क्राफ्ट, उसकी कला वक्त की कहीं आगे तक का सफर करती है। आइए आपको सुनवाते हैं कभी कभी का वो अमर नगमा जिसे अपनी आवाज दी थी मुकेश ने और जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी में।
1: कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है।

अच्छा सच बताइएगा, या फिर सोचिए कि आपने ऐसे ख्वाब तो जरूर बुने होंगे। पूरे होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी जिंदगी को ऐसे सजाना सवारना, इसका एहसास ही बहुत स्पेशल फील कराता है। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तो नहीं हो पाते, लेकिन दिल की किताब में उम्र भर अधूरे ख्वाब बनकर दर्ज हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई थोड़ा पहले मिल गया होता या हालात थोड़े अलग होते तो शायद कहानी कुछ और होती, मुस्कुराहटें शायद ज्यादा होती हमारी जिंदगी में और तन्हाइयां कम होती। आज ये अगला और खामोशी से अफसोसों की नर्म दास्तां है, जिसमें मोहब्बत है, इंतजार है और एक ऐसा दर्द है जो बहुत धीरे से दिल में उतरता है। आइए आपको सुनाते हैं हमारा अगला गीत।

कुछ आवाजें, कुछ आहटें वक्त की धुन में खो जाने के बाद भी दिल के कोने में यूं ही गूंजती रहती हैं, जैसे बारिश की पहली बूंद जो मिट्टी को नहीं यादों को महका देती है। और फिर कोई अधूरा इंतजार, कोई बिछड़ा हुआ साथी धीरे धीरे आंखों के सामने आने लगता है। आज का हमारा ये अगला गीत भी रूहानी मोहब्बत और एहसासों से सजा हुआ एक ऐसा नगमा है जिसकी हर लाइन में, हर पंक्ति में आप महसूस करेंगे जुदाई की कसब को। तो आइए सुनाते हैं आपको लता जी की आवाज में ये मधुर गीत।

10:43 आप सुन रहे हैं रजनीगंधा अपनी मेजबान समरीन के साथ। ढलती हुई इस रात में हैं कुछ हसीन कलाम और खूबसूरत गीत, और साथ ही साथ माजी की यादें, मोहब्बत का एहसास और उस चेहरे की झलक जो सिर्फ आपकी जिंदगी में एक शख्स नहीं था बल्कि पूरी कायनात थी। और जब आपकी नजरें उस शख्स को देखती थीं, तो मानो लगता था कि चांदनी उतर आई हो, हर अदा में एक रोशन चेहरा दिखता था। आज का हमारा अगला गीत भी इसी खूबसूरत एहसास की बात करता है, जहां तारीफ सिर्फ अल्फाज तक नहीं सिमटी है बल्कि दिल की धड़कनों की जुबा बन चुकी है। मोहम्मद रफी की आवाज में अगला ये गीत, बहारे फिर भी आएंगी, फिल्म से।

वाह, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर ही ना आप अलग जोन में चले जाते हैं, और दिल ही नहीं चाहता कि ये नगमा ख़त्म हो, लेकिन 10:56 वक्त गुजरता रहना ही नियति है, और वक्त गुजर भी रहा है इसलिए गीत भी ख़त्म होगा। लेकिन हमारा रजनीगंधा का ये कार्यक्रम अभी 1 घंटा आपके साथ, इस कार्यक्रम में हम और रहेंगे, एक न्यूज़ ब्रेक होगा और न्यूज़ ब्रेक के बाद आपसे फिर उस तरफ मुलाकात होगी। गाना आपकी फीलिंग्स वाला मैं प्ले कर रही हूँ।

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल टारगेट री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक